मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 12वीं तिथि तदनुसार 3 जुलाई सन 2026 5:57 होने को हैं। प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज

0: जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले समूह स्वर में सुनते हैं मोहन शर्मा स्नेही का ये मातृवंदना।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। मीडी वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। छह 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री हीरालाल टांडिया का है।
1: जिस घर में सर्व सद्गुण संपन्न नारी सुखपूर्वक निवास करती है, कोटि देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते। ऐसा भगवान शंकर जी ने महर्षि गर्ग महाराज से कहा। जिस स्त्री का लज्जा ही वस्त्र और विशुद्ध भाव ही भूषण हो, धर्म मार्ग में जिसका प्रवेश हो, मधुर वाणी बोलने का गुण हो, वो पति सेवा परायण श्रेष्ठ नारी इस पृथ्वी को पवित्र करती है। ऐसी देवियों के पास एक पतिव्रत धर्म ही ऐसा अगोध शस्त्र है जिसके सम्मुख बड़े बड़े वीरों के शस्त्र भी बेबस हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री अनायास ही महान योगियों के समान सिद्धि प्राप्त कर लेती है, इसमें किंचित मात्र संदेह भी नहीं है। माता सती अनुसुईया ने भगवान ब्रह्मा, श्री विष्णु और सदाशिव जी इन तीनों को अपने पतिव्रत के बल से ही 6-6 महीने के दूध पीते बच्चे बना दिए। सती शांडिली ने सूर्य की गति को रोक दिया था। सती माता सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के प्राण भी श्री यमराज महाराज से वापस प्राप्त कर लिए थे। ये सब चमत्कार अपने पतिव्रत धर्म का कठोरता से पालन करने से हुआ। जो नारी एक जन्म में एक पति निष्ठ रहती है, वो पतिव्रता है। सत्य संकल्प से ही अन्य जन्मों में भी उसी पति को प्राप्त करती है, वो सती है। संत कबीर साहब जी महाराज ने कहा है, मन ऐसे निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सती साध्वी नारी अपने पतिव्रत के प्रभाव से पापी पुरुषों की पाप भावना को नष्ट कर सकती है। रावण के साम्राज्य में अकेली माता सीता जी ने अपना संरक्षण इसी बल पर किया था। ऐसी पतिव्रता साध्वी भक्त योगिनी और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महान नारियां इस पृथ्वी को पवित्र करती है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी ऐसी ही नारियों में निवास करते हैं। देवताओं और मुनियों का तेज सती स्त्रियों में स्वभावतः ही रहता है। सतियों के चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। माता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने देव आदिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश उनके आश्रम में साधु के वेश में अतिरूप में पहुंचे माता अनुसुईया ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनके चरण स्पर्श कर कंदमूल फल आदि भेंट किए, किंतु उन साधुओं ने स्वीकार नहीं किया। देवी के पूछने पर साधुओं ने कहा, आप हमें वचन दें तो आपकी पूजा ग्रहण करेंगे। अतिथि सत्कार पौराणिक काल में प्राणों का बलिदान करके भी किया जाता रहा है। और माता ने कहा, आप जिस प्रकार प्रसन्न होंगे उसी प्रकार मैं अतिथि सत्कार

करने को तैयार हूं। तब उन साधुओं ने वचनबद्ध देखकर कहा, हे देवी, आप अपने मर्म स्थान नग्न कर हमारा आतिथ्य सत्कार कीजिए। यह सुनकर सती अनुसुईया सन्न रह गई। ये अनुचित प्रस्ताव करने वाले तीन साधु कौन हैं? ये जानने के लिए ध्यान लगाकर देखा तो सब रहस्य उन्हें ज्ञात हो गया। फिर बोली, हे अतिथि देवो, मैं ऐसे ही होकर सत्कार करूंगी। फिर सती माता ने पानी में निहारते हुए संकल्प किया कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने कभी भूल से भी स्वप्न में भी काम भाव से पर पुरुष का चिंतन न किया हो तो आप तीनों छह छह महीने के बच्चे बन जाएं। ऐसा संकल्प करके वो पानी तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। संकल्पित जल के प्रभाव से तीनों के तीनों साधु छह छह माह के दूध पीते बच्चे बनकर

0: एक साथ संसार की कितनी ही महिलाओं में मिल सकते हैं। सीता जी के पवित्र जीवन और अप्रतिम पतिव्रत धर्म के सदृश उदाहरण रामायण में तो क्या दुनिया के किसी भी इतिहास में मिलना कठिन है।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे आलेख श्री हीरालाल टांडिया का था। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्रीराम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: श्री रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे। इसे संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया, मुख्य गायक स्वर चतुर सेन और राजेंद्र काचरू का था। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में औषधि गुणों से भरपूर सब्जियां, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रेखा सिंह।
1: नमस्कार, आज हम औषधीय गुणों से भरपूर सब्जियां इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में एक बड़ी संख्या में प्रचलित सब्जियां मौसम के अनुरूप उपलब्ध हैं, लेकिन इनके उत्पादन और गुणवत्ता से संबंधित जानकारी सीमित है। हमें इनके महत्व को समझते हुए इनको खाने के प्रति रुचि विकसित करना चाहिए। हमें इन सब्जियों का पोषण वाटिका में उत्पादन करना चाहिए, जिससे हम अपने घर पर ही पोषण से भरपूर और स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ खा सकें। वर्तमान समय की जीवन शैली और आहार विहार से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आहार में विविधता लाएं। सब्जियां कई खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग और आयु संबंधित विकारों को कम कर मानव स्वास्थ्य प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती है। कुछ प्रमुख सब्जियां हैं और उनके औषधीय गुण, उन पे हम जैसे चर्चा करेंगे। जैसे करेला, यह भूख बढ़ाने वाला, पाचन करने वाला, खून साफ करने वाला, रोग नाशक, आँखों के लिए लाभकारी है। इसका उपयोग ज्वर, पित्त, कफ, पीलिया और कई कृमि नाशक के लिए भी ये लाभदायक होता है। कद्दू, यह रक्त पित्त मूत्र मूत्राघात क्षय आदि में सहायक रूप से लाभ करता है। खीरा, खीरा कब्ज को दूर करता है, पीलिया, ज्वर, शरीर में जलन, गर्मी से होने वाले विकारों तथा त्वचा रोगों में खीरा लाभदायक है। छाती में जलन, अजीर्ण, पेट की गैस, एसिडिटी में नियमित रूप से खीरा खाने से लाभ होता है। गाजर, यह आँखों की कमजोरी, कब्ज, वायु दोष आदि को दूर करती है। इसका रस मूत्रावरोधक को दूर करता है और बवासीर के रोगियों को लाभ मिलता है। यह यकृत को ताकत देती है तथा पीलिया में लाभदायक रहता है। गोभी, गोभी को हम देखें तो यह सूजन, जख्म आदि को दूर करने में गोभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रक्त वाहिनियों को मजबूत करती है एवं आँखों की कमजोरी और पीलिया में लाभदायक है। वहीं चुकंदर की बात करें तो चुकंदर रक्तवर्धक, पुष्टिकर, विचेरक, मानसिक विकार दूर करने वाला होता है। लाल चुकंदर कब्ज, आंतों की सूजन, जिगर की बीमारियां, मुहासों एवं मासिक धर्म की बीमारियों में फायदा करता है। टमाटर, यदि टमाटर की बात करें तो यह भूख बढ़ाने वाला, पाचक, रक्त शोधक, थकान नाशक, मधुमेह, अतिसार, उदर रोग, बेरी बेरी गठिया व कृमि नाशक इत्यादि रोगों में लाभदायक है। और अगर हम मौसम के संबंध में बात करें तो जैसे तुरई हो गया तो यह मधुर रस युक्त कफ तथा वात कारक होती है और पित्त, श्वास, ज्वर, खांसी, कृमि, चर्म रोग आदि में लाभदायक है। वहीं पत्ता गोभी की बात करें तो इसका सेवन नींद की कमी, पथरी और मूत्र की रुकावट में लाभदायक है। पत्तों के उपयोग से दिमागी कमजोरी, रक्त विकार, बदहजमी, दंत रोग, कफ, पित्त और कुष्ठ रोग में बहुत लाभ होता है। पालक, पालक में अगर देखें औषधीय गुण तो पालक के सेवन से भोजन को पचाने व पाचन तंत्र को शक्ति प्रदान करने में सहायता मिलती है और हीमोग्लोबिन वृद्धि होती है। यह अम्ल, पित्त, अजीर्ण, बवासीर, पेट की वायु, कब्ज आदि रोगों में नियंत्रण रहता है। पुदीना, पुदीना जैसे इस मौसम में अगर हम पुदीना खाएं तो यह हृदय को बल देने वाला होता है, मल व मूत्र की अति प्रवृत्ति पर नियंत्रण करता है। कफ, खांसी, अतिसार, अजीर्ण, ज्वर, कृमि रोग इत्यादि विकारों पर अच्छा असर दिखाता है। मूली, मूली अगर हम देखें तो यह शरीर से विषैले गैस निकालने में मदद करती है। मूली दांतों को मजबूत, हड्डियों को शक्ति, रक्तचाप को नियंत्रित, बवासीर तथा हृदय रोग में लाभकारी है। इसका सेवन मोटापे को कम करने में भी मदद करता है। लौकी, इस मौसम में जैसे लौकी खाएं तो इसका सेवन हृदय के लिए हितकारी है। पित्त व कफ दोष नाशक में फायदा करता है, यह मधुमेह में फायदा करता है। हरा धनिया, हरा धनिया यह उल्टी, श्वास, खांसी, दुर्बलता, कृमि को मिटाता है। बथुआ, इसका प्रयोग जो है कृमि नाशक है, शक्तिवर्धक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मूत्र संबंधी विकारों को दूर करता है। और अगर परवल की बात करें तो यह पोषक है, बुखार को कम करने में मदद करता है और इसकी कोमल पत्तियां अगर हम खाएं व फल दोनों ही लाभदायक होता है। धन्यवाद।
0: कृषि चर्चा में औषधीय गुणों से भरपूर सब्जियों की जानकारी दे रही थीं डॉक्टर रेखा सिंह। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजकर कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का प्रसारण होगा 8:30 पर और 9:30 पर करंट अफेयर्स आप सुन सकेंगे। इन कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे आप सुनेगा बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग नट भैरव, और इसी कार्यक्रम में 10 बजे इन्हीं का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी। 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा पंडित पृथ्वीराज कमार का पखावज पर बजाया ताल चौपाल। इनसे मिलिए, यह कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। इसमें आप सुनेंगे भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री रघुवीर यादव से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगी सुप्रिया भारतीयन। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगी।

नवा बिहार इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9 बजे। इसमें आप सुनेंगे एक पेड़ माँ के नाम 2026। इस पर पर्यावरणविद श्री रामनारायण यादव से बीरभान साहू की बातचीत का पहला भाग। हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर का समय होगा सुबह 7:05। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर हिंदी में प्रसारित होगा। आजकल का विषय होगा रिश्तों की शुरुआत के लिए चाहिए एक पहल। साथ ही प्रसारित होगा मार्गदर्शन और अपनी पसंद।

किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा ये माह के मछली पालन के कार्य। हेलो चौपाल में धान की उन्नत सीधी यानी DSR बुआई विधि की जानकारी देंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के शस्य विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर संजय द्विवेदी। संचालन करेंगे सतीश कुमार यदु और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर आप सुन सकेंगे संतोष दिवाकर के गाए गीत। सुबह 11:05 पर अन्य प्रांतों के गीत कार्यक्रम रागधारा में सुनिएगा मराठी गीत। कलाकार होंगे शाहिर साबले। दोपहर 12:30 पर सुगम संगीत की कलाकार होंगी बेगम अख्तर। चित्रपट संगीत का आप आनंद उठा सकेंगे सुबह 9:15, सुबह 10:30, दोपहर 1:05, दोपहर 2:00, दोपहर 2:30, शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 पर। सुबह 11:05 का समय होगा सदाबहार नगमों के लिए और रात 10:30 पर प्रसारित होगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। प्रायोजित कार्यक्रम NCA

0: पार्टी का समय होगा दोपहर 12 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनिएगा शाम 5 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी में समाचार रिले कर
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। 75 दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां

0: गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वचषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा।

0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण। नमस्कार रायपुर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय पाठक का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन।

श्रोताओ, इन दिनों हम सभी को अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार है, ताकि गर्मी की और उमस से हमें राहत मिले, किसान खेतों की बुवाई कर सकें। और वैसे भी मानसून का पहला महीना यानी जून इस बार थोड़ा सूखा रहा। जून में एक भी काम दबाव का क्षेत्र जैसा मौसमी सिस्टम नहीं बना और जून में सामान्य बारिश की तुलना में इस बार 40% कम बारिश हुई। इन दिनों छिटपुट बारिश हो रही है, दिन भर आसमान में बादलों का पहरा रहता है, शाम को मौसम बदलता है और तेज हवाओं के साथ तेज बौछारें या फिर रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। अब थोड़ी राहत की बात सामने आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 जुलाई यानी आज बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने वाला है और मानसून यानी 4 जुलाई से आने वाले 5 दिन तक बेहद सक्रिय रहेगा और अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी।

हर दिन की कोई एक विशेषता रहती है, इसकी अपनी पहचान होती है। आज है 3 जुलाई। आज के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। इसका उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर समस्या और इससे प्राकृतिक पर्यावरण को होने वाले गंभीर खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्लास्टिक मुक्त दुनिया की ओर कदम बढ़ाने में हम योगदान दे सकें। इसमें स्थलीय और समुद्री जीवन दोनों शामिल हैं। प्लास्टिक बैग को विघटित होने में लगभग 100 से 500 साल लगते हैं। इसे जमीन में फेंकने पर भूमि प्रदूषण होता है और समुद्र में बह जाने पर समुद्री जीवों के लिए खतरनाक साबित होता है। अतः एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। इसकी शुरुआत जीरो वेस्ट यूरोप की बैग फ्री वर्ल्ड अभियान ने की। हम चाहें तो एकल उपयोगी प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े, जूट या कागज से बने थैलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम खरीदारी करने के लिए घर से निकलें, हमेशा अपने साथ कपड़े का थैला साथ चल सकते हैं और छोटे प्लास्टिक बैग के बजाय रिसाइकिल होने वाले विकल्पों को चुन सकते हैं। स्थानीय स्तर पर होने वाले स्वच्छता अभियानों और जागरूकता के कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर भी प्लास्टिक मुक्त अभियान में अपनी ओर से एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं।

जुलाई का महीना हमें हमेशा कारगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय की याद दिलाता है, साथ ही याद दिलाता है हमारे देश के उन महान वीर सपूतों की जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम भारत के दो ऐसे वीर सपूत की बात करेंगे जिनमें से एक को परमवीर चक्र और दूसरे को महावीर चक्र प्राप्त हुआ। यदि लहू साबित करने से पहले ही मौत आ जाए तो मैं मौत को ही मार दूंगा, ये वाक्य हैं परमवीर 1/11 गोरखा राइफल्स के जाबाज अधिकारी कैप्टन मनोज पांडे के। उन्हें वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में बटालिक सेक्टर के खालुबर चोटियों पर अदम्य साहस के साथ दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 25 जून वर्ष 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूढ़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश प्रेम की गहरी भावना थी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के साक्षात्कार के दौरान जब उनसे पूछा गया था कि वे सेना में क्यों आना चाहते हैं तो उनका सीधा सा जवाब था परमवीर चक्र जीतने के लिए। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में कैप्टन पांडे को खालुबर रेंज को दुश्मन से मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 3 जुलाई वर्ष 1999 की रात यानी आज 3 जुलाई है जब अपनी कंपनी के साथ आगे बढ़ रही थी, जब उनकी कंपनी तब भारी गोलाबारी के बीच उन्होंने निडर होकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोल दिया। कंधे और पैरों में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हाथ की हाथ लड़ाई में दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। अंतिम बंकर को नष्ट करते समय उनके माथे पर दुश्मन की गोली लगी जिससे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके इस अदम्य साहस और नेतृत्व के कारण ही भारतीय सेना खालुबर पोस्ट पर कब्जा करने में सफल रही। अब बातें करते हैं नौशेरा का शेर यानी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। वर्ष 1947-48 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें नौशेरा का शेर कहा गया। बंटवारे में पाकिस्तान जाने का विकल्प होने के बाद भी उन्होंने भारतीय सेना में रहने का फैसला किया। उनका जन्म 15 जुलाई 1912 को मऊ उत्तर प्रदेश के बीबीपुर में हुआ था। वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट यूके से प्रशिक्षित होकर 1934 में बलूच रेजिमेंट में शामिल हुए थे। उन्होंने 1947-48 में हुए प्रथम कश्मीर युद्ध में झांगर और नौशेरा को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 जुलाई यानी आज के ही दिन वर्ष 1948 को झांगर की रक्षा करते हुए वे दुश्मन के एक तोप के गोले से वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें उनकी असाधारण वीरता और देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मान किया गया। हमें देश के इन वीर सपूतों पर नाज है, इन्हें हमारा शत शत नमन।

श्रोताओं, आषाढ़ महीने की शुरुआत हो गई है। ये महीना बारिश के लिए और बारिश की शुरुआत के लिए जाना ही जाता है। इसे भी बड़ी पहचान है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है, यानी रथ यात्रा। कई श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पूरी जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन गोंदिया से पूरी और पूरी से वापस गोंदिया के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। 2 जून को गोंदिया से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई यानी आज पूरी से इसकी पहली ट्रेन लौटेगी। आने वाले दिनों में गोंदिया से पूरी के लिए 9, 16 और 29 जुलाई को दोपहर 1:30 पर यह ट्रेन छूटेगी। ये ट्रेन दोपहर 3:58 पर दुर्ग आएगी और शाम 5:10 पर रायपुर पहुंचेगी और इसके बाद विभिन्न स्टेशन होते हुए दूसरे दिन सुबह 10 बजे पूरी पहुंचेगी। और इसी तरह पूरी से गोंदिया के लिए स्पेशल ट्रेन आज यानी 3 जुलाई के साथ ही 10, 17 और 30 जुलाई को चलाई जाएगी। पूरी से यह ट्रेन दोपहर 1 बजे छूटेगी। विभिन्न स्टेशन होते हुए रात 3:10 पर रायपुर और सुबह 4:28 पर दुर्ग पहुंचेगी। सुबह 4:30 बजे दुर्ग यानी 4:30 पर दुर्ग से छूटकर राजनांदगांव डोंगरगढ़ होते हुए सुबह 7 बजे गोंदिया पहुंचेगी। इससे पूरी जाने वाले अधिकांश यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद है। तो धार्मिक यात्रा हो तो भजन और कीर्तन का फिर एक अपना अलग ही आनंद होता है।

जैसा कि हमारा नमस्कार रायपुर कार्यक्रम सूचनात्मक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, तो फिर आइए करते हैं सूचनाओं की शुरुआत। आयुष विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार विद्यार्थी अब 30 जून की जगह 30 जुलाई तक पीएचडी में प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। यानी पहले 30 जून था, अब इसे बढ़ाकर 30 जुलाई कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए सभी संबंधित उम्मीदवारों को अपने अपने शोध केंद्र या फिर विश्वविद्यालय कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की सलाह भी दी गई है। और श्रोताओं, एक सूचना और है, वो है आगामी शुक्रवार यानी आज 3 जुलाई को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी यानी DSR बुआई विधि। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय द्विवेदी, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक सस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर हैं। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003-483 और 4003-484। रायपुर का STD कोड है 077। कार्यक्रम के रिकॉर्ड

स्प्रिंग शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 से 12:00 तक की जाएगी, यानी आज 11:30 पर कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग होगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही यानी आज शाम को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक ग्रेड 3 प्रोसेस राइटर के 54 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया है और उसके अनुसार इसकी भर्ती लिखित परीक्षा 6 सितंबर को संभावित है। जारी रोस्टर के अनुसार 54 पदों में से 24 अनारक्षित, 15 अनुसूचित जनजाति और 7 अनुसूचित जाति और 8 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। स्थानीय महिला अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रोग्रामिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा और हिंदी या अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की टाइमिंग स्पीड का प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है।

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने 2027-28 के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक समेत देश के कई सरकारी बैंकों में अधिकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 21 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क ₹850 तय की गई है। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। PO पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और SO पद के लिए संबंधित क्षेत्र में 4 वर्षीय डिग्री या PG होना जरूरी है। दोनों ही प्रीलिम्स परीक्षा अगस्त में होगी। PO की मेंस परीक्षा अक्टूबर में और SO की मेंस परीक्षा नवंबर में होगी। साक्षात्कार नवंबर या दिसंबर में होंगे। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी PO की भर्ती के लिए रिक्त पदों में निकाली हैं। इसमें भी उम्मीदवार आने वाले समय के में आवेदन कर सकेंगे।

पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हुए पढ़ाई और प्रवेश व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। ये निर्णय विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में ली गई। अब तक वार्षिक प्रणाली से संचालित होने वाले बीए और बीएससी पाठ्यक्रम सेमेस्टर सिस्टम से अब संचालित होंगे। इसमें एमबीए और पीजीडीसीए में अब छात्रों को सीधे प्रवीण सूची के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी गणित की 3 वर्षीय सेमेस्टर प्रणाली को संचालित करने के लिए मंजूरी दे दी है। आगामी सत्र यानी जो शिक्षा सत्र चल रहा है वर्ष 2026-27 से विद्यार्थियों की पढ़ाई 6 सेमेस्टर में होगी। इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक नियमित होगी और विद्यार्थियों को प्रत्येक सेमेस्टर के आधार पर प्रदर्शन सुधारने का अवसर भी मिलेगा। प्रबंधन और कंप्यूटर शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी राहत की एक खबर है। विश्वविद्यालय ने एमबीए और पीजीडीसीए में डायरेक्ट मेरिट एडमिशन का निर्णय लिया है, इन्हें सीधी प्रवीण सूची से प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि यदि किसी सत्र में आवेदन संख्या स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक या दोगुनी होती है तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। आवेदन कम होने पर राज्य शासन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावीण्य सूची से ही प्रवेश दिए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये तो ही परीक्षा की बातें, और इसी के साथ अपने दोस्त संजय पाठक को कार्यक्रम से दीजिए अनुमति।

श्रोताओं, आज डायलॉग किंग फिल्म अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। सुबह 10:30 पर चित्रपट संगीत में आप सुनेंगे उन पर फिल्माए गए गीत। इसके साथ कार्यक्रम से दीजिए अपने दोस्त संजय पाठक को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर, मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15-27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक

0: दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. We have a report.
4: The Election Commission said in a statement that it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobroto Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit their responses by 5:30 p.m. on Monday. The development comes amid a dispute within the Trinamool Congress over the party's organizational structure and the authority to act on its behalf before the Election Commission. Such disputes are governed by the Election Symbols Reservation and Allotment Order, under which the Commission examines rival claims, supporting documents and submissions from the contending factions before taking a decision where necessary. The ECI has not expressed any view on the merits of the rival claims and has sought written responses from both factions before proceeding further in the matter. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei will not attend the funeral of his father, former Supreme Leader Ali Khamenei, due to security concerns. According to the current leader's representative in India, Ayatollah Hakim Ilahi, threats and surveillance risks made it unsafe for the leader to appear in public. Early on Wednesday, Iran's Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi issued a sharp warning to the United States. In a social media post,

ये सुनते हैं भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री रघुवीर यादव से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता हैं सुप्रिया भारतीयन। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति है।

श्रोताओं, ये आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस आवाज ने पूरे देश को मुस्कुराने पर भी मजबूर किया और सोचने पर भी। ये वही आवाज है जिसमें लोक की मिट्टी की सौंधी महक है, रंगमंच की तपस्या है और जीवन के अनगिनत रंगों का अनुभव है। जी हाँ, रघुवीर यादव एक ऐसा नाम जिसने 60 के दशक से अब तक हर पीढ़ी को अपना कायल बना लिया है। नाटकों का मंचीय संसार हो या टीवी धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चाचा चौधरी, या फिर उनके यादगार किरदार जो उन्होंने फिल्मों में निभाए हैं, जैसे मैसी साहब, सलाम बॉम्बे, पीपली लाइव या वाटर में, और अब पूरे देश को जोड़ता पंचायत सीरीज में उनका किरदार प्रधान। उनके किरदार, उनके गीत हम सब के जेहन में बसे हुए हैं।

0: अग्रज नाट्य दल बिलासपुर द्वारा पिछले दिनों बिलासपुर में 4 दिवसीय योगेश स्मृति नाट्य महोत्सव का आगाज हुआ। रंगमय हुआ बिलासपुर और इस रंग यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता रघुवीर यादव द्वारा मंच पर प्रस्तुत नाटक पियानो। हम सब का ये सौभाग्य रहा कि पियानो का मंचन हमने मंच से देखा और हमने सीधे सीधे उनका अभिनय और उस पूरे मंचन के दौरान जो हमारी एकाग्रता उस पूरे कार्यक्रम में बनी रही वो भी बड़ी अद्भुत रही। उनकी आंखें बोलती हैं, खामोशी संवाद बन जाती है और उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंच जाती है। अपने बिलासपुर प्रवास में हमारे छोटे से अनुरोध पर रघुवीर यादव जी आज आकाशवाणी के स्टूडियो में श्रोताओं से रूबरू हैं। आकाशवाणी बिलासपुर की इस विशेष भेंटवार्ता में हम हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय रंगमंच और सिनेमा के अप्रतिम अभिनेता, संवेदनशील गायक और हमारे आज के अतिथि रघुवीर यादव जी का। आपका स्वागत और अभिनंदन आकाशवाणी बिलासपुर में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बातचीत चूंकि आपके नाटक से ही शुरू हुई है तो मैं पहले वहीं से ही बात शुरू करना चाहूंगा, पियानो से ही।
1: जी।
0: और समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को बड़े ही सहज सरल ढंग से आपने मुख्य रूप से उसको सामने प्रकट किया और उस नाटक के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। थिएटर का लक्ष्य, थिएटर का उद्देश्य, हमारी संवेदनाएं, हमारे अंदर जो घट रही घटनाओं की अभिव्यक्ति, सब कुछ दिखाई दिया। तो ये प्रेरणा इस नाटक को लेने की, क्योंकि सब कुछ इसमें आपका था, अभिनय भी, निर्देशन भी, कास्टिंग भी, सब आपने खुद किया इसका,
1: जी, जी।
0: कैसे ये नाटक इतना प्रभावी बन पड़ा?
1: एक्चुअली ये नाटक फेरेंस कैरेंथी का एक प्ले है जो क्लासरूम प्रोडक्शन के लिए उन्होंने लिखा था। तो जब मैंने ये प्ले पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा, तो मुझे दम तो था नाटक में, लेकिन वो एक्सरसाइज, बतौर एक्सरसाइज की तरह वो लिखा गया था।
0: जी, जी।
1: तो मैंने फिर इसको चाहा कि, क्योंकि आज जो जमाना है अकेलेपन से बहुत
0: जूझ रहा है जी।
1: और हर शख्स ऐसा भटका हुआ है और ऐसे लगता है, तो ये तो मेरे जहन में था, वो मेरे अंदर थी ये बात। फिर क्या है कि मेरा था म्यूजिक से ताल्लुक, तो उसमें पियानो है कि वो पियानो बेचना चाहती है और एक शख्स है जो और दोनों तूफान आ गया है, मतलब पूरा मुंबई में बारिश है, तो मैंने उस तरह की बारिश है, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बस एक शख्स है जो मजे लेने के लिए। तो मेरे जहन में आया कि वो पियानो, क्योंकि अकेलेपन, अकेली रह गई है और पियानो बेच रही है, जो उसकी जिंदगी में वो साथ रहा। तब मुझे मेरे जहन में आया कि म्यूजिक तो एक ऐसा है कि अकेलापन महसूस होने ही नहीं देता, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे ही साथ हुआ कि म्यूजिक ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी भी कोई भी परेशानी, उलझन, कुछ भी हुआ, कितनी भी आफत मुसीबतें आई, म्यूजिक ने मुझे हमेशा पकड़ के खींच लिया और खींच के एक नया रास्ता दिखा दिया।
0: क्या बात है।
1: हाँ। तो मैंने फिर उसको उसका जो एडेप्टेशन किया, तो फिर उसमें मैंने ये डाला कि भैया अगर आपके पास म्यूजिक है तो उसे जाने मत दीजिए, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, कुछ भी

0: दिख रहे थे कि एक क्षण के लिए भी मंच से यदि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एकाग्रता भंग नहीं होती है, तो कलाकार की कितनी बड़ी साधना उसके पीछे है कि वो बांध के उतनी देर तक सारे दर्शकों को रख सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपके जीवन की तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी बातें हर जगह सभी को पता है कि आपका बचपन कैसे बीता, आप कैसे बाहर निकले वहां से और क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए हम आपके द्वारा सुनना चाहेंगे कि कैसे कैसे रास्तों से चलते चलते ये यात्रा तय हुई है।
1: जी, एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये 50s के आसपास की बात है, और उस वक्त बिल्कुल मेरे ख्याल से जनसंख्या भी बड़ी कम हुआ करती थी, बहुत दूर दूर तक सब जंगल और ये था। तो मेरा बचपन, मैं किसान हूँ, किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और बैलगाड़ी चलाया करता था, भैंसे चलाया करता था, दूध का धंधा होता, यादव हूँ तो जाहिर है बस यही धंधे कर पाते थे
0: बिल्कुल,
1: और खेती वेती होती रहती थी। तो मुझे सबसे पहले म्यूजिक से मेरा ताल्लुक है, तो सबसे पहले जो मेरा म्यूजिक का एहसास, जो स्वर मुझे मिले, वो मैं आधार ताल, जबलपुर में एक जगह है, वहाँ एक तालाब है जिसकी वजह से वो नाम पड़ा आधार ताल। वो तालाब के बगल के में एक टीला है, टीला पे एक मकान हुआ करता जो मेरे नाना जी का था, वहीं हम रहते थे उसी में। तो वहीं वो जमीन पड़ी हुई थी नाना जी की, वहीं खेती वेती किया करते थे, तो हम गर्मियों में वहाँ जाया करते थे। मुझे गर्मियों के ये इसलिए याद है, जाते तो हमेशा थे लेकिन गर्मियों की याद है कि मैं 3-3.5 साल का रहा हूँगा। तो वहाँ जो खेतों की मेड़ से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था, सिर्फ एक घर के लिए वो पापड़ दूर से बेचता था। अभी मैं 3.5 साल का हूँ, मैं उसको सुनता था, तो पापड़ बेचता था कि मुम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो,
0: क्या बात,
1: मुम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो हम उसको बुलाते थे, पापड़ वाले, तो फिर वो देखता था, फिर वहीं से पापड़ बेचते हुए, मुम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर आके बैठ जाता था, फिर पापड़ देने लग जाता था कि मुम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मुम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर बेच के फिर चला जाता था कि मुम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। बस ये जो मैंने, और इतनी आत्मा से इतना रूहानी लगता था वो उसका, तो मैं फिर दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था। वहीं से फिर संगीत का मुझे जो हुआ, फिर रामलीला, रासलीला, ये सब। और वो जमाना ऐसा था कि सब्जी बेचने वाले भी गा गा के सब्जी बेच रहा, एक चूरन वाला आता था, वो भी मैं कभी नहीं भूलता, कि भीख मांगने आते थे एक सूरदास जी, वो भी वो रसखान का एक भजन गाते हुए निकलते थे, तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था, ऐसा लगता है मैं भी भीख मांगने लगूं इनके साथ में, इतना मजा। तो वो रसखान का गाते थे, वो अपनी, उनकी पत्नी थी, अंधे थे वो, पत्नी थी, पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलते थे, मैं उनके पीछे पीछे जाता था। वो था कि आज गई हो तो भो रही हो, रस खान रही कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भो है, बनाया बनाया ढिठो नहीं, डारी हमेल निहारती आनन भारती, जो चुच कारत छो नहीं, धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी। और वाचा भी को रस खान बिलो, कत भारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बढ़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी।
0: वाह वाह वाह, आपके बचपन की जो यादें हैं और बचपन में जो सुर आपके अंदर गए हैं धुन के रूप में, उसको तो आपने बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से आज हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया है। और संगीत के ये जो बीज, जो छोटे छोटे अलग अलग घटनाओं के द्वारा, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला हो, पापड़ बेचने वाला हो, उन सब से आपने ग्रहण किया।
1: जी, यही सब लोग उस्ताद हैं मेरे। हाँ, लोग ढूंढते रहे तो मुझे तो पूरी पूरी पूरी कायनात ऐसा लगता है उस्ताद है, पेड़ पौधे चिड़ियों पक्षियों से। मैं फिर गाना गाता तो एक फैक्ट्री से वो बजता था सायरन। तो वो जब बजता था तो उससे मैं आवाज मिला के फिर बड़ी देर तक गाता रहता था। एक बात ये है कि ईश्वर देता सभी को है, अगर हम उसको पहचान लेना तो चीजें बड़ी आसान सी हो जाती, हम पहचानते नहीं। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप को भी मैंने देखा कि बच्चों को भटकाने बड़ा उनका हाथ होता है, कि पड़ोस का बच्चा ये कर रहा है तो वहां चले जाओ, वो इंजीनियर है तो वो करना कुछ और चाहते, उसे कुछ और करवाते हैं, फिर यहाँ भटकाव शुरू हो जाता है। तो मुझे भी आया लेकिन बहुत ज्यादा मुझे मना, मेरे नाना

0: खुद ही मंदिर बनवा दिया था उन्होंने, और मंदिर में सब वहां के जो कोई जात पात कुछ नहीं होता था। फिर स्कूल भी बनाया लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, अभी भी है जबलपुर में, तो बच्चे वहीं पढ़ने के लिए आते थे। मालूम नहीं था कि कौन किस जात का है, सब लोग वहां इकट्ठे आके वहां पढ़ा करते थे और वहीं से सब लोग सीखते रहते थे।
1: बहुत सारा इनपुट आपको अपने छोटे से गाँव में ही मिल गया था।
0: ये मैं एक बात बता दूं, सब जगह है ये। अब तो खैर जो ये सब ये फोन और ये सारा आ जाए तो मेरे ख्याल से वो जो जड़ें हैं, वो जो जमीन है, वो थोड़ी सी मिटते हुए नजर आ रही है।
1: जी,
0: नहीं
1: जी,
0: तो छत्तीसगढ़ भी कितना खूबसूरत, यहाँ के लोग वहाँ भी थे, वो भी बहुत
1: यहाँ की भी लोक संस्कृति, जितना लोक के प्रति आपका अनुराग है और लोक से आपने जो ग्रहण किया है वो आपको सभी जगह एक साम्य दिखाता है। चाहे बुंदेलखंड में जाएं, चाहे आप मालवा में जाएं, चाहे आप यहाँ छत्तीसगढ़ में आए, वो सब के अंदर प्रकृति की जो सुगंध रची बसी
0: जी,
1: है
0: जी,
1: वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, उसमें कोई अलगाव नहीं रहता। तो आप तो निकल गए थे, गाँव से ही बाहर निकल गए थे, कुछ खोज रहे थे, कुछ तो खोज लिया था, कुछ और पाने के लिए निकल ही गए थे। तो वो निकलने बाद की जो यात्रा थी वो काफी लंबी रही और उसने आपको दिशाएं दे दी जिंदगी की।
0: जी जी जी जी, क्या है कि मैं वो तो मैं मालूम होगा सभी को कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो गया था, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए, क्योंकि वहां सब लोग का बस एक ही इरादा था कि बच्चा सातवीं आठवीं तक पढ़ जाए, उसके बाद तो फैक्ट्री में डाल दो उसको, उसके बाद शादी कर दो, उसके बाद ये बस यही था। तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता था, मुझे ऐसा लगता है हटके करो ना, ये क्यों सब कुछ यही, सब लोग एक ही जैसा करेंगे तो मजा क्या जिंदगी का। बस फिर वो बहाना मिल गया, तो आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का कि उसने मुझे फेल कर दिया।
1: हाँ, सच बात है।
0: हाँ, मुझे तब से लगा कि इंसान को फेल होना भी कितना जरूरी है, और हमेशा कुछ टूटता है तभी कुछ बनता है, जब जब टूटा है तभी कुछ ना कुछ बन ही जाता है, और ऐसा बनता है कि उस टूटने को उस वक्त इतना पॉजिटिव ले लेते हैं कि या मालिक अच्छा किया उस वक्त टूटा वो
1: जी।
0: हाँ, तो फिर गया मैंने पहली दफा थिएटर नाम, जब वो घर से गया तो ललितपुर में नाटक कंपनी लगी हुई थी, यन्नू कपूर के फादर की नाटक कंपनी थी
1: जी,
0: उसका नाम था भोपाल थिएटर कंपनी। वहाँ पाकिस्तान के थे, लाहौर के वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन पारसी थिएटर के नाम से वो था बस। तो वहाँ फिर मैं हो गया, क्योंकि मैं जिसके साथ गया था प्रोफेशनल भगोड़ा था वो, जहां भी जाता भाग उसका दो चार दिन बाद भाग ही जाता था, तो उसके साथ गया तो उसकी आदत थी, वहां छोड़ के चला गया, तो फिर मैं इनके पास गया,
1: अकेला छोड़ के गया।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: ओके
0: जी। तो गया तो फिर मैं नाटक कंपनी के मालिक जो थे वो सुबह सुबह पहुंच गया कि ऐसा है तो क्या करते, मैंने कहा गाना गाता हूँ, उनका सुनाओ। तो मैं बुंदेलखंडी, मुझे साल शाम में फर्क मालूम नहीं था, मैंने सुना दिया कि बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, मैं गा के सुना देता हूँ।

0: नजर तो कहने लगे
1: उच्चारण वाला पार्ट फिर दिया।
0: हाँ, तो नहीं तो फिर उन्होंने कहा बेटा गाते तो सुरीला हो लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। मुझे क्या मालूम तलफ़ुज़ का मतलब क्या होता है। तो हंसने लगे सारे लोग
1: जी।
0: तो हंसे तो फिर मुझे फिर शर्मिंदगी हुई। तो कहने लगे बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, तलफ़ुज़ का मतलब प्रोनंसिएशन होता है। तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक कर लूंगा। तो मुझे 2.50 रुपये में उन्होंने रख लिया। और फिर वो शर्मिंदगी,
1: ये 60 के दशक की बात है।
0: जी जी जी जी 67 के बात है। तो उन्होंने मुझे रख लिया 2.5 रुपये रोज पे। और वो शर्मिंदगी, वो जो तबला वाला फिर मैंने कहा मैं तबला ठीक करके ही छोड़ूंगा। उसके बाद फिर मैंने 6 और 1 साल के अंदर उर्दू लिखनी पढ़नी भी सीखी।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: उससे फिर और मैंने देखा कि उर्दू जबान जो सुनना सिखाती है जा जा शा सा, तो वो सुनना, तो वो फिर वहाँ फिर रहने के बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते शुरू में गाना गाता था। फिर उन्होंने मैं एक्टर बना दिया, पहली बार सिपाही बना मैं। उसे फिर रोया मैं कि ये क्या मुझे हाथ में पकड़ के खड़ा कर, बोलना कुछ नहीं था लेकिन खड़ा कर दिया, बड़ा अच्छा लगा, भाला पकड़ा के खड़ा कर दिया था। वो अनारकली नाटक होता था उसमें। खैर वहां से फिर मुझे लगा, सब लोग कहने लगे बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, सीखो ये, तब सीखना फिर शुरू किया, फिर आग लगी।
1: आपकी पढ़ाई लेकिन आपने जारी रखी ना।
0: हाँ नहीं फिर उसके बाद फिर मैं हायर सेकेंडरी का एग्जाम देने दोबारा से गया वहाँ जबलपुर गया, फिर कर लिया था मैंने।
1: जी जी, हाँ, जी, जी। तो ये जो अंदर से आपके अंदर आगे बढ़ने की जो एक बात थी वो लगातार बनी रही। फिर आप NSD तक भी गए, फिर NSD में एक अलग ही ढंग से आपकी प्रतिभा उसे एक अलग उठान मिला। तो वो अनुभव, कोई यादगार क्षण वहां के जो आपको वहां से इतने वर्षों तक जोड़े रखे सिनेमा में आने से पहले,
0: क्या है कि एक तो वहां थिएटर मुझे समझ आया, यहाँ पारसी थिएटर
1: बिल्कुल,
0: और जो खाना बदोशी में जो मुझे सीखने मिला, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरत दिन वही थे। और हमेशा इंसान कमियों में सीखता है, अभाव में ही सीखता है। अगर सब कुछ दे दिया जाए तो कुछ तो, मैं इस मामले में इत्तेफाक से मैं लकी रहा कि मुझे वो बिल्कुल। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ, मुझे पता लगा कि थिएटर सिखाया जाता है।
1: जी जी।
0: उसी वक्त मेरी नौकरी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में भी लग रही, तो वहाँ 450 रुपये थे, यहाँ सीखने के लिए 200 रुपये था स्कॉलरशिप।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा मैं ये करूंगा, 450 नहीं चाहिए मुझे, 200 रुपये चाहिए। मैं चला गया, भर दिया फॉर्म, और अलकाजी साहब थे तो वहाँ इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू हुआ तो 6 साल पारसी थिएटर का, वो जब इंटरव्यू हुआ तो 45 मिनट तक इंटरव्यू चला। तो अलका साहब ने खुद ही कह दिया कि भैया हम आपके स्कॉलरशिप भी दे दी और अब आज हम आपको सेलेक्ट कर लिया।
1: देखिए ये अनुभव आपका कितना
0: जी,
1: काम है,
0: जी,
1: सच बात है।
0: फिर मैंने 3 साल वहाँ ट्रेनिंग की, और मैंने एक्टिंग में नहीं किया, मैंने स्टेज क्राफ्ट में किया। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सीखना, तो उन्होंने स्टेज क्राफ्ट में डाल दिया। अब मेरे क्लास के सारे बच्चे, मेरी क्लास के दूसरी और भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उन दिनों राज बब्बर भी वहीं थे और पंकज कपूर, ये सारे लोग थे उस वक्त। तो कहने लगे तू तो एक्टर, ये तो मजदूरों का काम है। मैंने कहा मुझे मजदूरी ही करना है। फिर उसमें जो स्टेज क्राफ्ट में मुझे मजा आया है, फिर मैं कारपेंट्री और ये उससे डिजाइनिंग और मेकअप और सारा कुछ सीखता रहा।
1: इस तरह आपका संगीत का जो रुझान है, उसको
0: संगीत
1: उसके
0: तो
1: कहाँ
0: छूटता है। संगीत तो मैं बिल्कुल अलग से टाइम निकाल के, और संगीत की वजह से ही फिर और भी चीजें मुझे सीखने को मिली। एक तो क्या है, एहसास और ये जो इमोशंस की जो बारीकियां वो संगीत से ही बड़ी जल्दी पकड़ में आती है, बड़ी जल्दी पकड़ में आती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: तो ये मेरे साथ था। तो फिर बस लगा,
1: इतने सारे वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं
0: जी।
1: तो गांव से तो कुछ तबला आपने
0: कुछ नहीं, कुछ नहीं जी मेरे पास, वो तबला तो वो भी नहीं आता उसको तबला समझ रहा। हारमोनियम में हाथ नहीं लगाने NSD गया, तब फिर मुझे हारमोनियम पहली दफा मैंने, क्योंकि वहां छू नहीं देते वो पार्श्व थिएटर में।
1: हाँ, अच्छा, नहीं मुझे लगा आपने कहा तो उसका
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं जी, जी। तो हारमोनियम था वहाँ मेरे मंदिर में रखा हुआ था, लेकिन इतना वो नहीं था, नहीं बजा पा रहा था मैं, क्योंकि पढ़ने लिखने में लगा हुआ। तो फिर घर से भागना भी था, अगर वहाँ हारमोनियम सीख लेता फिर वहीं मंडली बना लेता मैं, तो ये भी जरूरी था। तो ईश्वर की तरफ से जो होता है। फिर NSD आए वहाँ, फिर मैंने हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट, फिर सितार और ये जो है, तो बस ऐसे ही दिल बहलाने के लिए बहुत ज्यादा।
1: लेकिन आपके द्वारा जो फ्लूट बज रही थी
0: जी जी,
1: मतलब बांसुरी आप इतना सुंदर बजा रहे थे स्टेज में, लाइव बज रही थी, तो वो तो बता रही है कि आपने कितनी गहराई तक संगीत को साधा है।
0: तो एक तो क्राफ्ट, स्टेज क्राफ्ट में था, तो फिर बनाना भी आ गया, फिर बनाना भी सीख लिया। मेरे पास करीब 1500 करीब आसपास, और कई तरह की फ्लूट बना रखी मैंने, इम्प्रोवाइज करते करता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे तो हर उसमें ये पाइप अगर घर में पड़ा होता इसका मैं फ्लूट बना लेता। वो आया प्लम्बर आया तो उसका पाइप चोरी हो गया घर में लगा था, मैंने कहा घर से कौन, तो पता लगा मैंने पाइप काट के फ्लूट बना लिया।
1: क्या बात है सर, मतलब जुनून था ये। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते, ये आपके अंदर की प्रतिभा का अतिरेक था कि आप किसी भी जो भी चीज आपको सामने दिख रही थी उसको आप एक वाद्य यंत्र में बदल दे रहे थे फ्लूट के रूप में। अद्भुत बात रही। और फिल्मों की तरफ जो बातें हमने तो आपको, मतलब मैं तो ये कहूँ कि पूरे भारत में आप कई पीढ़ियों के प्रणेता रहे। मतलब हमारे बचपन में हमने चाचा चौधरी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने से शुरुआत की, आज की जनरेशन आपको पंचायत में देख कर खुश हो रही है। तो आप तो सभी जनरेशन, सभी दौर के पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बात जो है कि फिल्मों में जो शिफ्ट हुआ आपका, कि आप पहली बार जब फिल्मों में, तो क्या आपने अपनी इच्छा से अभिनय चुना है, कैसे आना?
0: नहीं, अभिनय तो था लेकिन फिल्मों का अभिनय का मुझे वो नहीं था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि करूंगा तो अच्छे तरीके से करूंगा। लोगों ने कोशिश की कॉमेडियन बनाने की, तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि इतनी जिंदगी सीखने में लगाई और सिर्फ मुझे एक ठप्पा लगाना चाह रहे, तो मैं, क्योंकि काफ़ी लोग कह भी रहे थे जब एनएसडी 3 साल पूरे किए, कोर्स ख़त्म किया, तो वहाँ पे कह रहे थे कि आ जाओ बम्बई आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो थिएटर करूँगा। मैं इत्तेफाक से मुझे वहाँ रेपर्टरी में, एनएसडी रेपर्टरी में, तो मैं 10 साल फिर उसमें रहा।
1: बिल्कुल,
0: कई फिल्मों को मैंने मना किया, छोटा मोटा मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। फिर किस्मत वही, मैसी साहब मिल गई मुझे, तो मैसी साहब मैंने वहीं रह के की दिल्ली में, सलाम बॉम्बे वहीं रह के की, सही परंजपी की मैंने 3 फिल्में की वो भी वहीं रह के। बाद मुझे शेखर कपूर पकड़ के ले गए अपनी फिल्म के लिए,
1: जी,
0: क्यों मैंने उनकी फिल्म को मना कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: कि कहीं से फोन आया उनका कि वो एक फिल्म बना रहे हैं दुश्मनी, उसमें कॉमेडियन का रोल है, तो मैंने फौरन कहा नहीं मुझे नहीं करना। कह रहे शेखर कपूर कर रहे, मैंने कहा कोई कर रहा हूं, मैं कॉमेडियन का नहीं करना मुझे। तो शेखर खुद ही मेरे घर पहुंच गए, मुझे फिर वो ले गया, फिर उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ।
1: और मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि मैसी साहब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला। और उसके बाद की कई फिल्में ऐसी हैं, करीब 7-8 फिल्में ऐसी हैं जिन्हें ऑस्कर से भी नॉमिनेट किया गया, ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया गया, चयनित किया गया। तो ये सारी उपलब्धियां आपके खाते में, मुझे तो लगता है उपलब्धियों की किताब है, जो मैं इस इंटरव्यू में तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन आपके अभिनय की बात हो, आपके संगीत की बात हो, आपके वादन की बात हो, आपके स्टेज क्राफ्ट की बात हो, इतनी सारी कलाओं को आप अपने में समेटे हुए हैं और रंगमंच आपका बेस बना, आधार बना है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रंगमंच के लिए जब वर्कशॉप में आते हैं, बड़े उत्साह से आते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी बीच में मुझे ऐसा लगा कि समाज के साथ जुड़ने के लिए कुछ झरोखे चाहिए होते हैं, जहाँ से उनकी बात हम तक आए, हम उन्हें कुछ बता सकें। ये छोटी छोटी खिड़कियों में ये थिएटर्स बड़े प्रभावशाली हैं, तो उन सारे लोगों को जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, क्या क्या हासिल किया जा सकता है जिंदगी में थिएटर से जुड़ के?
0: एक तो जिंदगी का सलीका थिएटर से ही मिलता है। आप अगर थिएटर से जुड़े हैं तो एक तो कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे, और थिएटर को एक्टिंग के उसमें ना लें। अगर ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम एक्टिंग करने के लिए थिएटर, जिंदगी सीखने के लिए अगर आपको जाना है तो थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सब कुछ सीखने मिलेगा और सीखना पड़ेगा आपको
1: जी।
0: क्योंकि थिएटर में ऐसा कोई काम नहीं जो आपको नहीं आना चाहिए, वो झाड़ू लगाने से लेके और कपड़े धोने से लेके और खाना बनाने से लेके सब कुछ, सबसे पहली जिम्मेदारी यही होती है कि आपको किचन संभालना आना चाहिए, क्योंकि वो जो रस का स्वाद जो आप तैयार करते हैं वही जिंदगी का स्वाद है, कि आप कैसे अपनी जिंदगी को संभालते हैं। और क्या है कि सीखने के लिए समंदर पड़ा हुआ है पूरा, एक जिंदगी बड़ी छोटी सी लगती है, सच कह दूं जिंदगी इतनी छोटी है कि इतना कुछ पड़ा हुआ है। और अगर आपने पहले से तय कर लिया कि मुझे वो बनना है, जैसे आपने मंजिल बना ली तो आप तो बन तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या है? इसलिए मैंने कोई मंजिल नहीं बनाई, मैंने सीखना बस रास्ता बनाना चाहा है कि रास्ता बनाते चलूं, कहीं ध्यान नहीं जाता अवार्ड ये मिल जाए, वो एकदम जिम्मेदारी लगती है कि आप सही रास्ते पे हैं, बस ये पता लग जाता है अगर कोई अवार्ड मिल जाता है कि सही रास्ते पे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं कि मैं बस अब बन गया, बनता कभी नहीं है, सच कह रहा हूँ, जितना सीखते उतना खालीपन लगता है। तो एक तो मुझे तैरने में मज़ा नहीं है, मुझे डूबने में ज़्यादा मज़ा आता है, कि डूब के अगर कोई काम किया जाए तो देखिए उसका कुछ और ही प्रभाव पड़ता है, असर होता है। कोई भी काम अगर डूब के किया जाए बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। कल का जो नाटक था उसने बहुत सारी बातों के साथ साथ संवेदनशीलता के एक पक्ष को भी बड़े प्रबल रूप में रखा। एक मजाक के रूप में एक बातचीत शुरू होती है, बाद में एक संवेदनशील एक इंसान के रूप में बदलना, और फिर तो ये थिएटर के साथ भी मुझे लगता है कि ये जो कलाएं हैं, आज जो संवेदनहीनता के दौर से हम गुजर रहे हैं, प्रकृति के प्रति हम बोलते हैं लेकिन हम आपस में भी संवेदनहीन हो रहे हैं।
0: जी, जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: ये थिएटर किस प्रकार इस चीज को हमारे जीवन में वापस ला सकता है?
0: बस यही है जैसा मैंने कल वो प्ले यही इसीलिए मैंने किया कि भैया ये कुछ तो एक अख्तियार कर लीजिए, कोई एक चीज तो, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे कुछ हो, अब कुछ तो एक आपका साथी होना चाहिए। हैं, इंसान साथियों में नहीं आते
1: जी।
0: हाँ, यही कोई एक कला है, अगर आप उसे अख्तियार कर ले।
2: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
0: करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, तो बस यही है। जी जी जी,
1: एक ही नाटक आप कई बार कई मंचों पे करते हैं
0: जी,
1: क्या कुछ नया हो जाता है? जैसे एक राग मालकोश कोई प्रस्तुत करता है एक मंच पे, अगली बार फिर राग मालकोश ही गाता, फिर भी वो नया होता है।
0: क्योंकि मैंने बांध के कुछ नहीं रखा है कि रट्टे मार के, मैं बिल्कुल नहीं करता, समझ के, और वो है उस तरह से मैंने रिहर्स किया इस नाटक को, तो हर दिन चेंज हो जाता है, हर दिन कुछ न कुछ फर्क आ जाता, और मजा उसी में है। एक जैसे में नहीं आता मजा, एक जैसे मजा ही नहीं आता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि कल जैसे किया था आज ही वैसे नहीं, फिर ऑडियंस को देख के भी फिर कुछ
1: इम्प्रोवाइज होता है। कई सारी भाषाओं पर आपका अधिकार है
0: जी,
1: और कई सारे डायलॉग्स आपके बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को बहुत हंसाते हैं। आप हर भाव में बड़े पारंगत हैं, आप हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, गंभीर भी हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात हमारे श्रोताओं तक इस रेडियो के माध्यम से पहुंचे?
0: वो जो रास्ते में दवा बेचने वाले नहीं होते हैं, तो मैंने एक बार करके दिखा दिया था, यूं इम्प्रोवाइज थे वो सारा जी। तो लो जी उठ बैठ, मुश्किल कुशा है जिसको काटे काला नाग कई पैर जिए, लो भाई मेरे सज्जनों जिसको काटे जुल्फ नागर मांग कर पानी ना पिए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दादा राम, बच्चे जरा बैठ जा तो मेहरबान, कदरदान उगालदान थूकदान पीकदान, आपकी बस्ती में आपके नगर में हर माई की 24 तारीख को आता हूं, क्यों आता हूं किस लिए आता हूं बताऊंगा, पेट में दर्द होता है, मसूड़ा सूख गया है, पेट में दर्द होता है जो दवा बताऊंगा, एक तो गद्दी पर रख के फांकी मारू, ऊपर से ठंडा पानी पियो, सुबह को खाओ, शाम को मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, दांतों में दर्द हो गया, मसूड़ा सूख गया है, जो मंजन बताऊंगा, एक तो लगती पर के दो घिस्से इस तरह मारो, दो घिस्से उस तरह मारो, ठंडे पानी से कुल्ली करो 3200 बार, तो बस भूलना।
1: क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
0: थैंक यू सो मच।
1: कितने अद्भुत अनुभव आपको अपनी इस रंग यात्रा के दौरान हुए हैं
0: जी,
1: और ये खुशी, ये हंसी, ये जो आनंद है आपके जीवन में, और उमंग लाए,
0: आप
1: बहुत आगे तक जाएं। बहुत ही अच्छी बातचीत, बहुत सारे पक्षों को हमने आज इस बातचीत में समेटने की कोशिश की है। हमारे श्रोताओं में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग आज आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: एक तो ऑडियंस को देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लगता है कि बार बार वापस आता रहूं, और क्या है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ परफॉर्म करनी, यहाँ से भी कुछ सीख के ही जाता हूं कि जिस तरह के लोग, जिस तरह से प्यार यहाँ मिलता है, तो ऐसा लगता है कि क्यों ना शामिल रहें, तो बस यही है। और बस यहाँ जो थिएटर रंगकर्मी है उनसे कहना चाहूँगा कि वक्त ज़ाया ना करें, अपने आप को पहचानें, क्योंकि खूबी सबके अंदर ईश्वर ने दी हुई है, खामियां भी हैं खूबियां भी हैं, तो खामियों को खूबियों में तब्दील करिए, और जो खूबियां उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। सीधी बात यह है, वक्त जाया ना करो, लेजी मत बनो।
1: बहुत अच्छा लगा आज रघुवीर यादव जी हमारे साथ रहे, और वाकई में आपकी ये सृजन धर्मिता, इसी तरह आपकी मंजिल, जैसा आपने कहा कि आप मंजिल को देख कर नहीं चल रहे हैं बल्कि यात्रा के अलग अलग पड़ाव में आप लोगों से जुड़ रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं, और सारी बातों को साथ लेकर आपके अंदर जो कुछ भी है उसे उड़ेल कर आप दे रहे हैं हम सबको, ये यात्रा ऐसी ही बनी रहे, आपकी सृजन धर्मिता से आप लोगों को यूं ही प्रेरणा और मनोरंजन देते रहें, यही मेरी कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए और बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री रघुवीर यादव से ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थीं सुप्रिया भारतीयन। यह आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नवा बिहान। इसमें ये सुनते हैं एक पेड़ माँ के नाम 2026। इसमें पर्यावरण श्री रामनारायण यादव से वीरभन भाव साहू की बातचीत का पहला भाग।

हरियर हरियर रुख राई हे, मोर पपिहरा गावत हे, नदिया नरवा झील औ झरना राग बतीसी गावत हे, सीना तान खड़े हिमालय बरबस मन ला लुभावत हे, ऐसन सुघर।

0: हर धरती राग देश ये सुनावत है, राग देश ये सुनावत है। यही भाव संग नव अभियान के आज के अंक में स्वीकारो वीर भानसाहू के जय जोहार। संगी हो, प्रकृति और माँ, ये दोनों शब्द देखे मा तो बहुते साधारण लगते, फिर एकर विस्तार मा विचार करन ता दोनों के कोनो अंत नहीं दिखे। जेन ढंगले प्रकृति अपन कोरा मा खेले जम्मो जीव जंतु पेड़ पौधा मा सर्वस लुटा देते, उसना महतारी तको अपन संतान बर सर्वस निशावर कर देते। ऐसे माँ के उपकार ले उरीन होना काखरो बर संभव नहीं है। बिगड़त पर्यावरण ले हमर प्रकृति के संतुलन हा लगातार डोलत जावत है, जेखर ले यदा कदा प्रकृति के गुस्सा कभी अवर्षा के रूप में त कभू भारी वर्षा के रूप में, बाढ़, भूकंप, भयंकर गर्मी या भयंकर सर्दी के रूप में प्रगट होते। मानव जीवन के विकास के साथ साथ प्रकृति के दोहन के ऐसे अमानवीय खेल मानव हा खेलिन कि प्रकृति प्रदत्त जीवनदायिनी हर जिनिस संकट में पड़ गए। कभी धरती के सिंगार वन उपवन हर जीवला सुकून दे, ओला अपन सुवारत बर मनुष्य ऐसे अंधाधुंध काटिस, ऐसे नाश करीन कि प्रकृति के संतुलन के बिगड़ना स्पष्ट दिखेला धरलिस। और प्रकृति के क्रोध भयंकर गर्मी, सूखा, बाढ़, तूफान या भूकंप जैसे स्वरूप में देखे बर आवत है। जैव विविधता हा संकट में आवत जात है, जेकर परिणाम स्वरूप हमर पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होके लड़खड़ावत जात है, गड़बड़ावत जात है। जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था है, जेन मा नाना प्रकार के पेड़ पौधा और विभिन्न प्रकार के जंतु जानवर मन के आवास होते। ऐसे माने जाते कि पृथ्वी के एक तिहाई हिस्सा जंगल ले ढके रहिस। फिर हमर भारत ही कहन तो सन 1900 में 7000 लाख हेक्टेयर भूमि में जंगल के विस्तार रही, जोन सन 2000 के आवत आवत घट के केवल 2370 लाख हेक्टेयर भूमि में सिमट गए है। और एकर एक ठन कारण नहीं है, कतको कारण ले धरती ले वन के क्षेत्रफल घटत जावत है। ये बात के दुष्प्रभाव धरती के पारिस्थितिकी तंत्र में देखे बर आवत है और बहुते चिंता के विषय आए। देखरे सेती हमर पर्यावरण प्रेमी मन और हमर सरकार मन एमा गंभीरता ले विचार करत है कि कौन किस्म ले घटत वन क्षेत्र ला रोका जाए और धरती के हरियाली ला फिर लौटाया जाए। समय समय में सरकार, समाज सेवी संस्था और पर्यावरण प्रेमी मन अधिक ले अधिक वृक्षारोपण कर धरती के श्रृंगार ला पुनः प्राप्त करे की कोशिश करें। यही कड़ी में बछर 2024 में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के बेरा में दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हा एक ठन पीपर के पेड़ लगा के एक पावन अभियान की शुरुआत करीन और ओला नाम दीन एक पेड़ माँ के नाम। और देशवासी मन ले अनुरोध करीन कि पिछले दशक में हमर देश भारत में ये दिशा में कई ठन सामूहिक प्रयास करे गए है, जेखर ले पूरा देश में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुए है। प्रधानमंत्री हा कहिन कि लगातार के विकास के रद्दा मा हमर मन के डाहर ले करे प्रयास बहुते अच्छा हावे। प्रधानमंत्री जी अपन एक ठन पोस्ट मा कहिन, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मोला एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू करे मा बहुत खुशी हुआ थे। मैं हा हमर देशवासी मन के संगे संग दुनिया भर के रहवैया मन ले आग्रह करूँ कि अवैया दिन में अपन महतारी के प्रति आदर प्रकट करे बर एक पेड़ लगावे। अब ये अभियान अपन तीसरा बछर मा प्रवेश कर डारे है और एसो के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 में एक पेड़ माँ के नाम 2026 की शुरुआत घलो हो गए। ये अभियान के का उद्देश्य है, एकर क्रियान्वयन बर कैसन योजना बनाए गए है, यही सब बात ला फरिहा के जाने बर आज हम बात करे हन जाने माने पर्यावरण प्रेमी और नाना प्रकार के पर्यावरण सम्मान ले सम्मानित ग्राम धमनी रोहासी पलारी जिला बलौदा बाजार के पर्यावरणविद श्री रामनारायण यादव जी ले। रामनारायण यादव जी कार्यक्रम नवा अभियान में आकाशवाणी रायपुर डहर ले अंतसली स्वागत करथन। जय जोहार।
1: पहले मैं अपन परिचय दे देता हूँ। महानदी के तीर में हे मोर धम्मी गांव, महानदी के तीर में हे मोर धम्मी गांव, रहता हूँ यहाँ राम नारायण यादव हे मोर नाव, पोस्ट सरोनी थाना पलारी जिला है बलौदा बाजार, आज जम्मू सुनैया भाई बहनी मल्ला मोर जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
0: बहुत बहुत सुंदर ढंग से आप अपन परिचय दे यादव जी, और आपके हमार नवा बिहान कार्यक्रम के ओर से और आकाशवाणी की ओर से हमन भी बहुत बहुत स्वागत करतन। और सबसे पहली आपला एक पर्यावरण प्रेमी पर्यावरणविद होए के नाते सबसे पहले हमारे ये सवाल है कि आप पर्यावरण और पर्यावरण संतुलन ला कौन दृष्टि ले देखते हो?
1: हाँ, ये है आज के बहुत बड़े सामयिक सवाल है, और ये सवाल की जवाब अगर प्रत्यक्ष कोनो देखना चाहते
0: जी
1: चला मैं देखे हूँ तप तपाती धाम तपत मझनिया बहु रुक तरी चल जतन तो कतका शांति और सुख के अनुभव होते। संगे संग का है ये पांच तत्व से निर्मित हमर जो तन है तिमा वायु के सबसे बड़े स्थान है, हवा के बहुत बड़े स्थान है, और जब तक ये पेड़ पौधा रही तभी हम अच्छा शुद्ध हवा के प्राप्ति ला कर सकत हन। और एक स्थिति जो है आज हमर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हा कथे कि एक पेड़ माँ के नाम, तो हमन कथन अरे जीवन में जरूरी है संगी करहू एक काम, एक पेड़ लगाहू जरूर महाकारी के नाम।
0: क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और यादव जी, आप लगातार पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपन जीवन ला खपात हो, तो वर्तमान में पर्यावरण की स्थिति ला आप बहुत करीब ले देखते हो, तो आप कहाँ पात हो?
1: हाँ, वर्तमान समय में शिक्षित हुई है, रुख राई लगाए के प्रति सबके भावना जागी से। जहाँ तक मैं मोर गांव के बात ला बताता हूँ और आसपास भी हमर गांव ला देख के लोगन मन प्रभावित होत हवे। हमर हरियर गांव धमनी के नाम से हमन हमर वर्तमान GO4 साहब गणवीर श्री गणवीर धमसिल जी के निर्देश में हमन शुरुआत करें, और आज वो नीम के पेड़ है अतका सुंदर लहलहावत हवे, जिला देख के हमारे गांव में आने गांव के अवैया मन घला प्रभावित हो थे, और लगाए पर सोचा थी हूँ मन की हमरो गांव हम इसने करी। आस पास में बहुत ऐसे गांव हवे जो मन ऐसा ऐसा दृश्य देख के प्रभावित हुआ थे और लगावा थे।
0: अच्छा अच्छा यादव जी, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है 5 जून 2024 ले दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक ठन पीपर के पेड़ ल रोप के एक महाअभियान के शुरुआत करीन, और नाम दिन एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान के विषय में आप विस्तार ले बताते हो।
1: ये जो अभियान है हमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी है आज पीपल के पेड़ लगा के मोला जुन्ना एक चीज ला याद करा दीस कि कथे कि बहुत बड़े राजा की बेटा रही से गौतम बुद्ध जी हा
0: जी
1: पहली, लेकिन जब वो देखी संसारिकता ला तो अंत में वो पीपल के पेड़ जो बोध गया में हवे ओखरी खाले में बैठ के और एक सही और सत्य ज्ञान ला प्राप्त करी। तो उखर मन के जो संदेश है ना, ये जो पेड़ लगाए के पीपल पेड़ लगाए के पीपल ला हमन आज भी पूजनीय पेड़ मानथन, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ में ही अग्रगण्य ओकर नाम आते। तो प्रधानमंत्री जी के जो ये संदेश है, ये संदेश हा बहुत ही सुखद है, और सब जन के लिए प्राणदायी वायु प्रदान करैया हमार ये पीपल के पेड़ ला लगाना चाहिए सब जन ला।
0: और यादव जी, प्रधानमंत्री जी है जिसे नाम दिस कि एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ माँ के नाम कहे के पाछू प्रधानमंत्री जी के का उद्देश्य रहिस?
1: हाँ, बहुत सुंदर एक यदि व्याख्या किया जाए ना तो एक लंबा चौड़ा पंथे व्याख्या, लेकिन संक्षिप्त में आप लोग बता दो कि सबसे बड़े रिश्ता हमर अगर देखा जाए तो महतारी हरे माँ हरे जननी हरे जे हम लोग जन्म दे है, और हम वो माँ के प्रति जो है हमला बहुत बड़े कर्जा उतारना है, लेकिन उतार नहीं पान हमें, हम हमार सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक पेड़ लगा के महतारी के नाम वो महतारी ला हम देख सकत हन। अगर हमार महतारी नहीं है ता, और धन्य भाग्यशाली जिकर महतारी आवे, तो महतारी से बढ़ के कोई रिश्ता संसार में नहीं है। बाद में पत्नी के रिश्ता आते हैं, लेकिन सबसे पहली महतारी क्या थे, माँ क्या थे, एक स्थिति मैं समझता हूँ कि माँ के नाम में जरूर एक पेड़ लगना चाहिए।
0: बहुत बहुत बहुत पावन उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी के, और आप जैसे पर्यावरण विद मन हैं, इला जिस तरह से विस्तार देते हो यह बहुत स्तुत्य है। अब हम आगे ये जानना चाहबो कि एक पेड़ माँ के नाम योजना के क्रियान्वयन पर कैसन ढंग के कार्य योजना बने हैं, एकर कौन है नोडल अधिकारी होते हैं, हमर जैसे हम अपन राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एकर जिम्मेदारी कौन ला मिले है, और हर जिला में किस प्रकार के एकर कार्य योजना बने हैं।
1: हमार बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत हमार वन विभाग के
0: जी
1: माने फॉरेस्ट विभाग है
0: जी,
1: सब जगह ये संदेश प्रसारित कर दे हवे, हम मन संदेश प्रसारित करत रहन
0: जी
1: कि देखो भाई बारिश है हो गए, बारिश जब होगी तो ओकर पहले तुमन चयन कर लो कि कहाँ कहाँ पेड़ लगाना है, खाली जगह आपत्तिजनक न रहे
0: जी,
1: चाहे वो स्कूल के मैदान हो, खाली भर्री हो, भाठा हो, वहाँ आप अधिक से अधिक पेड़ लगावा की के और पेड़ के उपलब्ध कराए बर हमार वन विभाग के DFO साहब जो है वन मंडलाधिकारी साहब के द्वारा साफ निर्देश है, अपन परिक्षेत्र अधिकारी मतलब निर्देश करते हैं, परिक्षेत्र अधिकारी मन जो हवे अपन सहायक मतलब निर्देश करते हैं, और थ्रू जो है वित्त प्रभारी जो होते हैं निकट गांव के निकट जंगल वाले मन, वो मन जगह जगह गांव गांव गांव गांव जाके और सब लोग बताते हैं कि देखो अपन अधिक से अधिक पेड़ लगावा, पेड़ की उपलब्ध हम कराबो। यहाँ तक वृक्ष मित्र एक योजना चलत है
0: जी,
1: ओकर अंतर्गत में आप जितना भी पेड़ लगा सका था आप हमला बताओ, हम आप लोग पेड़ उपलब्ध कराबो ही नहीं बल्कि लगा के भी देबो, आप लोग सुरक्षा करना है, एक बढ़ के और कौन सा मदद हो सकते पेड़ के प्रति जो हमारे शासन के प्यार है, शासन की उद्देश्य है, तो ये सब हमारे यहाँ ज्ञानवेन होते और सब लिखवाए लिखवाए हैं कि हम लोग आपका पेड़ चाहिए, हम बोला बिल्कुल सही समय में पेड़ उपलब्ध करा देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, और जैसे आम जनता यदि ये योजना से प्रेरणा पाते और वो ये में भाग लेना चाहते तो काकर से संपर्क करिए।
1: एक लिए बहुत ही सरल है कि आजकल मोबाइल के जमाना आ गया है, आप लोग मालूम है है ना, मोबाइल के माध्यम से सूचना करते हैं, गाँव में मुनादी करा देते हैं पटवार के माध्यम से कि भाई जेला पेड़ पौधा लगाना है ओला पेड़ पौधा हम मुफ्त में आप ला मुहैया कराबो, अगर गांव में अधिक संख्या में लगाते तो हम ट्रैक्टर से पौधा डाल के ओकर गांव तक पहुंचाबो, और ओकर से पहले 1.5 फीट by 1.5 फीट के गड्ढा आप मन खोद के तैयार रखो
0: जी,
1: ताकि हम आप ला पौधा दिन तो वो पौधा ला तुरंत आप मन रोपित करो
0: जी जी,
1: और रोपित करे के पहली जो उपचार है जेमा दीमक नाशक पाउडर है ओला डालो, अच्छा कंपोस्ट खाद लो में डालो और लगावा वो पेड़ ला सुंदर, और लगाए के पहली बहुत अच्छा पूजन पठन करके लगावाओ ताकि वो पेड़ हा सुंदर एक देव के रूप में परिणित हो गए आगू चल के, और पूरा माई पिल्ला जाके लगावा, ऐसे हमन के संदेश है बिल्कुल कहा जाए सघन रूप से हमन प्रचार कर।
0: राम नारायण यादव जी, अति सुघर जानकारी पर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, श्री राम कुमार यादव जी ले हुए गोड बात के शेष भाग नवा बिहान के अवैया अंक में सुनबो, और आखिर में हम यही कहिबो कि वृक्ष धरा के हाबे आभूषण सदा करो एकर संरक्षण, सदा करो एकर संरक्षण। जय जोहार।

नव अभियान कार्यक्रम में आपने एक पेड़ माँ के नाम 2026 में पर्यावरणविद श्री रामनारायण यादव से वीरवन भाव की साहू की बातचीत सुनी। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अभिनेत्री से, आवाज लता मंगेशकर की, बोल मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए, सुनिए उषा खन्ना के संगीत से सजी फिल्म सबक का ये गीत। इसे लिखा है सावन कुमार ने और आवाज मुकेश की है।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुनी योगेश की रचना, संगीत राजेश रोशन का था और फिल्म थी दिल लगी।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

दो झूठ इस फिल्म के गीत के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। चित्रपट संगीत का आप आनंद सुबह 10:30 पर पुनः उठा सकेंगे। वह फिल्म अभिनेता राजकुमार पर केंद्रित होगी। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं संतोष दिवाकर। इनकी आवाज में आइए सबसे पहले सुनते हैं कतिल शिफाई की ये गजल।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: सुगम संगीत के कलाकार हैं संतोष दिवाकर, इनकी आवाज़ में आइए आप सुनते हैं जिगर मुरादाबादी की ये रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे संतोष दिवाकर। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में आई तेजी, निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% बोनी का कार्य पूरा हुआ। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। अब तक लगभग 6,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% है। इस खरीफ सीजन में राज्य में 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को मांग के अनुरूप खाद और प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई करने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक किसानों को 7,28,000 मीट्रिक टन उर्वरक और 3,00,000 क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में कल आए आंधी तूफान में एक पेड़ 11 kV विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति को बहाल किया गया। युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा आज सुकमा में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागियों को स्टार्टअप पंजीकरण, विभिन्न शासकीय योजना, ऋण, बैंक और वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और व्यवसाय शुरू करने और उससे आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में आई तेजी, निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% बोनी का कार्य पूरा हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बसंत तिमोथी का राग नट भैरव में वायलिन वादन। विलंबित और द्रुतगत में यह निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें आपने सुना बसंत तिमोथी का राग नट भैरव में वायलिन वादन, जो विलंबित और द्रुत गति पर निबद्ध। तबले पर संगति की थी अवध सिंह ने। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। फिल्म अभिनेता राजकुमार आज के दिन यानी 3 जुलाई 1996 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन अपनी अदाकारी, संवाद अदायगी और फिल्मों से वे हमारे बीच हमेशा बने रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि है और इसी और ये चित्रपट संगीत का कार्यक्रम उन्हें समर्पित है। उन पर फुलमाए गए गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मदर इंडिया से। आवाज़ लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की है, बोल शकील बदायूनी ने लिखे हैं और संगीत नौशाद का है।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। ये चित्रपट संगीत फिल्म अभिनेता राजकुमार को समर्पित है। इससे पहले लीजिए सुनिए एक सूचना। श्रोताओं, इस आज शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा धान की उन्नत सीधी DSR बुआई विधि। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक सस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का स्टडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही यानी आज शाम को ही 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं फिल्म नील कमल का ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, बोल साहिर लुधियानवी के और संगीत रवि का।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

अभी आपने सुना साहिर लुधियानवी के रचना। इसे संगीत से संवारा था रवि ने। फिल्म थी काजल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल स्वर में साहिर लुधियानवी की रचना। इसे संगीत से संवारा है खय्याम ने। फिल्म है चंबल की कसम।

चंबल की कसम। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। बोल बोल साहिर लुधियानी के थे, संगीत खयाम का और आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। इसी के साथ चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम

0: मेरे हुजूर, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत आवाज़ मन्ना डे की थी, बोल हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी के साथ चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। ये चित्रपट संगीत फिल्म अभिनेता राजकुमार को समर्पित था। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का

0: फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के टोरंटो में आज पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा। इससे पहले लॉस एंजलिस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेयर एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक लोक गीतों का कार्यक्रम अनुराग धारा में मराठी गीत। कलाकार हैं साहिर साबले और साथी। कार्यक्रम में ये सबसे पहले सुनते हैं देवदत्त साबले की आवाज़ में मधुकर अरकड़े की ये रचना।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।

0: आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं अन्य प्रांतों के गीत अनुराग धारा में मराठी गीत। कलाकार हैं साहिर साबले और साथी।

0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं अन्य प्रांतों के गीत अनुराग धारा में मराठी गीत। कलाकार हैं साहिर साबले और साथी।
1: हो वेड़ लागले अरे वेड़ लागले या जनासी वेड़ लागले
2: महाराज महाराज लोकांच्या तोंडावर बोलताय लोकांना येड लागलं म्हणून
3: असं काय बोलू नका महाराज अशाना लोक दगडी मारत्याल
1: तेवढंच बाकी राहिलं
2: असू दे माझ्या महाराजांना सवय झालेली दिसती
1: अरे वेड़ लागले या जनासी वेड़।

अभी आप सुन रहे थे अन्य प्रांतों के गीत अनुराग धारा के कार्यक्रम में मराठी गीत। कलाकार थे साहिर साबले और साथ ही मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म डॉन का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। बोल इंदिवर के हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

अभी आपने सुना फिल्म शान का एक गीत। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा था राहुल देव बर्मन ने। आवाज़ आशा भोसले की थी। आइए अब सुनते हैं इंदिवर की रचना। इसे गाया है उषा उत्थुप ने, संगीत बप्पी लहरी का है और फिल्म है अरमान।

0: मैं तुम्हें नहीं मानने दूंगी राजा।
1: किसे नहीं मानने दूंगी? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तक तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे, मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। अब आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की नीति पर मुहर लगा दी है। इस नीति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेश भर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विभुदत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों का स्कूलों में तर्कहीन या असमान वितरण सुधारने के लिए सरकार का यह कदम जनहित में है। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में कल 4 जुलाई से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार के अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में कल आए आंधी तूफान में एक 11 kV विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति को बहाल किया गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संजय अग्रवाल के अनुभव का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा, योग और सर्वव्यापी होगा और जन जन तक पहुंचेगा, लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत

0: तो रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है

0: 2000 साल पहले।
1: नानी माँ।
2: हाँ निधि।
1: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
2: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
1: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
2: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
0: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
2: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
1: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
2: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
0: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
2: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
2: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
0: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
2: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना?
0: मामा जी, मामा जी।
3: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
1: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
1: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
3: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भोज वृक्ष?
3: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
3: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
3: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा,
3: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा,
3: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
3: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
3: शाबाश निधि।
1: मामा जी,

0: अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
0: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती, शाबाश। आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करूं, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो,

0: कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह। और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए। कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं, समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
4: अलख निरंजन।
5: ए साधु बाबा।
4: अब अच्छा,
5: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
4: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा है? हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
5: अच्छा।
4: हाँ,
5: बहुत बड़ी फौज है।
4: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
5: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
4: अच्छा,
5: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
4: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
5: बिल्कुल है।
4: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
5: उसका भी इंतजाम है।
4: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
5: देखो हा? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
4: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
5: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
4: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
5: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी

0: कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं रानी माँ नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
1: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं बेगम अख्तर। इनकी आवाज़ में पहले सुनिए दाग का लिखा ये कलाम।

बेगम अख्तर की आवाज में अभी आपने सुनी मोमिन की लिखी गजल। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं बेगम अख्तर। इनकी आवाज में लीजिए अब सुनिए सुदर्शन फाकिर की लिखी ये गजल।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज कलाकार थी बेगम अख्तर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर का 1 बजा है। हिंदी में समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

ये वादा रहा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना गुलशन बावरा की थी और संगीत था राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। साहिर के लिखे इस गीत के लिए संगीत खयाम का है और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

त्रिशूल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। साहिर के लिखे इस गीत के लिए संगीत खयाम का था। और अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है नसीब।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

स्पोर्ट्स केन रात 8:30 पर और करंट अफेयर्स रात 9:30 पर। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर सुनिएगा पंडित पृथ्वीराज कुमार का पखावज पर बजाया ताल चौताल। और इसी कार्यक्रम में रात 10 आपको सुनवाएंगे बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 और एक प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनिएगा शाम 6:30 पर।

युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवावाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय रहेगा रिश्तों की शुरुआत के लिए चाहिए एक पहल। साथ ही होंगे क्रम मार्गदर्शन और अपनी पसंद।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय रहेगा ये माह के मछली पालन के कार्य। और किसानवाणी में हेलो चौपाल में धान की उन्नत सीधी बुआई विधि विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे सतीश कुमार यदु और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुगम संगीत में आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे संतोष दिवाकर को। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें होगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें चौपाल में आज शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा ये माह के मछली पालन के कार्य और हेलो चौपाल का विषय रहेगा धान की उन्नत सीधी DSR बुआई विधि। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे सतीश कुमार यदु और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित पृथ्वीराज कुमार का पखावज पर बजाया ताल चौताल। आपके साथ हारमोनियम पर लहरा दे रहे हैं सती शंकर पंडा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित पृथ्वीराज कुमार का पखावज पर बजाया ताल चौताल में ये रचना। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत गुलशन बावरा का, संगीत राजेश रोशन का है और फिल्म का नाम है निशान।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: निदा फाजली का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। इस गीत को सुरों से सजाया खय्याम ने और फिल्म का नाम है ना खुदा।

ना खुदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। गीत निदा फाजली का था और संगीत था खय्याम का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत, जिसे लिखा है निदा फाजली नहीं, संगीत उषा खन्ना का है और फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वह खूबी बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों

0: विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत

0: के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत

0: अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

शादी में जरूर आना। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शिवांगी भायना की आवाज में। शब्द रचना शकील आजमी की थी और संगीत था जैम का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आतिफ असलम और तुलसी कुमार का गाया हुआ। कुमार के लिखे इस गीत के लिए संगीत रोचक कोहली का है और फिल्म का नाम है सत्यमेव जयते।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्थल बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाजें

सनम रे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज़ों में। गीत था मनोज मुंतशिर का और संगीत था अमाल मलिक का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह का गाया हुआ। शबीर अहमद के लिखे इस गीत के लिए संगीत हिमेश रेशमिया का है और फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तैं सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: निखिल डिसूजा की आवाज में सुनिए कुमार का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है क्रुक।

सिंह इज किंग, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में। गीत मयूरपुरी का था।

और संगीत था प्रीतम का, और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 अर्थात 981 kHz और एफएम बैंड 102.8 MHz पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं शाह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परम्परा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली राज्य सरकार के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधायी प्रक्रियाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। आज बंगाल की जनता ने मतदान के माध्यम से स्थिति बदल दी है। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। और मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has described the annual Amarnath Yatra as an eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country. He said the divine darshan of Baba Barfani is an unforgettable and deeply auspicious experience in the lives of millions of devotees. He also extended his greetings to devotees undertaking the annual Amarnath Yatra in Jammu and Kashmir. In a letter written to the pilgrims, the Prime Minister also urged devotees to take 5 resolutions during the pilgrimage. These include maintaining cleanliness throughout the yatra, strictly following all safety and administrative guidelines, supporting the local economy by spending at least 10% of their travel expenses on local products under the Vocal for Local initiative, gifting a sapling to a sibling on Raksha Bandhan to promote the Ek Ped Maake Naam campaign, and carrying the spirit of Nation First by performing their duties with honesty and contributing to the vision of a Vikasit Bharat. Meanwhile, the annual Sri Amarnath Ji Yatra, which began officially this morning, is proceeding smoothly from both Nunwa and Pahalgam and Baltal routes. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Vikasit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem. She noted that this partnership offers new opportunities in trusted AI, digital infrastructure and next-generation technologies. Highlighting the growing economic ties, Ms. Sitharaman said bilateral trade between the two countries has doubled over the past decade. She also appreciated the presence of around 1,000 French companies operating in India. A 2-day orientation program for the newly elected members of the West Bengal Legislative Assembly was inaugurated by Lok Sabha Speaker Om Birla today at the New Town Convention Centre in Kolkata. Om Birla was given a guard of honour before the inauguration ceremony. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari, Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju and other dignitaries were present in the inaugural ceremony. Addressing the ceremony, Lok Sabha Speaker Om Birla said, alongside a thorough understanding of the legislative process and system, it is essential for our legislators to make effective use of new technologies, innovation, AI and digital technology.
4: This is a time for digital innovation and AI technology. The digital parliament brings debate, discussion, government policies, laws, welfare initiatives and budget information into a single platform. It provides access to both the union budget and the state budget, making governance more transparent and accessible. Under the leadership of our Prime Minister, all government ministries have been brought together under the digital parliament. It enables citizens to stay informed about the parliamentary proceedings and consequently debates and discussions from across the country.
3: India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela has said India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez has declared 7 days of national mourning as the death toll from the powerful earthquakes that struck the country on the 24th of June rose to 2,595. In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. And with that, we end this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल को। जी हाँ, और ये कार्यक्रम है आपकी पसंद का, यानी कार्यक्रम मन भावन, जहां आपके मन के गीत की फरमाइशें आप हम तक पहुंचाते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, लिख भेजिए, नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldair@gmail.com। और सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, जिसकी फरमाइश हमसे की है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं राजू मिगलानी जी, राजेश वर्मा जी, विजय जी, सीताराम जी, बोधराज जी और साथ ही विजय जी। ये सब सुनना चाहते हैं किशोरदा की आवाज़ में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत आपने सुना किशोर दा की आवाज़ में। और हमसे जुड़े हैं हरियाणा से अंकित कांगड़ा जी, मोनी जी, प्रिंस जी, सीताराम जी और साहिल जी। मुझे लगता है कि सब परिवार ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और उत्तम नगर दिल्ली से होली चौक से हमारे साथ जुड़े हैं जयराम खोरवाल जी, सचिन जी, अमन जी, दीपांशु जी। फिल्म हकीकत से गीत को सुनना चाहते हैं जी, पूरी कोशिश। राजेश कुमार चौहान जी जालंधर से जुड़े हैं और आया सावन झूम से सुनना चाहते हैं, पूरी कोशिश रहेगी। मैं सबसे पहले आपके नामों को एक बार सम्मिलित कर लूं। प्रताप वर्मा जी हमारे साथ महावीर कॉलोनी सोनीपत से जुड़े हैं और कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। हमारे साथ उषा चंदन जी जुड़ी हैं, मास्टर अशोक कुमार जी और हरजिंदर सिंह भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये सब सुनना चाहते हैं कोई भी गीत मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। तो आपकी फरमाइशें आप तक।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुझे सुन रहे हैं यानी आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। कार्यक्रम मन भावन, जहां आपके फरमाइशें, आपकी दिल की बात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, फरमाइशों का पिटारा हम तक लगातार पहुँच रहा है और मोताला महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं विजय सुरलकर जी, रतनमाला जी और कुमकुम गुड़िया जी। ये लिखते हैं कि अंशु दीदी, प्रोग्राम हमें आपका अच्छा लग रहा है और जो प्रस्तुति है गीतों की वो भी इन्हें अच्छी लग रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही प्रकाश वर्मा जी हमसे जुड़े हैं, हम राज फिल्म से सुनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से ये जुड़े हैं और सब परिवार प्रिंस जी, निखिल जी और यशस्वी जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और गीतों की फरमाइशें भी हम तक आ रही हैं। सतीश अनीजा जी हमसे जुड़े हैं, लिखते हैं, नमस्कार बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चंडीगढ़ सिटी से ये हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं और हम देख सकते हैं कि अब्बासी जी और मुकेश जी और डीकेबी परिहार जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और सुनना चाहते हैं मुकेश जी की आवाज़ में खूबसूरत गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, कार्यक्रम मन भावन में। हमारे साथ जुड़े हैं गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुधार और सारिका सुतार जी। लिखते हैं, दीदी आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, पेशकश भी बहुत इन्हें पसंद आ रही है। मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में गीत को सुनना चाहते हैं जी, पूरी कोशिश। और देखते हैं कौन हमारे साथ में जुड़ा है। MD इरशाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मरियम जी, शाहजा बेगम जी और इरशाद अहमद शाह जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और पसंद आ रहा है कार्यक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र प्रसाद मोदी जी फिल्म तिरंगा से सुनना चाहते हैं गीत को। रामगढ़ कैंट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जैन जी, अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। लिखते हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? और संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिवियम जैन, मुझे लगता है एक नन्हा श्रोता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। और राशिद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आसना जी, नौरीन अंसारी जी, नसरीन जी।

0: और मोहम्मद कैफ अंसारी जी भी, मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये गीत आपके लिए।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या?

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है अपनी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल को। कार्यक्रम मन भावन, जहाँ पर आपके मन पसंद गीत, आपके दिल की बातें, आपकी फरमाइशें आप हम तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशल्या देवानगन जी, रोशन लाल जी और हेमलता डिम्पल देवानगन जी। साथ ही हमें मेल प्राप्त हुआ है स्वर्ण सिंह जी का, ये हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ से। स्वर्ण सिंह जी, दलजीत सिंह जी, राजदीप जी, गुरनूर जी, गुरलाल जी और अविराज जी, मुझे लगता है कि सपरिवार ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप सपरिवार कार्यक्रम को सुनते हैं, जुड़ते हैं। नई दिल्ली से कमलेश मुकुल जी, सचिन और दीपांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिल्म रोटी से गीत को सुनना चाहते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइशें मैं आप तक पहुंचाऊं। लालगिरी जी जुड़े हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, गीत को सुनना चाहते हैं। सपरिवार जुड़े हैं आपको बता दें हम, श्री गंगानगर राजस्थान से हेमलता जी, हीना जी, हर्षित जी और खुशी गोस्वामी जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और जाकिर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं मन भावन कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है और आज की जो पेशकश इनको सुनाई जा रही है वो भी इन्हें बहुत ही पसंद आ रही है। इसी तरह लगातार आप कार्यक्रम में जुड़ते रहें और जैसा कि आप सबने फरमाइश की कि लता जी की आवाज़ में गीत को आप सुनना चाहते हैं, तो ये लीजिए आपकी फरमाइश आप तक।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और कार्यक्रम मन भावन में सुरेश नारंग जी का हमें मेल प्राप्त हुआ है। लिखते हैं, प्रेजेंटेशन गीतों के साथ बहुत ही शानदार हैं और शुरू से ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सपरिवार सहारनपुर चंद्रनगर से हमारे साथ जुड़े हैं आशा नारंग जी, आशु नारंग जी और सोनाली नारंग जी के साथ में ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही जगदीश जी, अभी हमें इनका मेल प्राप्त हुआ है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और माफ़ कीजिएगा MP से हमारे साथ जुड़े हैं और जगदीश धाकर जी, श्रीमती रंजू जी, युवराज सिंह जी और शिवांगी जी सब परिवार कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कोई भी गीत अपनी पसंद का यानी मेरी पसंद का ये सुनना चाहते हैं। ओम कुमार जी लिखते हैं, अंशु बहन जी खूबसूरत पेशकश, फिल्म गहरा दाग से कार्यक्रम में इस गीत को सुनना चाहते हैं और साथ ही शेख जी और अदनान जी और बबलू जी भी महाराष्ट्र से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जुड़े हैं हमारे साथ उग्रसेन यादव जी, लिखते हैं राम राम जी, राम राम, और लिखते हैं कि हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, प्रेम पर्वत से गीत को सुनना चाहते हैं, नई दिल्ली से जुड़े हैं। शकुंतला यादव जी और गरिमा जी भी कार्यक्रम को सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गिरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, कार्यक्रम सुन रहे हैं और रिमझिम गिरे सावन किशोरदा और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं। मोहम्मद सदीक जी जुड़े हैं, साथ ही कुणाल सिंह जी भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, विजय महोबिया सुन रहे हैं कार्यक्रम और गंगाधर जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। ओम कुमार जी, जैसा कि हमने बताया, इनका फिर से हमें मेल प्राप्त हुआ है तो चलिए आपकी फरमाइशें आप तक जल्दी से पहुंचा देते हैं। राजवीर सिंह जी और जगदीश जी भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और हमें महाराष्ट्र से कुंडलवाड़ी से मेल प्राप्त हुआ है गंगाधर जी का, जो अपनी शायद सपरिवार सुन रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी के साथ में कार्यक्रम को सुन रहे हैं और साथ ही जॉन द कैस्ट्रो का हमें मेल प्राप्त हुआ है, कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है। राम कुमार जी का मेल प्राप्त हुआ है, लिखते हैं कार्यक्रम पसंद आ रहा है लेकिन हमारे गीतों को शामिल नहीं किया जा रहा है। जी पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो नाम मुझ तक पहुँचे हैं मैं उन्हें आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ, बस वो नाम ना रह जाए। निसार अली जी लिखते हैं, नमस्कार आरजे मैडम जी, जी नमस्कार। और अल्तमश जी का भी हमें मेल प्राप्त हुआ है, साथ ही एसएम जावेद जी का, कुणाल सिंह जी का, और ये हमें मेल प्राप्त हुआ है कुणाल जी का, हमने आपको बताया। और साथ ही रणबीर जी का ये हमें मेल प्राप्त हुआ है, सुरेश जी का हमें एक बार फिर से मेल प्राप्त हुआ है, गीत सुनना चाहते हैं, आइए इनके गीत आप तक पहुंचाएं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल आपके साथ। कार्यक्रम मन भावन, जहां आपकी गीत, आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं। अनूप कुमार जी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं और हमें मेल लिख रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं और मीठी से शिकायत भी इन्होंने की है। इनको ऐसा लगता है कि इनके मेल्स को पढ़ा नहीं जाता है या बहुत समय के बाद पढ़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लगातार मेल आते हैं और जैसे ही हमारे सामने मेल आती है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कार्यक्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके नामों को गीत के साथ में सम्मिलित कर सकें। उमेश कुमार जी जुड़े हैं और लिखते हैं, नमस्कार मैडम जी, आपका आज का कार्यक्रम हमें ठीक लग रहा है और साथ ही इशक मोहम्मद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान सपकाल जी भी जुड़े हैं, दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हैं गांव शोभापुर से, बाईपास मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और सपरिवार कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कविता गौड़ जी कार्यक्रम में ये सुन रहे हैं और लिखते हैं कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। दिलीप रामेकर जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सो मुझे लगता है कि दिल्ली के बाहर से बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये कार्यक्रम बस आज इतना ही था, मैं आपसे फिर से मिलूंगी 4:10 पर, जहां फिर से मैं आपके लिए कुछ फिल्मी नगमों को लेकर आऊंगी। अब आप 4 बजने को हैं, सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश वाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दे दिया गया है। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंपों में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, वहीं पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has described the annual Amarnath Yatra as an eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country. He said the divine darshan of Baba Barfani is an unforgettable and deeply auspicious experience in the lives of millions of devotees. He also extended his greetings to devotees undertaking the annual Amarnath Yatra. In a letter written to the pilgrims, the Prime Minister urged the devotees to take five resolutions during the pilgrimage. These are maintaining cleanliness, follow safety rules, support local products, gifting a sapling to sibling on Raksha Bandhan, and contribute to a developed India. Prime Minister of Japan, Sanai Takaichi, has departed from India following her highly successful visit. Ms. Takaichi was seen off by Minister of State, Dr. Jitendra Singh. During her visit, she attended the 16th India-Japan Annual Summit in New Delhi. In a social media post, External Affairs Ministry said the visit reaffirmed the commitment of both sides to nurture a partnership pivotal to the shared growth and prosperity of both the countries and an anchor for promoting peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific and beyond. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanai Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. Japan's Cabinet Public Relations Officer today highlighted the significance of the traditional Indian greeting, Namaste, after Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanai Takaichi greeted each other with folded hands during the Japanese Prime Minister's visit to India. In a post on social media platform, the Japanese Cabinet Public Relations Officer explained the meaning of the gesture known as Anjali Mudra. Globally, the Namaste gesture is practiced as it represents greeting, humility and gratitude. The Ministry of Information and Broadcasting has directed the Broadcast Audience Research Council, BARC, to stop publishing television ratings across both news and non-news genres until its license is renewed under the Television Ratings Policy 2026. The directive pauses BARC's ratings operations until the ratings body secures license renewal and is certified as fully compliant with the new regulatory framework introduced by the ministry. The government has ordered the removal of the BATBMS, Epoch iIron and Losigi apps from the Google Play Store and Apple App Store over security concerns. The action followed after allegations that the applications were being used to remotely disable e-vehicles, including e-rickshaws. Sources in the Ministry of Electronics and Information Technology said the decision was taken due to security concerns and the possibility of misuse. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela has said India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. The India Meteorological Department, or IMD, has issued red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and West Madhya Pradesh till tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbh. Heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The IMD has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimetres of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. Our correspondent reports the Brihanmumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert. Heavy rain also continued in the Konkan region. Water levels in major rivers have risen. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और आपकी रेडियो साथी आपके साथ अंशु अग्रवाल। और ये जो समय है 4:11, ये समय है कुछ फिल्मी नगमों को आप तक पहुंचाने का। तो फिल्म सौतन से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आइए इस गीत को सुनते हैं।

जी दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है और आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल को। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म सौतन से, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, जिंदगी प्यार का गीत है। ये गीत मेरे दिल के बेहद करीब है क्योंकि इस गीत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये गीत बहुत कुछ हमें संदेश देकर चला जाता है, ज़िंदगी का दर्शन दिखाता है। और फिल्म में भी इस गीत के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से आम जिंदगी में लोगों के यहाँ पर रिश्तों में उलझने होती हैं। इस गीत के माध्यम से प्यार बताया गया है, त्याग बताया गया है, और दर्द के बीच में यह गीत हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशियां और गम दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इससे संदेश बिल्कुल साफ है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर जीवन में फूल ना मिले तो कांटों के साथ भी मुस्कुराकर चलना सीखना होगा। इसीलिए गीत आज भी हमें प्रेरणा देता है और सदा बाहर गीतों में इस गीत को हमेशा सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से आप बने रहें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में आप रोजगार समाचार सुनेंगे।

एफएम गोल्ड चैनल, हम आपको बता दें 4:20 पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे रोजगार समाचार हिंदी और अंग्रेजी में। उसके बाद 4:30 पर कार्यक्रम परिक्रमा।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the National Board of Examinations in Medical Sciences, NBEMS, has invited online applications for 39 vacancies in Group A, B and C posts. Online registration is open and the computer-based examination is tentatively scheduled for 5th to 6th September 2026. The recruitment includes two posts of Deputy Director Medical Level 11 for candidates with a recognized postgraduate medical qualification, one Junior Programmer Level 7 requiring a BE, BTech or BCA or equivalent in Computer Science IT. Four Junior Accountant posts, Level 4, for Commerce, Mathematics or Statistics graduates. Seven Stenographer posts, Level 4, requiring 10 plus 2 qualifications with shorthand and typing skills. And 25 Junior Assistant posts, Level 2, for 10 plus 2 pass candidates with basic computer knowledge. The age limit is below 35 years for Deputy Director Medical and below 27 years for the remaining posts. Reservation will be applicable as per Government of India norms. For detailed eligibility, syllabus, important dates and online applications, kindly visit the website at www.natboard.edu.in. The Delhi Cantonment Board has advertised for the recruitment of 5 vacancies for Assistant Engineer Civil in Pay Level 7 requiring a degree in Civil Engineering. There is one vacancy each for Assistant Engineer Mechanical and Assistant Engineer Electrical in Pay Level 7 requiring a degree in Mechanical or Electrical Engineering respectively. The board has also advertised 2 vacancies for Junior Engineer Civil and one vacancy for Junior Engineer Electrical in Pay Level 6 for candidates holding either a degree or 3 years diploma in relevant engineering disciplines. The age limit for all posts is 21 to 30 years with relaxations for reserved categories as per government rules. The application fee is 850, while women candidates, SC, ST, PWBD, exempted categories, transgender persons and departmental candidates are exempted from paying the fee. Candidates should upload all required documents while applying online. Details regarding examination, syllabus, eligibility and admit cards will be notified on the Delhi Cantonment Board website, that is at www.delhicant.gov.in. I repeat, it is www.delhicant.gov.in. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has invited applications for one post of Deputy Director Engineering in its development wing on deputation, including short-term contract basis. The position is classified as General Central Group A Gazetted Non-Ministerial Post in Pay Level 11 as per the 7th CPC. The initial deputation period will be for 3 years. Eligible officers working under the central or state governments or other eligible organizations who fulfill the prescribed qualifications and experience can apply through the proper channel. Applications must reach the Under Secretary Administration, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Transport Bhavan, New Delhi, within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions, application format and other instructions are available on the Ministry's website, that is at www.shipmin.gov.in under the Vacancies section. I repeat the website, it is www.shipmin.gov.in. The LGB Regional Institute of Mental Health, Tezpur, Assam, an autonomous institute under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for the post of a director on deputation basis. Eligible Indian citizens possessing their prescribed educational qualifications, experience and fulfilling the age criteria may apply in the prescribed format. The completed applications must be submitted within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions, application format and other instructions available on the Institute's official website. Do refer to www.lgbrimh.gov.in. I repeat, it is www.lgbrimh.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। प्रबंधक डाक वाहन सेवा बेंगलुरु आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मोटर वाहन मैकेनिक, कुशल अपहोल्स्टर, कारपेंटर कम जॉइंटर और पेंटर। शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आरक्षण और सेवा शर्तों के लिए विस्तार से जानकारी दी गई है 27 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में। आवेदन आप इस पते पर भेज सकते हैं, प्रबंधक डाक वाहन सेवा, नंबर 4 बसवेश्वर रोड, वसंत नगर, बेंगलुरु 56001। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आवेदन आमंत्रित कर रहा है महानिदेशक के एक पद के लिए। योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, आरक्षण और सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट www.ayush.gov.in। इसके अतिरिक्त आप केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS नई दिल्ली की वेबसाइट पर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। पता है CCRAS.NIC.in। नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड प्रयागराज आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। ऑपरेटर SS इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रिक्तियों की संख्या 8। ऑपरेटर SS फिटर, रिक्तियों की संख्या 5। ऑपरेटर SS इलेक्ट्रीशियन, रिक्तियों की संख्या 6। कनिष्ठ सहायक IMM 3 रिक्तियां। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट HR रिक्तियों की संख्या 2। कनिष्ठ सहायक वित्त रिक्तियों की संख्या 2 और कनिष्ठ सहायक सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT रिक्तियों की संख्या 2। कार्य अनुभव, आयु सीमा, योग्यता, आरक्षण और नियुक्ति के स्थान तथा सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी आप हासिल कीजिए नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड की वेबसाइट पर, जिसका पता है nael.co.in। भारतीय नौसेना विभिन्न एंट्रीज के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के आवेदन आमंत्रित कर रही है। ये आवेदन AT-27 कोर्स के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें कार्यकारी शाखा, पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स, नौसेना आयुध निरीक्षण संवर्ग, शिक्षा, इंजीनियरिंग शाखा, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग, विद्युत शाखा सबमरीन टेक, इलेक्ट्रिकल, नौसेना निर्माण विशेषज्ञ पदों से संबंधित रिक्तियां उपलब्ध हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी समय रोज की तरह आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की ये जो हमारी मुलाकात होती है, इसमें लेकर आते हैं हम आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास ये जानने क्या कुछ ले आए हैं आज वो हमारे लिए खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहती हमारी बराबर नजर, और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी, जी हाँ, याद है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीष शर्मा, और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुनीष। So Manish, we are facing and going through a very hot and humid weather these days. The whole of the world is experiencing El Nino conditions which have set in, and there are forecasts to rapidly strengthen into a strong event by September, raising risks of heat waves worldwide, with new regions like New Zealand also likely to be affected, with the phenomenon expected to drive hotter, drier and windier conditions. Though the southwest monsoon arrived in Delhi yesterday, 5 days after its normal onset date in the end of June, bringing rain to several parts of the city, Mumbai woke up to another rain-soaked morning as heavy showers inundated low-lying areas, slowing road and rail traffic and showing little sign of easing, with the IMD forecasting more rainfall through the day. The Delhi people are still waiting for a cooler weekend, and we hope we have a comfortable weather to enjoy in the next 2 days. In this anticipation, let's apprise you all with the news making headlines at this hour. So let's start with the headlines. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया है। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है।
2: 2 day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal.
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज कर दी है। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता।
2: IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश टिल टुमारो।
1: और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में बना ली है अपनी जगह।
2: And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Plastic Bag Free Day.

0: Today, 3rd of July, is observed worldwide as World Plastic Bag Free Day. It's a day that reminds us that even the smallest choices we make can have a huge impact on our planet.
1: ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होता है, शायद घर तक किराने का सामान लाने ले जाने के लिए, लेकिन फिर वो सैकड़ों बरसों तक पर्यावरण में बना रहता है और ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है।
0: Yes, Munish, it really is. Plastic pollution has become one of the biggest environmental challenges of our time. Every year, millions of single-use plastic bags are discarded and many end up in rivers, oceans, forests and even in the stomachs of animals.
1: जी हाँ अनुजा, और एक बात पर जरा गौर कीजिए, आपको क्या लगता है? आप एक हफ्ते में कितने प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर लेते होंगे? शायद 2-5, शायद उससे कुछ ज़्यादा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हर परिवार हर हफ्ते इसी तादाद में बस कुछ बैग की कमी कर दे तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा।
0: Exactly. That's why World Plastic Bag Free Day encourages all of us to move away from single-use plastics and switch to eco-friendly alternatives.
1: जैसे कपड़े के बैग, जूट के बैग, कागज के बैग या मजबूत और बार बार इस्तेमाल होने वाले शॉपिंग बैग। ये ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं और सबसे जरूरी बात, पर्यावरण के लिए भी ये बेहतरीन होते हैं।
0: Certainly. And this year's theme is breaking free from single-use plastics towards a sustainable future. It's all about building simple, sustainable habits that can protect our planet for generations to come.
1: प्लास्टिक बैग अक्सर नदियों, झीलों, जंगलों और महासागरों में पहुंच जाते हैं, जिनसे भारी प्रदूषण फैलता है। ये खत्म नहीं होते, बल्कि सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में बने रहते हैं।
0: And the biggest victims are our wildlife. Marine animals, birds and even cattle often mistake plastic bags for food. And many suffer from choking, starvation or become trapped in these plastic waste.
1: जी हाँ, और एक और छिपा हुआ खतरा है, जिसे कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। जैसे जैसे प्लास्टिक धीरे धीरे टूटता है, वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, जो हमारी मिट्टी, पानी और यहाँ तक कि हमारे खाने को भी दूषित करता है।
0: That's right. Scientists have found microplastics almost everywhere, from drinking water to seafood and even in the human body. It's a reminder that plastic pollution eventually comes back to us.
1: लेकिन प्लास्टिक बैग कम करने का मतलब ये भी है कि लैंडफिल में कम कचरा जाए। चूंकि प्लास्टिक आसानी से सड़ता गलता नहीं है, इसलिए दशकों तक लैंडफिल की जगह को घेरे रहता है।
0: And here's another issue many people don't think about. Plastic bags often clog drains and sewage systems. During heavy rains, blocked drains can lead to waterlogging and also urban flooding.
1: जी हाँ, जलवायु से भी इसका गहरा संबंध है। दरअसल प्लास्टिक बैग बनाने में फॉसिल फ्यूल्स और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।
0: So by simply choosing reusable bags, we are not only reducing plastic waste, but also helping conserve natural resources and lowering the carbon emissions.
1: दरअसल भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और सस्टेनेबल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए। सन 2022 में सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कई चिन्हित चीजों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ने प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन, रिसाइकलिंग और सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया को और मजबूत किया।
0: एंड थ्रू द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, मैन्युफैक्चरर्स एंड ब्रांड ओनर्स आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड बाई देयर प्रोडक्ट्स। Initiatives like the Swachh Bharat Mission have also encouraged citizens to adopt better waste management practices and reduce plastic use, making the journey towards a cleaner and greener India a collective responsibility.
1: जी हाँ, और इसीलिए मैं तो अपने बैकपैक में हमेशा एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला कपड़े का बैग मोड़ करके रख लेता हूँ। ये बहुत कम जगह लेता है और इसकी वजह से मुझे घर पर दर्जनों प्लास्टिक बैग ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: That's a great habit, Munish. I recently started keeping one in my car as well. It's such a small step, but when millions of people do the same thing, it creates a powerful movement.
1: और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा चैलेंज है अनुजा. देखिए, आज घर से निकलने से पहले आप देख लें कि आपके पास दोबारा इस्तेमाल होने वाला बैग है या नहीं, और अगर नहीं है तो अब से इसे अपने साथ रखना अपना मिशन बना लीजिए.
0: ऑफ कोर्स, एंड डोंट स्टॉप देयर. एनकरेज योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स टू डू द सेम. समटाइम्स चेंज बिगिंस विद वन कन्वर्सेशन एंड वन सिंपल एक्शन.
1: याद रखिए, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब कोई एक बहुत बड़ा त्याग करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर दिन समझदारी भरे फैसले लेना.
0: सो ऑन दिस वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे, लेट्स मेक अ प्रॉमिस टू से no to single-use plastic bags whenever possible and yes to a cleaner, greener future.
1: क्योंकि हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले हर दोबारा इस्तेमाल लायक बैग का मतलब है हमारे ग्रह को प्रदूषित करने वाला एक कम प्लास्टिक बैग. आइए सिंगल यूज प्लास्टिक से हम छुटकारा पाएं और एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में मिलकर काम करें.
0: And yes, Munish, moving on, we have another topic also to discuss on today. Let's talk about something that's extremely important, women's safety and access to timely support. We have a dedicated platform for women's support, that is the NCW Women Helpline number 14490.
1: बिल्कुल, हर महिला को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने और अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अगर कोई हिंसा, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार

0: 1440 चलाता है। ये एक टोल फ्री और आसानी से याद होने वाला नंबर है, आपको याद हो गया होगा 1440, जिस पर महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं और फौरन मदद मांग सकती हैं।
1: And what's more reassuring is that the helpline is staffed by trained psychological counselors, ensuring that women receive professional guidance and compassionate support during difficult times.
0: जी हाँ, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की कोई भी महिला या कन्या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकती है, चाहे घरेलू हिंसा हो, उत्पीड़न हो या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, मदद बस एक फोन कॉल की दूरी पर है।
1: And this initiative is also a great example of how technology is making public services more accessible under the vision of Digital India.
0: तो आइए जरूरी नंबर यानी 1440 को याद रखें। हो सकता है कि आपको खुद इसकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन इसे जानने से किसी और की मदद हो सकती है जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत हो।
1: So, friends, stay informed, stay aware, and let's work together to build a safer and more empowered society for every woman.
0: और दोस्तों, वक्त हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ही जानने का क्या कुछ है खास उनके पास। श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: बोलो अमरनाथ की जय,
3: बाबा अमरनाथ बम बम।
4: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
5: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
6: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
4: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश फाक्षा।
0: दोस्तों, हरियाणा के सिरसा जिले में पैदा होने वाले रसीले और स्वादिष्ट फल कीनू को प्रतिष्ठित GI टैग मिला है। आइए सुनते हैं इसी पर ये प्यारी सी रिपोर्ट।
7: राज्य के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि ये कृषि में हरियाणा का पहला स्वतंत्र GI टैग है। इससे पहले हरियाणा को बासमती चावल और फुलकारी के लिए अन्य राज्यों के साथ संयुक्त GI टैग मिले हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे गौरवमयी क्षण बताते हुए कहा कि ये सम्मान क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाएगा और उनके उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि GI टैग मिलने से अब केवल सिरसा के निर्धारित मानकों पर उगे किन्नू को ही आधिकारिक रूप से सिरसा किन्नू के नाम से बेचा जा सकेगा। इससे बाजार में नकली उत्पादों और गलत ब्रांडिंग पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके अलावा इस प्रमाण पत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिरसा के किन्नू की साख बढ़ेगी और किसानों को सीधा निर्यात करने के अवसर मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि अकेले सिरसा जिले का राज्य में कुल किन्नू उत्पादन में लगभग 55% का योगदान है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा बागवानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिरसा के वीटा दुग्ध संयंत्र परिसर में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
1: And now from Haryana to Jaipur, where the North Western Railway has said that the newly developed mega coaching terminal in Katipura Railway Station in Jaipur will significantly strengthen railway maintenance infrastructure and support the growing demand for train services in Rajasthan. Talking to Media Chief Public Relations Officer of the Northwestern Railway, Amit Sudarshan said that the terminal has been developed to meet Jaipur's increasing coaching maintenance requirements in view of the city's rapid growth and the rising demand for rail connectivity across the state.
8: कि ये मेगा कोचिंग टर्मिनल जो है जयपुर की लगातार बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेवलप किया गया। पहले जयपुर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से राजस्थान में ट्रेन की डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जयपुर में एक एडिशनल कोचिंग मेंटेनेंस मेगा टर्मिनल की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो इस मेगा कोचिंग टर्मिनल से वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। मैं ये कह सकता हूँ कि जयपुर में जयपुर जंक्शन जैसा ही एक और स्टेशन यहाँ पे डेवलप कर दिया गया है, जहाँ से ट्रेनें ओरिजिनेट हो सकती हैं।

0: कन्वर्ट हो सकती है। ये एकदम एडवांस है, जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनको इसमें यूज किया गया है, चाहे वो रिट्रेक्टेबल OHE हो, चाहे ड्रॉप पिट्स हो, चाहे वंदे भारत के मेंटेनेंस हो, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है।
1: Mr. Sudarshan also informed that Gandhinagar Railway Station in Jaipur is undergoing a major redevelopment to become a world-class transit hub under the Amrit Bharat Station Scheme.
2: दोस्तों, महाराष्ट्र में धाराशिव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया रक्त विकार पर अनुसंधान करने के बाद एक दवा तैयार की गई है। एक रिपोर्ट।
3: धाराशिव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 अगस्त 2025 से 27 जून 2026 तक इस दवाई की क्लिनिकल ट्रायल ली गई, जिसमें पूरे राज्य से 130 मरीज शामिल हुए। अनुसंधान की इस प्रक्रिया के बारे में अनुसंधानकर्ता डॉक्टर शुभम धूत ने आकाशवाणी से और अधिक जानकारी साझा की।
4: हेमोफिलिया एक जन्मजात दुर्लभ अनुवांशिक रक्तस्राव विकार है। इसमें शरीर में रक्त को जमाने वाले क्लॉटिंग फैक्टर, विशेष रूप से फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की कमी होती है। इसके कारण मरीजों को रक्तस्राव, जोड़ों में खून जमना, तीव्र दर्द और आजीवन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित रक्तामृत वटी और रक्तामृत तेल विकसित किए गए हैं तथा उन्हें एक पूरक उपचार पद्धति के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से मूल्यांकित किया गया। रक्तामृत वटी आयुर्वेद की दुर्लभ एवं प्रभावी औषधीय वनस्पति के आधारित पर तैयारित की गई है। इस औषधि ने अब तक अनेक हेमोफिलिया मरीजों को दैनंदिन जीवन में सामान्यता की ओर लौटने और राहत अनुभव कराने में सहायता की है। यह प्रारंभिक वैज्ञानिक निष्कर्ष है और इन्हें आगे बड़े तथा नियंत्रित अध्ययन में और वैज्ञानिक रूप से परखा जाएगा।
3: आशा है कि धाराशिव में तैयार हो रही इस दवा से पूरे विश्व में मरीजों को हीमोफीलिया से राहत मिलेगी। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
2: और दोस्तों, आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल।
1: So we begin with the FIFA World Cup. Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in their round of 32 match in Toronto, Canada. And coming to the business news of the day, benchmark domestic equity indices ended with modest gains today, extending their rising streak for the third straight session. The Sensex rose 262 points or 0.34% to close at 77,764. The Nifty also added 95 points or 0.4% to settle at 24,271. For more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 PM this evening.
2: दोस्तों, यहां आकाशवाणी पर हम हर रोज याद करते हैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करते हैं उन महान व्यक्तित्वों की भी है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
5: We remember nationalist Hansa Jeevraj Mehta, who was born on the 3rd of July 1897 in Surat, Gujarat. She participated in the non-cooperation and Swadeshi movements and was arrested in 1932.
6: Hansa Jeevraj Mehta studied philosophy at Baroda College and then journalism and sociology in England. In 1920, while in London, Mehta met Sarojini Naidu, who would later introduce her to Mahatma Gandhi and the Indian Women's Freedom Movement. Mehta's political career was marked by her 1937 Bombay Legislative Council election win.
5: Mehta remained on the council until 1949. During this time, Mehta became closely involved with the All India Women's Conference and became its president in 1946. During her presidency, she drafted the Indian Women's Charter of Rights and Duties, which demanded gender equality and civil rights for women.
6: Mehta also served as a member of the United Nations Subcommittee on the Status of Women in 1946. She was the vice chair with Eleanor Roosevelt of the United Nations Universal Declaration of Human Rights Committee. Mehta became the first female vice chancellor in India with her appointment at Srimati Nathibai Damodar Thakrasi University in Mumbai.
5: Mehta was elected to the Constituent Assembly from Bombay, where she strongly argued in favor of women's rights and intervened in debates on uniform civil code and reservation. Mehta was the Indian delegate to the United Nations Human Rights Commission.
6: She played a significant role in ensuring that Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights was made inclusive and is credited with changing the phrase "All men are born free and equal" to "All human beings are born free and equal."
5: The Government of India awarded Hansa Jeevraj Mehta with the Padma Bhushan in 1959. She passed away on the 4th of April 1995. This great daughter of India.

0: We also pay tribute to M.L. Vasanta Kumari. She redefined the way Carnatic music was presented. M.L. Vasanta Kumari penchant for innovation made her a class apart. She followed her quick silver style of rendition, but brought some own charm of her individuality in it, creating a whole new bani. And Madras Lalithangi Vasanta Kumari was a prodigy, giving a public performance when she was all of 13 only. We have a rendition in her voice.
1: और दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का. आज्ञा दीजिए हमें यानी मुझे मुनीश शर्मा और अनुजा को. कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in. आज्ञा दीजिए हमें नमस्कार.
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है. 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है. अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें. आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है. प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ.

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, असकला, दोरना, जरहाडी, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढाप, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, लोटा पानी, श्री टोली, मयूर चूंदी, बोडालता, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर, उदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, बर्नी झरिया, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सैहा भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड, ताराझर, डडईपानी, कोलापारा, बुडार, जिडार, छिंदौला, लूठापारा, चालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

0: साथियों आगे बढ़ते हैं और आज मौका है क्रम मार्गदर्शन आप सबको सुनवाने का। आज नीट देने वालों के लिए कृषि से संबंधित क्षेत्र में अवसर, इस विषय पर श्री सारंग पोपली से बातचीत कर रहे हैं दीपक हटवार।
1: मार्गदर्शन के सभी युवा साथियों को दीपक हटवार का नमस्कार। हमारे बहुत से युवा नीट की परीक्षा दे रहे हैं। नीट की परीक्षा में सभी की इच्छा यही होती है कि उन्हें किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाए, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके अंक कम होने की वजह से वे MBBS में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अन्य और कौन से अवसर हैं, क्षेत्र हैं, और अन्य क्षेत्रों के अलावा कृषि से संबंधित क्षेत्रों में उन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए, करियर को बनाने के लिए कौन कौन से अवसर हैं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने संपर्क किया डेयरी साइंस और फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सारंग दिलीप पोपली साहब से। सारंग जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: सारंग सर, नीट का एग्जाम लाखों की संख्या में विद्यार्थी देते हैं और सभी की कामना यही होती है कि मेडिकल कॉलेज में उनको प्रवेश मिल जाए, लेकिन अंक कम होने की वजह से जब मेडिकल कॉलेज में चाही गई सीट उन्हें नहीं मिलती, तब उनके लिए कृषि और संबंधित क्षेत्र में किस तरह के अवसर होते हैं, इसकी जानकारी

0: जानकारी कई युवाओं को होती है, कई युवाओं को नहीं होती है, तो आप बताएंगे कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें नीट में बहुत अच्छे अंक नहीं मिले हैं, तो उनके लिए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में किस तरह के अवसर हो सकते हैं?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी जो रह जाते हैं MBBS एडमिशन से, कई बार ड्रॉप लेके सालों साल तक तैयारी करते रहते हैं, नहीं हो पाता
0: जी।
1: ऐसे में साल खराब करने से अच्छा है कि आप किसी दूसरे डिग्री प्रोग्राम में जिनमें बहुत स्कोप है, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, भविष्य बहुत अच्छा है, उनमें भी एडमिशन दिए जा सकते हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर आप मेडिकल की फील्ड से एसोसिएटेड देखें तो डेंटल का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसको कहते हैं BDS। तो बहुत सारे जो युवक हैं वो BDS की तरफ भी जा सकते हैं इसमें से। फिर जो दूसरे तरह की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनकी भी डिग्री प्रोग्राम्स अलग अलग गवर्नमेंट्स चलाते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम BAMS कहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। फिर बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इस पे भी अब धीरे धीरे करके इनमें भी बहुत स्कोप बढ़ रहा है। फिर सिद्धा मेडिसिन भी एक है, तो फिर बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जो नेचुरोपैथी की जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती है उनके बारे में जो पढ़ाया जाता है। और अब क्योंकि हम पिछले कई सालों से, कुछ सालों से हम योगा पे भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस में भी बहुत डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप वेटनरी साइंसेस, जो कि जो जानवरों के डॉक्टर का काम होता है, क्योंकि उसमें इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इतने सारे लोग मवेशी रखते हैं घर पे, पेट एनिमल्स रखते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, जो आपके वाइल्ड लाइफ में जो जानवर होते हैं उनके इलाज के लिए, जो जू में जो जानवर होते हैं उनके इलाज के लिए, जो मवेशी हैं आपके, गाय बछड़ा, उनके इलाज के लिए भी आपको इन डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसको BVSC एंड AH कहते हैं, इसकी भी एडमिशन प्रक्रिया में नीट के थ्रू होती है, तो अगर आपका नीट का रैंक है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके अलावा BSc नर्सिंग के कोर्सेज चलते हैं, तो आप BSc नर्सिंग में ले सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो फिजियोथेरेपी जो एक पूरा अपने आप में डेडिकेटेड साइंस है, जिसमें कायरोप्रैक्टर्स वगैरह बन सकते हैं आप भविष्य में, उसमें BPT का कोर्स कहते हैं उसको, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिर इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो कुछ और पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, जिनमें नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है, तो जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ऑप्टोमेट्री, फिर बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, जिसको BASLP कहते हैं, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT होता है। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें हमारे जो 12वीं से जो छात्र पास हुए हैं, जिनके पास नीट का स्कोर कार्ड है, भले ही वो पीछे रैंक है, तो इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया में अवेलेबल है इन सारे कोर्सेज में।
0: सारंग साहब, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी। अब अगर हम एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहें तो वेटनरी भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है और फिशरीज भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, है ना?
1: मैंने मिस किया उस चीज को, फिशरीज में बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज, जो
0: जी जी
1: बहुत सारे प्रदेशों में जो जैसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है, वैसे ही आजकल ऑलमोस्ट हर स्टेट में आप देखेंगे स्टेट में एक वेटनरी यूनिवर्सिटी भी होती है, तो उसमें फिशरी साइंसेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज में आप 4 साल का कोर्स होता है इनका, और आप अगर नीट के थ्रू इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें स्कोप बहुत है आगे भविष्य में, क्योंकि फिशरीज इंस्पेक्टर हो गए, जितने भी फिशरीज में भी अलग अलग तरह की फिशरीज होती है, कोस्टल या फिर मराइन फिशरीज होती है, फिर फ्रेश वाटर में होती है, जैसे जहाँ पे समुद्र लगता है जिन इलाकों में, हमारे जिन शहरों में, वहाँ पे अलग तरह की फिशरी का सिस्टम है, जो शहर के जो मेनलैंड इंडिया है, जहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, जहाँ पे समुद्र नहीं लगता, वहाँ पे फ्रेश वाटर फिशरीज की जाती है, तो इनमें बहुत तरह की संभावनाएं होती है भविष्य में, बहुत अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल है। तो बैचलर ऑफ फिशरीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर साइंसेज की तरफ से देखें तो BVSC डिग्री और BFSC डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं।
0: सारंग साहब, अब अगर हम वेटनरी की बात करें तो बहुत से विद्यार्थी ये समझते हैं कि वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए उन्हें अलग से कोई एंट्रेंस देना पड़ेगा, और बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं और नीट में उन्हें चूंकि MBBS में प्रवेश नहीं मिल रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विस्तार से वेटनरी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वेटनरी का कट ऑफ लिस्ट जो है वो इन दिनों कहाँ तक चला जाता है?
1: ये डिपेंड करता है क्योंकि क्या है अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसको ऑफर करती है और ये स्टेट लेवल पे ऑफर होता है. तो जो जो स्टूडेंट जैसे आप अगर हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे यहाँ पे वेटनरी के अभी दो कॉलेजेस हैं, एक अंजोरा में और एक बिलासपुर में. तो बिलासपुर का अभी बिल्कुल नवनिर्मित कॉलेज है, उसमें भी एडमिशन होने वाले हैं. तो अब इसमें कैसा होता है कि जो जिन बच्चों का डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है और उन्होंने नीट अपियर किया हुआ था, उनके पास ऑल इंडिया नीट का एक रैंक है. तो पहले यहाँ पे छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल के बच्चे जिनके पास नीट का रैंक है वो उनकी पहले यहाँ पे अलग से मेरिट लिस्ट बनती है. आपको अप्लाई करना पड़ेगा पहले इनकी, आपको कामधेनु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके अप्लाई करना पड़ेगा. और इसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. इसके बाद ये जो एडमिशन आपको सिमिलर टाइप की प्रोसेस आपको बिल्कुल फिशरीज के लिए भी लागू होती है. और अगर आपका एक अगर MBBS में अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं नाम आता है कहीं पे तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा रहेगा अगर आप स्टेट के डोमिसाइल को बिलोंग करते हैं. और इसके बावजूद भी अगर आपका स्टेट में भी नहीं होता, स्टेट के वेटनरी साइंस प्रोग्राम में नहीं होता, तो जो दूसरे कॉलेजेस हैं जो इंडिया में पंजाब में जो कॉलेजेस हैं, मध्य प्रदेश में जो कॉलेजेस हैं, बहुत बहुत नामी नामी जो कॉलेजेस हैं, वो भी एडमिशन देते हैं अदर स्टेट्स वालों को. उसमें फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो उनकी जो रिक्त सीट भरी हुई है उन पे डायरेक्ट आपके पास नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में. तो ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा. जो प्रदेश में है, आपके प्रदेश में जो है वहां की आपकी अपनी सेपरेट मेरिट लिस्ट होती है, फिर वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं.
0: सारंग साहब, एक शिक्षित युवा का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए. और अगर हम सरकारी नौकरी की चाहत के साथ एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहें और वो भी अगर नीट में परीक्षा देने वाला कोई युवा वेटनरी में या फिशरीज में जाने के लिए उसके पास पूरे अवसर हैं और वहाँ से अगर वो शिक्षित होकर निकलता है तो जो सरकारी नौकरी की प्राप्ति के जो अवसर हैं वो उसकी संभावनाएं कितनी ज्यादा होती हैं?
1: मैं कहूँगा कि अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो हमारे वेटनरी के जो ग्रेजुएट्स हैं और जो फिशरीज के ग्रेजुएट्स हैं उनको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने ही प्रदेश में उनको सरकारी नौकरियां मिल गई. वो वेटनरी के जो जो यहाँ पे वेटनरी डिपार्टमेंट है हमारा जो शासन के अंदर आता है वहाँ पे हायरिंग होती है वेटनरी सर्जन के रूप में, वहाँ पे वेटनरी असिस्टेंट सर्जन VAS के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके इतने पद आते हैं हर साल, तो मैंने कोई पिछले बहुत सालों में ऐसा देखा है कि ऐसा कोई साल जाता ही नहीं है कि यहाँ पे पद ना आ रहे हों. हर एक दो साल में यहाँ पे पद आएंगे और इनको सिर्फ मतलब आपने हायर क्वालिफिकेशन नहीं भी ली है, सिर्फ BVST भी है तो भी आपको जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इसमें. और ये परमानेंट सरकारी जॉब आपके पास एक ऑप्शन है. फिशरीज वालों के लिए यहाँ पे पिछले बहुत सालों में जो फिशरीज का जो डेवलपमेंट हुआ है केंद्र सरकार ने और जो राज्य सरकार ने फिशरीज के ऊपर फोकस किया है क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है, तो बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको वो फिशरीज में लाना चाहते हैं. इसके लिए वो फिशरीज इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं, जिससे वो फिशरीज इंस्पेक्टर का काम ये होता है कि वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके अलग अलग जिलों में जाके फिर फिशरीज के समर्थन का काम करे कि कैसे हम ग्रामीणों को और कैसे हम युवाओं को फिशरीज के ऊपर ट्रेनिंग दे सके. तो इसके लिए फिशरीज इंस्पेक्टर की पोस्ट हमेशा आती है और बहुत सारे बच्चे जो हमारे ही विश्वविद्यालय के जो बहुत सारे फिशरीज के BFST के बच्चे हैं वो हर साल ऑलमोस्ट फिशरीज इंस्पेक्टर बन के ज्वाइन कर रहे हैं और अपने ही प्रदेश में काम कर रहे हैं. कुछ लोग तो अपने घर के पास उनको मिल गया है पोस्टिंग. तो ये बहुत सक्षम फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है. मैं आपके श्रोताओं से, जितने भी श्रोता जो स्पेशली युवा श्रोता सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि इसमें गवर्नमेंट के जॉब्स भी बहुत अवेलेबल हैं और उतने ही आपके प्राइवेट बिजनेस करने के या आपके खुद के, अगर आप BVST हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपको आपके पास प्रॉपर एक जानवरों का जो एक हमारी जो बॉडी होती है जिसको वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, उनकी तरफ से आपको लाइसेंस मिलता है. आप उस लाइसेंस के साथ आप खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जिसमें आप वेटनरी के जितने क्लिनिक देखते हैं शहर भरों में वहाँ पे अलग अलग जानवरों का इलाज करके आप बहुत अच्छा अपनी आजीविका चला सकते हैं. ये बहुत इसमें बहुत फ्यूचर में बहुत स्कोप है इन चीज़ों में.
0: सारंग साहब, अब एक सार में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 720 अंकों का नीट का पेपर होता है तो उसमें कितने अंक पाने वालों को वेटनरी कॉलेज में या फिशरीज में एडमिशन मिल सकता है लगभग?
1: अगर आप कट ऑफ की बात करें तो जब पूरा MBBS क्लोज हो जाता है तो आप मान के चलिए लगभग 300-350 पे तो स्टार्ट हो जाती है एडमिशन, उससे कम वाले भी, इवन अगर आप 100-150 वाले भी हैं, ये अगेन ये हर साल की कट ऑफ अलग अलग जाता है। और इससे एक चीज ये रहेगा कि आपका जो स्टेट का मेरिट लिस्ट होता है, क्या होता है कि कई बार किसी बच्चे ने किसी और जगह पर एडमिशन ले लिया तो मेरिट लिस्ट खिसक के जाती है, तो आपको ये चीज अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जो हमारे जितने भी छात्र सुन रहे हैं उनको अप्लाई करके एक बार देखना पड़ेगा, फिर भी 150-200 की मेरिट लिस्ट आराम से जाती है, 150-200 का कट ऑफ।
0: तो युवा साथियों, सुना आपने कि नीट का एग्जाम देने वाले हमारे युवा साथी जिनके नंबर अगर बहुत ज्यादा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश अगर उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए वेटनरी कॉलेज और फिशरीज कॉलेज यानि पशु चिकित्सा और मत्स्य यानि मछली से संबंधित जो अध्ययन है वहां पर आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी नौकरी की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सारंग साहब, आज आपने हमारे युवा साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ हमारे युवा साथी अवश्य उठाएंगे। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम मार्गदर्शन, विषय था नीट देने वालों के लिए कृषि से संबंधित क्षेत्र में अवसर। इस विषय पर बात कर रहे थे श्री सारंग पोपली से दीपक हटवार।
3: वैसे साथियों, आप सब युवा साथी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है किताबें, यानी कि बुक्स।
2: और कई बार ये किताबें इतनी महंगी हो जाती हैं कि इन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में मैं आज आपको एक खास चीज़ के बारे में बताती हूँ।
3: और वो खास चीज़ है NDL, यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। साथियों, NDL एक शासकीय वेबसाइट है जिसमें 9 करोड़ से भी ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स और किताबें हैं। NDL संचालित है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा और इसे बनाया है IIT खड़गपुर ने।
2: तो साथियों, है ना कमाल की चीज़। और एक खास बात, इस प्लेटफॉर्म में एक नहीं कई भाषाओं की किताबें आपको मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो आप सबसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए सुनते हैं क्रम अपनी पसंद का ये पहला नगमा।

0: फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत। स्वर थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल के, गीत लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया था शांतनु मोइत्रा ने।
1: और पसंद थी हमारे इन श्रोता साथियों की ग्राम अरमरी खुर्द से चूरा मन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, पोटिया कला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद, देव कुमार, नवीन कुमार, युवराज साहू, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। साथियों, आप सबने भी एक शब्द सुना होगा, परफेक्शन। हम सब चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो और इसलिए हर बार कई चीज़ों में पीछे भी रह जाते हैं।
0: अंजलि, मैंने पिछले दिनों विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता पढ़ी, साथियों आप सबको भी सुनाता हूँ। कोई अधूरा पूरा नहीं होता और एक नया शुरू होकर नया अधूरा छूट जाता। शुरू से इतने सारे कि गिने जाने पर भी अधूरे छूट जाते, परंतु इस असमाप्त अधूरे से भरे जीवन को पूरा माना जाए, अधूरा नहीं कि जीवन को भरपूर जिया गया। इस भरपूर जीवन में मृत्यु के ठीक पहले भी मैं एक नई कविता शुरू कर सकता हूँ, मृत्यु के बहुत पहले की कविता की तरह, जीवन की अपनी पहली कविता की तरह, किसी नए अधूरे को अंतिम न माना जाए।
1: कितनी सुंदर बात है, कोई अधूरा या पूरा नहीं होता, हम सब यात्रा में ही होते हैं। आइए आप सबको भी ले चलें गीतों की इस सफर में। अगली कड़ी और सुनवाते हैं अगला नगमा।

0: तो साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म आए दिन बहार के से ये गीत। स्वर था लता मंगेशकर का, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: और पसंद थी हमारे इन श्रोता साथियों की सिर्री गाता पाड़ से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी नागेश्वरी साहू, दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी रेखा मोतीलाल साहू, बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजबिये की। न उदास हो न मलाल कर, किसी बात का न ख्याल कर, कई साल बाद मिले हैं हम, तेरे नाम आज की शाम है। दोस्तों, आज की शाम है मुलाकातों की शाम। जैसे ही हमको ये पता चलता है कि आप सबसे मुलाकात का दिन कौन सा है, उसी दिन से आप सबसे मिलने की उत्सुकता भी बढ़ जाती है।
0: वैसे ये मुलाकात शब्द है बड़ा प्यारा, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तभी तो साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी

0: दिन तक हर दिन हम अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
1: और हमारे श्रोता साथी भी अपने पत्रों के जरिए, ईमेल्स के जरिए अपने मन की बात हम तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी की खुशियां और अपनी ज़िंदगी के गम अपने लोगों से मिलकर ही बाँटते हैं। हमारी आवाज़ की दुनिया भी तो एक परिवार की तरह है।
0: यानी हमारा मिलना जुलना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: और कहते भी हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
1: हम में से बहुतों को तो एक दूसरे से मुलाकात करना पसंद ही होता है, और जब भी हम एक दूसरे से मिलें तो पूरी संपूर्णता के साथ मिलें, क्योंकि गुजरा हुआ लम्हा लौटता नहीं है साथियों।
0: इसी विचार के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से सुन रहे थे आप ये गीत। स्वर थे अतीफ असलम और अलीशा चिनॉय के, गीत लिखा था आशीष पंडित ने और संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश डिकेंद्र, योगेश यादव, रिंगनी से दिनेश करुणा वर्मा, लंचनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश, सचिन वाणी वर्मा, शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, मगरलोड से पुनू राम साहू, तेजेश्वरी राजश्री, राजवीर साहू, सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य आशीष, प्रकाश सेन, सिर्री गातापारा से धनेश्वरी।
0: साथियों, एक गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी थी। कोई 10 मील की कठिन चढ़ाई चढ़कर ही उसकी चोटी पर पहुंचा जा सकता था। गांव का एक किसान उसके प्रति बेहद आकर्षण का अनुभव करता था। एक दिन तपने से पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाने के ख्याल से रात के तीसरे पहर में ही वो घर से निकल पड़ता है।
1: पहाड़ी पर लेकिन अंधेरा बहुत घना था और किसान के पास सिर्फ एक छोटी सी लालटेन थी जिसका प्रकाश बस यही कोई 10 कदम तक ही जा पाता था। किसान सोचता खड़ा रह जाता है, 10 मील का घना अंधेरा और सिर्फ 10 कदम का प्रकाश।
0: फिर वो पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचकर वहां हतप्रभ सा खड़ा हो गया। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे भी छोटा एक दिया हाथ में लेकर उसके पास से निकलकर शिखर की ओर आगे बढ़ जाता है। किसान उसे आगे बढ़ता हुआ देखता है और रोकता है और उसे अपनी चिंता से अवगत भी कराता है। और बूढ़ा जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि अरे बच्चे, दिया छोटा है तो क्या हुआ, तू कदम आगे तो बढ़ा, अगले 10 कदम इसी से प्रकाशित होंगे, इसके सहारे तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा भी लगाई जा सकती है।
1: साथियों, हमारा टारगेट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें बस आज के पहले कदम पर ध्यान देना होगा, तभी एक दिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल वक्त है आप सबको ये गीत सुनवाने का।

0: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चित्चोर का ये गीत, और स्वर था यशुदास और हेमलता का, गीतकार थे रविंद्र जैन और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने।
1: और पसंद थी हमारे इन श्रोता साथियों की अलगी डांड जिला कोरबा से जोहित यादव, विपिन आयुष यादव, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। साथियों, बातचीत करते हुए समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, पर समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। पर जाने से पहले आप सबको बता देते हैं कल की युवाणी के आकर्षण। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम आप मन की चिट्ठी और क्रम माटी के गीत। इसी के साथ दीजिए अपने साथी दीपक कुमार तिवारी
0: और अंजलि बच्छोर को अनुमति।
1: स्वीकार हमारा नमस्कार।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 6 बजने को है, हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने

0: आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का यही रायपुर और सराइपाली केंद्र है। 6:10 होने को है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का यही रायपुर और सराइपाली केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। रायपुर में आज ले 2 दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू होइस। सहकारिता विभाग डहार ले आज राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। राज्य सरकार ह खंड और अल्प वर्षा के संभावना ल देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बजाय सीधा बोआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करीन है। और नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता मंत्रालय के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में आज ले 2 दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू होइस। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुईन। ए मौका में ओमन कहिन के सहकारिता किसान के आमदनी ल बढ़ाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ल मजबूत करे के सबले प्रभावी माध्यम बनत है। ओमन कहिन के सहकारिता के जरिया विकसित छत्तीसगढ़ के मजबूत नींव तैयार होही। मुख्यमंत्री बताइन कि प्रदेश में अब तक 1300 ले ज्यादा नवा सहकारी समिति मन के गठन करे जा चुके हैं। सहकारिता के माध्यम ले पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता लग घलो बढ़ावा दे जाते। मुख्यमंत्री ए मौका में उत्कृष्ट समिति मन ला सहकार प्रेरणा पुरस्कार दिन संग्रह संग्रहण पछर 2023 के 7 लाख ले ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहक मन पर 100 करोड़ रुपया ले ज्यादा के पारिश्रमिक राशि के वितरण के शुभारंभ करें। एकर अलावा मुख्यमंत्री है कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ घलो करें। सहकारिता विभाग डहार ले आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। कार्यक्रम के शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हरा झंडी दिखा के करें। ए दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्था के सदस्य, महिला समूह और आने आने वर्ग के लोगन मन हिस्सा लें। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज बिहनिया जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल रद्दा मन ले शुरू हो गए है। पूरा देश ले लाखों श्रद्धालु 57 दिन के तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करही। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह श्रद्धालु मन ला शुभकामना दिन है। राज्य सरकार है खंड और अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बजाय सीधा बोआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करीन है। सरकार के अनुसार DSR तकनीक ले लगभग 20% पानी के बचत होते, प्रति एकड़ करीबन 5000 रुपया तक के लागत कम आते और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाते। सरकार है धान के जगह में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिली, रामतिल और सोयाबीन जैसे दलहन और तिलहन फसल के खेती अपनाए ऊपर जोर दिन है। किसान मन ले बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण और ड्रिप के संग्रह, स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक ल अपनाए बर घलो कहे गए है। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी मानसून ला देखत किसान मल्ला खेती ले जुड़े सलाह ऊपर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 4 जुलाई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाल FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। 2 दिन के ए शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग्रह राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुई। ए शिविर के उद्देश्य बदलत तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन ल और ज्यादा प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार के अब तक के उपलब्धि, चुनौती और भविष्य के प्राथमिकता के समीक्षा करे जाही। राज्यपाल रमेन डेकाले आज लोकभवन में डॉक्टर मणिभद्र महाराज के अगुवाई में संचालित सर्वोदय शांति पदयात्रा ले जुड़े संत मन ले सौजन्य भेंट करें। ए मौका म राज्यपाल ह कहिन कि संत समाज के विचार और जीवन मूल्य शांति सद्भाव के संग्रह मानवीय मूल्य ल मजबूत बनाए म महत्वपूर्ण भूमिका निभाथे। उमन सर्वोदय शांति पदयात्रा ल सामाजिक समरसता अहिंसा और विश्व बंधुत्व के प्रेरक अभियान बताइन। बता दन कि ए पदयात्रा नेपाल ले शुरू होके लगभग 1600 किलोमीटर के दूरी तय करत छत्तीसगढ़ पहुंचे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा बस्तर संभाग में विभाग के योजना मन के प्रचार प्रसार गोंडी और हल्बी भाषा में करे के निर्देश दिन है। जेखर ले दूर दराज और जनजातीय क्षेत्र के पात्र हितग्राही मन तक योजना के जानकारी आसानी ले पहुंच सके। मंत्रालय में विभागीय योजना मन के समीक्षा बैठक में उमन अधिकारी मन ला योजना के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाए के निर्देश दिन। उमन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पर्यवेक्षक के खाली पदमन ऊपर जल्दी भर्ती आंगनबाड़ी केन्द्र में बुनियादी सुविधा के सुदृढ़ीकरण और पोषण पुनर्वास केन्द्र मन में लयिका और महतारी मन ला बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए ऊपर जोर दिन। संग्रह दिव्यांगजन और सियान मन ले जुड़े योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित शिविर के आयोजन के निर्देश घलो दिन। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ह पदभार ग्रहण करीन है। ए मौका में राखे गए अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईन। ए मौका में उमन कहिन कि संजय अग्रवाल के अनुभव के फायदा प्रदेशवासी मन ला मिलही। योग और ज्यादा सर्वव्यापी होही, लोगन अपन दिनचर्या में योग ला शामिल करही। प्रदेश में गाज गिरे के अलग अलग घटना में 4 मनखे के मौत हो गए है। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के पतरापारा गांव में गाज गिरे ले माँ बेटी के मौत हो गए। पुलिस के अनुसार ये दोनों खेत में काम करत रहीन। इसी दौरान तेज बरसा शुरू होए ले दोनों एक ठिन रुक के नीचे खड़ा हो गिन, तभी गाज गिरे ले उखर मौकाच में मौत हो गए। उन्हें शक्ति जिला के डबरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में आज गाज गिरे ले एक दंपत्ति के मौत हो गए। पुलिस के अनुसार ये पति पत्नी खदान में मजदूरी करे बर गिरेन, इसी दौरान तेज वर्षा के बीच गाज गिर गए जेखर चपेट में आए ले दोनों मौकाच में मौत हो गए। पुलिस और प्रशासन हा नागरिक मन ले अपील करीन है कि वर्षा और गरज चमक के दौरान खुला जगह और पेड़ के नीचे खड़ा होए ले बांचे और संग्रह सुरक्षित जगह मन में शरण लेके अपील करीन है। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे के आज निधन हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सुखनंदन बंजारे के निधन ऊपर गहरा दुख जताइन है। उमन सुखनंदन बंजारे के निधन ले पत्रकारिता जगत पर अपूर्णीय क्षति बताइन। दुर्ग पुलिस बीमा पॉलिसी रिफंड के नाव में करीबन 1,60,00,000 रुपया के साइबर ठगी करैया अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश करे है। ए मामला में पुलिस दिल्ली ले 3 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुदला बीमा अधिकारी बता के बंद पड़े बीमा पॉलिसी के राशि लहुटाए के झांसा देत रहीन और आने आने बैंक खाता में रकम जमा करा के ठगी करत रहीन। आरोपी मन के कब्जा ले मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद करे गए है। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में गरज चमक के संग भारी ले अति भारी वर्षा होए के संभावना जताए है। उन्हें एक दो जगह में गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। प्रदेश के अधिकांश जगह मन में काली हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। रायपुर में आज ले 2 दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू हुईस। सहकारिता विभाग डहा ले आज राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। राज्य सरकार ह खंड और अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बचाए सीधा बुआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करीन है। और नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। एक रे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
3: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। आतंकवादं प्रति पाकिस्तान पक्षतः अविरतं क्रियमाणं पोषणं मत्वा भारतेन सिंधु जलसंधिः स्थगितावस्थायामेव रक्षितुं पुनः स्वप्रतिज्ञा दृढीकृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पवित्रा अमरनाथ यात्रा राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायमिति व्याहृता। यात्रा प्रसंगे गच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धालुभ्यः प्रकटिताः शुभाशंसाः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन विकसित भारतस्य गौरवपूर्ण लक्ष्य यात्रायै फ्रांस देशस्य निवेशकाः सोत्साहम् आहुताः। भूकंप पीड़िते वेनेजुएला देशे मृतकानां संख्या 2000+ जाता। सहस्रशः जनाः संप्रति अपि अज्ञाताः सन्ति। भारतेन तत्र ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मानवीय सहायता कार्याणि तीव्रीकृतानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् गुजरात गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा मध्य प्रदेशस्य च कतिपय क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः संचेतना प्रख्यापिता। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप क्रीडा मालिकायां कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य सायं नवदिल्ल्यां आयोजितं वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भारतेन पुनः सबलं प्रतिपादितं यत् पाकिस्तान प्रशासन पक्षतः आतंकवादस्य निरंतर पोषकत्वात् सिंधु जलसंधिः स्थगितावस्थायामेव वर्तते। विदेश मंत्रालयस्य प्रमुखाधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः प्रावोचत् यत् सिंधु जलसंधेः विषये भारतस्य नीतिः सर्वथा स्पष्टा अस्ति। तेन गदितं यत् पाकिस्तानेन प्रथमतः आतंकवादं प्रति स्वकीयं समर्थनं सर्वथा परित्यक्तव्यम्। तीस्ता नदी समग्र प्रबंधन पुनरुद्धार परियोजनायाः विषये श्री जयसवालेन स्पष्टीकृतं यत् बांग्लादेशे विकास परियोजनाभ्यः दीयमाना भारतस्य सहायता कञ्चन पारस्परिक सम्मति प्राप्तं मार्गचित्रमाधृत्य वर्तते यस्य नियतकाले समीक्षा विधीयते। तेन प्रोदीरितं यत् तीस्ता नदी परियोजनायां भारतस्य चिन्तनं पूर्वमेव बांग्लादेशं प्रति ज्ञापितं। सहैव भारतं तीस्ता विषये स्वकीये चिन्तने सर्वान् सम्बद्ध घटनाक्रमान् संयोजयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवर्षं प्रवर्तमानां पवित्र अमरनाथ यात्रां राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायं व्यपादिशत्। तेन प्रोदीरितं यत् भगवतः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यमिदं दर्शनं कोटिशः श्रद्धालूनां जीवने एकः अविस्मरणीयः अत्यन्तं मंगलमयश्चानुभवो वर्तते। अनेन सहैव सः जम्मू कश्मीर क्षेत्रे वार्षिक यात्रां कुर्वद्भ्यः तीर्थयात्रिभ्यः हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयत्। श्रद्धालून् प्रति प्रेषिते पत्रे प्रधानमन्त्रिणा अस्यां पावन यात्रायां पञ्च संकल्पानां परिपालनार्थं अभ्यर्थना विहिता। एते संकल्पाः सन्ति शुचितायाः सर्वथा संरक्षणम् सुरक्षा नियमानां निष्ठापूर्वकम् अनुपालनम् स्थानीय स्वदेशीयोत्पादनानां संवर्धनम् रक्षाबंधन पर्वणि भगिन्यै भ्रात्रे वा पादपस्य उपहार प्रदानम् तथा विकसित भारतस्य राष्ट्रिय संकल्पाय स्वयोगदानम् अद्य प्रातःकालात् विधिपूर्वकम् आरब्धा इयं श्री अमरनाथ यात्रा नुनवान पहलगाम तथा बालताल इति द्वाभ्यामेव मार्गाभ्याम् अतीव सुचारु रूपेण निर्बाधं च अग्रे प्रवर्धते केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यगादीत यद भारत फ्रांसयोः रणनीतिक संधि शाश्वत दृढ़ नवोन्मेष प्रेरित विकासस्य दिशि सर्वथा सर्वोत्कृष्टं स्थानं भजते पेरिस नगरे आयोजितं भारत फ्रांस व्यापार सम्मेलनं संबोधयन्त्या तया सप्रमाणं प्रतिपादितं यत् प्रावधिक प्रगतेः आपूर्ति श्रृंखलायाः ऊर्जा संचारस्य भूराजनैतिक उद्भव परिवर्तनानां च कारणात् वैश्विक अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते वित्तमन्त्रिणा फ्रांस देशस्य वाणिज्य नेतारः निवेशकश्च विकसित भारतमिति राष्ट्रिय संकल्पस्य महायात्रायां भारतस्य सहयात्रिणः भवितुं सोत्साहम् आहूताः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति भारतेन ऑपरेशन अमिस्तादित्यस्यान्तर्गतं भूकंपग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीया सहायता प्रेषिता विदेशमन्त्रालयेन सामाजिक संजालीय तन्त्रे प्रचलितस्य चिकित्सा कार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीय सेनाक्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सा सेवाः प्रयच्छति वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती अनेन भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 95.5 संजाता पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम् उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तन्त्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तरप्रदेश बिहार आंध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या फीफा विश्व चषके कनाडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलं आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजिस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलम 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कैनडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलम 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलम स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
0: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
4: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004।

0: नाटक में एक परिवर्तन बताया गया है जो बुराई से इंसान को अच्छाई के रास्ते पर लाता है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये नाटक जिसका शीर्षक है परिवर्तन।
1: अरे यार मगरू, बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे। अगर इसी तरह बैठे रहे तो घर का सारा राशन पानी भी खत्म हो जाएगा।
2: हाँ यार बोला ना, बात तो तुम्हारी सही है और तुम्हारी भाभी भी रोज लड़ती रहती है। अब मैं कैसे समझाऊं उसे कि पहले जैसा धंधा नहीं रहा भाई चोरी में।
1: हाँ मगरू यार, वो भी क्या दिन थे जब चोरी करने के लिए जाते थे तो आसानी से माल मिल जाता था।
2: बात तो सही है, अब लोग भी बहुत होशियार हो गए भाई, अपना रुपया पैसा सब बैंकों में रखते हैं और गहनों को तो उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हॉकर में।
1: अरे यार, वो बैंकों में हॉकर नहीं, लॉकर होता है जिसमें लोग बाग अपना पैसा सोना चांदी रखते हैं।
2: अरे घरों में चोरी का धंधा बंद करवाकर बैंकों को लुटवाने का इरादा क्या भाई?
1: अरे यार मगरू, बूढ़ा मरे या जवान, हमें तो पैसों से काम। अब तू बता, ऐसी घर में खाते रहे तो खाते खाते तो घर में बैठे बैठे महाराजों के खजाने खाली हो जाते हैं।
2: हाँ यार, अब तो दोपहर है, शाम होने दे, खाना पीना खा पी कर आज शाम अपने पुराने धंधे पर ही चलेंगे। चोरी से मस्त धंधा है ही क्या है?
1: हाँ यार, शहर में तो अब चौकीदार चौकसी करने लग गए, रात में गश्त लगाते रहते और ऊपर से पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती हैं। अब तू बताया, शहर में चोरी करना कहाँ आसान रह गया है। अगर पकड़े जाओ तो हवाला, नहीं तो हवाला से सीधे से।
2: हाँ यार सही कह रहा है यार भोला नाथ, ये पेट है ना सब कुछ करा देता है, जान पर खेलने वाले काम भी। लेकिन मुझे तो चोरी से अच्छा कुछ काम लगता नहीं अगर पुलिस ना हो तो।
1: हाँ भाई, आजकल तो गांव देहात की चोरी भी आसान कहाँ रह गई है। कुत्ते भी तो इतने तादाद में बढ़ गए, जिधर जाओ भौंवो करते रहते हैं और पूरी बारात की बारात पीछे पड़ जाती है।
2: कुत्ते भी पुलिस हो गए भाई, आज शाम को 4 रोटी लेके चलना कुत्तों के आगे फेंकने के लिए।
1: हाँ भाई, कम से कम कुत्तों का मुंह तो बंद रहेगा, नहीं तो भौंवो करने लगते और लोग समझ जाते हैं कि चोर आगे चोर आगे।
2: चल तो यार शाम हो गई है, अपने घर चले, खाना पीना खाया जाए, फिर निकलेंगे थोड़ा अंधेरा होने पर आराम से।
1: पिछली बार की तरह पी मत आना, नहीं तो प्लान चौपट हो जाएगा।
2: अरे यार पागल मत समझो मुझे।
1: ठीक है चल घर चलते, खाते पीते।
2: चलो चलें।
1: मगरू हो मगरू, बाहर तो आ।
2: हाँ भाई आजा आजा, दरवाजा खुला हुआ है, भीतर आजा।
3: देवर जी, जा तो रहे हो अपने भाई के साथ चोरी करने, जरा मोटा माल हाथ मार के लेके आना।
1: हाँ भाभी जी, बिल्कुल चिंता मत करो, आज हम मोटा माल ही साथ लेके आएंगे, बस तुम भगवान से दुआ करो कि हम पकड़े नहीं जाएं।
2: आज कोई खास मोटा माल किसी अमीर आदमी के यहाँ से चुराना है भाई।
1: चलो ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल
2: चलो। तो चलो
1: यार मगरू, आज शहर में तो नहीं चल रहे भाई, तू बुरा मान या भला मान?
2: हाँ यार मैं क्यों बुरा मानूंगा, बहुत दिनों के बाद तो चोरी करने निकले, उसमें भी शहर जाकर पुलिस के या चौकीदारों के हाथ पकड़ना है क्या?
1: अरे यार मुझे तो पास में गांव दिख रहा है, उसी में चलते हैं।
2: चलो भाई चलो, बस कुत्तों से सावधान रहना, थोड़ी सी परछाई दिखते ही भौंभाव करने लग जाते हैं।
1: ये जो रोटी तू भांत कर लाया है ना, कब काम आएगी? ये तो कुत्तों की रिश्वत है मुंह बंद करने के लिए, कुत्ता सारे भौंभाव करते रहते हैं।
2: अरे बोला ना, जरा बच के देखो, देखो कुत्ते आ गए, जल्दी रोटी फेंक।
1: अरे यार मगरू, ये कुत्ते भी ना मेरी जान के पीछे पड़ गए, रुक फेंकता हूँ।
2: यार बहुत समय हो गया, किस घर में चोरी कर रहे हैं कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है।
1: यार हम जहाँ छुपे हैं तो कोई ना कोई गई है, क्यों ना इसी दीवार को तोड़ के देखें, क्या पता मोटा माल मिल जाए। वैसे भी तुम्हारी पत्नी बोल रही थी मोटा माल लेके आना।
2: हाँ भाई चलो दीवार को तोड़ते हैं, सुन धीरे धीरे तोड़, कोई पता ना चल जाए किसी को।
1: यार सुन, इतना ही तोड़ना इतना कि हम भीतर घुस जाएं।
2: यार तुम भीतर घुस जाओ, मैं बाहर रखवाली करता हूँ।
1: ठीक है भाई। अरे यार बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा जा रहा है मगरू। ओ मगरू सुन तो सही यार।
2: अरे क्या बात है, धीरे बोल, कोई सुन लेगा, बता क्या बात है।
1: यार मगरू आज तो मजा आ गया, देख मुझे तो बनिए की दुकान सी लग रही है ये तो, इसमें छुआरे बादाम काजू और पैसे भी रखे। मुझे लगता है आप तो भाभी जी की दुआ सुन ली भगवान ने।
2: सच में शुक्र है ऊपर वाला तेरा, बड़े दिनों में मोटा माल हाथ लगा है। अरे भोलेनाथ सारा माल ले चल।
1: हाँ भाई हाँ भाई, मैंने सब मोटा मोटा माल ले लिया है। आज तो भाभी खुश हो जाएंगी क्योंकि बरसों का प्रबंध हो गया खाने के लिए।
2: चलो तो चलो चलते हैं। अरे यार माल बहुत ज्यादा है, कैसे लेकर चले इतना सब कुछ।
1: अरे यार मगुर रुक, तेरा काम तो बन गया, अब मेरी तो चिंता कर ले।
2: अरे तू क्यों चिंता करता है, बता क्या बात है, बता तो सही।
1: अरे यार क्या हमारे बच्चे रूखे सूखे बादाम छुआरे खाएंगे, दूध भी तो चाहिए इनके साथ।
2: अरे यार तू क्यों चिंता करता है, चल किसी के घर में जाके एक अच्छी दूध वाली भैंस को चुराते हैं ताकि तेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी।
1: हाँ भाई चल इसी गांव में देख लेते हैं, किसी ना किसी के घर तो भैंस मिल ही जाएगी।
2: अरे मिल गई यहाँ देख एक भैंस है, इधर आ इस दीवार को तोड़, इस घर में भैंस है।
1: अरे नहीं यहाँ से नहीं तोड़ते, पीछे चलते, मुझसे भागने में आसानी होगी, पकड़े जाएंगे तो।
2: अरे बोलो ना तोड़ो इस दीवार को, कोई जग ना जाए, देखो ईंट पत्थरों को आराम से संभाल के रख।
1: अम्बे यार धीरे धीरे तोड़ा दू, तसल्ली तो रख।

0: भूखे पेट चूहा कूद रहे हैं पेट में।
1: बेटा चिंता मत कर, और थोड़े दिन धीरज कर ले।
0: माँ, जब से पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से गए हैं, मैंने कभी बादाम छुआरे किशमिश नहीं खाए।
1: हाँ बेटा, तेरे पिताजी को गुजरे पूरे 10 साल हो गए, जब तू 2 साल का बच्चा था। वो ही तो इस घर को चलाने वाले थे, जिनके बिना तो हमारी दुनिया ही वीरान हो गई।
0: माँ माँ, पिताजी कितने अच्छे थे, वो मुझे रोज अपनी गोद में उठाकर उस बनिया की दुकान पर ले जाते थे और मुझे खाने के लिए मन पसंद चीज दिलाया करते थे।
1: हाँ बेटा, एक मैं हूँ कमबख्त जो अपने बेटे को कोई भी अच्छी चीज पेट भर कर नहीं खिला पाती।
0: माँ ऐसा मत कहो। माँ देखो, तुमने इतनी मेहनत मजदूरी से मेरे लिए ये भैंस खरीदी है, पूरे 3 साल से तुम साहूकार के घर काम कर रही हो और उन्हीं पैसों से तुमने ये भैंस खरीदी है मेरे लिए।
1: हाँ बेटा, जब ये बच्चा डालेगी तब दूध देगी, तो मैं तुमको पेट भर के दूध पिलाया करूँगी।
0: माँ मुझे मलाई खिलाया करोगी ना?
1: हाँ बेटा, और कौन है मेरा इस दुनिया में जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ।
0: माँ बहुत दिनों से मैंने घी दूध ना खाया, बताओ हमारी भैंस कब दूध देगी?
1: बेटा बस 2 महीने और सबर कर, फिर खूब पेट भर के दूध दही खाना, फिर तुमको बादाम छुआरे किशमिश सब खिलाया करूँगी।
0: माँ मुझसे तुम क्यों छुपाती हो, बताओ ना। माँ जब हमारे घर में एक पैसा भी नहीं है तो तुम कैसे मुझे ये सब खिलाओगी? माँ
1: बेटा, मेरे कलेजे के टुकड़े, ऊपर वाला सब हमारा इंतजाम करेगा। कभी ना कभी हमारे घर में भी अच्छे दिन आएंगे, कोई ना कोई हमारी मदद के लिए जरूर दुआ कर रहा होगा।
0: माँ सुना है भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।
1: बेटा।

0: की बात है
1: यार भोलेनाथ, मेरे तो आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे भाई।
0: यार मगरू, मैंने इनके घर में घुसकर देख लिया है, मुझे तो कुछ नहीं पाया है। मुझे तो लगता है ये बहुत करीब हैं।
1: भोलानाथ भाई, मेरा दिल तो अभी भी रो रहा है अंदर से। देख, हम इसकी भैंस चुरा कर पाप के भागी नहीं बनना चाहते भाई।
0: हाँ यार, मुझे भी रोना आ रहा है। इस विधवा और इसके बेटे के हक को चुरा कर मैं नहीं ले जाना चाहता भाई। आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा यार मगरू।
1: यार भोलानाथ, आज के बाद तो मैं भी कभी चोरी नहीं करूंगा। हमने कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं अब तक, ना जाने कितनों ने बद्दुआ दिए हमको।
0: हाँ भाई, सच कह रहे हो यार, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। पर कभी हमारी पत्नियों ने भी नहीं कहा हमसे कि चोरी मत करो, ये गलत काम है।
1: इस विधवा और इस बेटे ने हमारी आंखें खोल दी है यार। देख भोलानाथ, जो उस बनिए की दुकान से हम चुरा कर लाए हैं ना, उसको विधवा के घर में रख देंगे आज।
0: हाँ यार चलो, सब इसी घर में रख देते हैं, जब ये सुबह माँ बेटे देखेंगे तो।
1: यार भोलानाथ, जो हमने आज चुराया ना बनिए के घर से, रुपया पैसा बादाम छुआरे मसाले, सब इस विधवा के घर में रख देते हैं। ये बेचारी ये कभी खरीद भी नहीं पाएगी और इसके घर में कुछ है भी नहीं।
0: हाँ दोस्त मगरू, आज इस विधवा के घर में ही मैं और तू शपथ खाते हैं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे यार।
1: भोलानाथ, अपना हाथ पकड़ा मुझे।
0: ले मगरू,
1: मैं मगरू,
0: मैं भोलानाथ, हे ईश्वर, इस गरीब विधवा के घर में ही आज शपथ खाकर जाते हैं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, ना ही कभी चोर कहलाएंगे, और कमाकर ही सदा घर चलाएंगे। हे ईश्वर, हमारी मदद करना।
2: तो देखा श्रोताओं, चोरी एक बहुत बड़ा पाप है जो लालच में आकर किया जाता है। आज के दौर में इस पाप से बहुत ही कम लोग बच पा रहे हैं और दूसरों की चीजों पर अपनी नियत डिगा रहे हैं, और इस पाप में गिरकर वो अपने जीवन को सोचते तो हैं कि सुकून से जिएंगे, लेकिन वो अच्छे रास्ते से और ईश्वर की भक्ति से कोसों दूर ले जाते हैं। कहीं हमारे और आपके जीवन में तो नहीं कोई लालच काम कर रहा जो हमें चोरी की ओर अग्रसित करे? जी हाँ, ऐसा अगर है तो आज वो समय है कि आप अपनी गलती से क्षमा पाएं, गलती को माने और स्वीकार करें और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगाएं।
3: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।
4: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे

0: की पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आज से शुरू हुआ सहकारी सम्मेलन, मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार ने खंड और अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई करने की अपील की है। IIM रायपुर में कल से होने वाले चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू हुआ। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है।
7: सहकारी सप्ताह चल रहा है और उसी तारतम्य में आज यहाँ पर कृषि मंडपम में ये 2 दिन का प्रदेश स्तर का सम्मेलन आयोजित है, जिसमें प्रदेश भर से सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न समिति के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। और इसमें हमारे विभिन्न तरह के जो समिति हैं, दूध उत्पादक हैं, मत्स्य उत्पादक हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी आए हुए हैं, उनका अलग से सत्र चलेगा। तो निश्चित रूप से और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं सबको और जानकारी मिलेगी।
6: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही संग्रहण वर्ष 2023 के 7 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भी संबोधित किया। इस बीच सहकारिता विभाग द्वारा आज सुबह राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, महिला समूह और विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने खंड और अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुवाई यानी डीएसआर तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार डीएसआर तकनीक से लगभग 20% पानी की बचत होती है। प्रति एकड़ करीब 5,000 रुपए तक लागत कम आती है और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। सरकार ने धान के स्थान पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल और सोयाबीन जैसी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती अपनाने पर जोर दिया है। किसानों से बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संग्रहण तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए भी कहा गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मानसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 4 जुलाई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा आज रायपुर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी पर मीडिया वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने इस योजना को रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: जो मनरेगा चल रहा था उसको रिफॉर्म करके हमारे VBG राम जी स्कीम, इसको लाया गया है और बहुत सारी तकनीकी खामियां जो उस योजना में थी उनको पूरी तरह से परिष्कृत करके यह नए भारत 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा, तो उस दिशा में काम करने के लिए इस जो गारंटी है उसके साथ में हमारे VBG राम जी स्कीम को लाया गया है।
6: इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ नितेश उपाध्याय और डॉक्टर अनंत रघुवंशी ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं और इसकी विशेषताओं के बारे में मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में कल 4 जुलाई से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। राज्यपाल रमिंडेका से आज लोकभवन में डॉक्टर मणिभद्र महाराज के नेतृत्व में संचालित सर्वोदय शांति पदयात्रा से जुड़े संतों ने सौजन्य मुलाकात की। गौरतलब है कि यह पदयात्रा नेपाल से प्रारंभ होकर लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची है। यात्रा का उद्देश्य शांति, सद्भाव, अहिंसा और मानवीय मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बस्तर संभाग में विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार गोंडी और हल्बी भाषा में करने के निर्देश दिए हैं, जिससे दूरस्थ और जनजाति क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंच सके। मंत्रालय में आज हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के पतरापारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये दोनों खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान तेज बारिश शुरू होने पर दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में भी आज आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये पति पत्नी खदान में मजदूरी करने गए थे, इसी दौरान तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से बारिश और गरज चमक के दौरान खुले स्थानों तथा पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। दुर्ग पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिफंड के नाम पर करीब 1,60,00,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को बीमा अधिकारी बताकर बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों की राशि वापस दिलाने का झांसा देते थे और विभिन्न बैंक खातों में रकम जमा कराकर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय समय पर सत्यापन कर आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि श्रमिक कार्ड में संशोधन कार्य के लिए मात्र 20 रुपए का निर्धारित सेवा शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की मूल प्रति तथा सहमति पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने श्रमिक कार्ड की जानकारी अपडेट कराएं। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे का आज निधन हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सुखनंदन बंजारे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सुखनंदन बंजारे के निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। और कबीरधाम जिले के भोरमदेव में पर्यटकों के लिए भोरमदेव इको ट्रेल की शुरुआत कल 4 जुलाई से होगी। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि इको ट्रेल के दौरान पर्यटकों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ भोरमदेव के वनों का भ्रमण कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आज से शुरू हुआ सहकारी सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार ने खंड और अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुवाई करने की अपील की है। IIM रायपुर में कल से होने वाले चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 7 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म नदिया के पार में हेमलता को गीत के बोल रविंद्र जैन के, संगीत रविंद्र जैन के और आवाजें हैं हेमलता और सुरेश वाडकर की।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 7 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा बरसात के मौसम में आवारा पशुओं का प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पदमचंद जैन, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पशु चिकित्सालय बैरन बाजार, रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 7 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म गाइड में लता मंगेशकर को शैलेंद्र का लिखा गीत और संगीत है एसडी बर्मन का।

लीजिए, आप सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को फिल्म प्रेम रोग में, गीत के बोल पंडित नरेंद्र शर्मा के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: निर्मल भैया राम राम।
1: राम राम मोनिका, संगे संग चौपाल सुनिए जम्मो संगवारी मन ला हमर दोनों के राम राम।
0: भैया अभी देखो हमर जन संगवारी मन है सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं है, दीगर काम पता घलोक करते, कतकुन जन पशुपालन करते, बतख पालन करते, मुर्गी पालन करते और कतकुन जन जगह है पानी है तो मछली पालन घलोक करते।
1: बिल्कुल सही बात है मोनिका, मछली पालन है कछे ज्यादा अच्छा है कि कहूँ किसान भाई मन करा 5-6 एकड़ खेत है और सिंचाई पर डबरी निर्माण करवा है खेत में, तो भाई ओकर से डबल फायदा ले सकते। तो डबरी के पार में पेड़ पौधा लगा सकते, वहाँ पानी की सिंचाई पर उपयोग कर ही और पानी भरे है तो मछली पालन करके घलो ओकर से आमदनी कमा सकते। अब देख जैन संगवारी मछली पालन व्यवसाय जुड़े हुए है ओकर मन में जुलाई के महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है, काबर की यही महीने में मन बीज डाल सकते अपन तालाब में है ना, खाद पानी की बढ़िया व्यवस्था कर सकते और अच्छा से कहूँ प्रबंधन कर ले जुलाई महीना ला तो आगे मन ला बढ़िया अच्छा मछली उत्पादन करे पर मिल सकते। और देखे पूरक पोषक आहार है ओकर व्यवस्था करके रखे किसान भाई मन संगे संग बीमारी ले बचाए के उपाय करे तो ज्यादा अच्छा रही। और अपन जो पानी है तालाब के ओकर स्तर ला सही ढंग से बना के रखे जितका चाहिए उतका, अलग अलग मछली के हिसाब से अलग अलग जली सरत है तो वाला बना के रखे तो कुल मिला के जुलाई महीना में अच्छा फायदा वाला हो सकता है।
0: भाई ऐसे है कि कहूँ हमारे संगवारी मन है स्पॉन डाला थे तालाब में तो स्पॉन डाले के 15 दिन में ही उस संगवारी मल ला ना तालाब में रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट के उपयोग कर लेना चाहिए।
1: और देख मुनिका कहा है कि तालाब में अब कैसे ना बीज डाला करके, तो बीज डाले के वक्त किसान भाई मन ये ध्यान रखें कि कहूँ फिंगरलिंग के उपयोग करत है तो प्रति एकड़ 6,000 से लेकर 8,000 फिंगरलिंग मल्ला अपन खेत में डाले पड़े। दूसरा कहूँ ये है कि मन ईयरलिंग के उपयोग करत किसान भाई मन ओकर थोड़ा बड़े वाला तो उसमें 2,000 से लेकर 4,000 तक ईयरलिंग प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ डाल सकत है।
0: अभी आप मन कहत रहे हो ना कि अलग अलग जिन एक स्तर होते हो अलग अलग मछली मन के पालन कर सकते हैं, तो भाई मछली मन के कुछ प्रजाति ऐसे है जिला मिश्रित खेती के रूप में हमन उपयोग कर सकते हैं, जैसे कतला है, रोहू है, मृगल है, ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प है, तो ये एक साथ ही मतलब पाले जा सकते हैं। मैंने एक स्तर में हो ही रोहू तो कतला तो फिर मृगल ऐसे कर करके मन अलग अलग स्तर में रहते
1: माने मिश्रित खेती किसान भाई मन मछली के कर सकते हैं। अब देख मोने का अभी पानी गिरत नहीं रही से कहूँ कहूँ कर गिरे के समाचार भी मिले है और अषाढ़ लगे के बाद बने बादल छावत है और पानी गिरत है इसे सूचना मिलत है। रायपुर के आसपास भी बारिश हो है लेकिन बहुत कम बारिश हो है, लेकिन बारिश जब होते तो खेत में यदि तालाब है तो खेत के पानी बहा के अपन तालाब में जाते हैं। कहूँ बाहर में है कोनो गांव के तालाब ला किसान भाई मन ले हुई तो पूरा गांव के पानी बहा के या सड़क किनारे पानी मन बहा के नाली के माध्यम से तालाब में प्रवेश करते। तो जब मछली पालन किसान भाई मन करते तो ध्यान ये रखें कि गंदा पानी सीधा सीधा तालाब में नहीं घुसना चाहिए, क्यों गंदा पानी घुस गए और तालाब के पानी एकदम गंदा हो गए मतलब आगे तो भाई मछली मर रही किसी में तो ओकर से मतलब फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहते और संगे संग पूंछ गला रोग जो होते वो गंदा पानी स्थिति होते।
0: और जिन मतलब तालाब में मछली पालन हुआ थे वो तालाब के पानी के पीएच मान से अलग जांच करना चाहिए और भाई जरूरत के हिसाब से हर 15 दिन में चूना जरूर डालना चाहिए तालाब में, काबर की देखो पीएच मान ज्यादा हो ले घला नुकसान है, भाई कम हो ही तब वो नुकसान है। मतलब जैसे हम खेती करते ना तो माटी के सारी जाँच करते वैसे ही जब हमन मछली पालन कर रहे थे तब पानी के सारी जांच करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। देख मुनिका कहा है कि बीच बीच में बेरा बेरा में किसान भाई मन पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिन मछली पालन करते कर उन पर तो प्रशिक्षण शासन द्वारा आयोजित होते हैं, किसान भाई मन बताया जाते हैं कि किसे ढंग का समस्या थी पीएच ला कैसे मेंटेन करके रखना है और का डाले से पीएच सही होते करके। तो देख और अभी जिसे हम बात करें तो बादल छा है एकदम लगातार बादल छा है धूप निकलते नहीं है तो ऐसे समय में या लगातार बारिश होते तब का होते कि देखबे मछली मन ऊपर पानी के ऊपर में आके मुंह ला उला उला के ऑक्सीजन लेते
0: खोलते बंद करते सांस ले में दिक्कत होती है ना तो ऊपर आ जाते
1: तो किसान भाई मन ये समय समझ सकते कि भाई हमन मछली ला ऑक्सीजन के कमी हो जाए तो ऑक्सीजन के जब कमी होते तो ओकर बर एरिवेटर चलाते रहना चाहिए ताकि ओला ऑक्सीजन के पर्याप्त पूर्ति हो सके और हमर जो मछली है वो अच्छा स्वस्थ रहे मस्त रहे और पानी में तौरत रहे।
0: भाई कभी कभी ध्यान नहीं दे ले बहुत बड़े नुकसान घला हो जाते मैंने मछली मन की मृत्यु घला हो जाते। अब मछली मन की बात है तो भाई ओखर मन के जिन कुल वजन के 2-3% ही पूरक आहार उमल्ला देना चाहिए। अब पूरक आहार की बात करें तो यहाँ चावल की भूसी और सरसों की खली के उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात मोनिका, लेकिन एक बात वो ध्यान दे लगी किसान मल्ला कि 2-3% तो लागते लेकिन जब पानी गिरा लगातार और इसने बदरी छा है तब मछली मन के खाए मन नहीं रहा है।
0: हाँ, की खुराक हाँ, कम हो जाती
1: कम हो जाते हाँ। मैंने कम खाना में होकर काम चल सकते हैं, तो जब कम खाना में काम चल सकते और हम ज्यादा डाल रहे हैं तो जब तक खाए पुतला खाई हुआ और बाँचे तेन का हो ही पानी माढ़े रही सर जी और पानी का वही भर खराब नहीं हो पानी खराब करी और पानी खराब करी तो पानी गंदा हो और मछली मन बीमारी
0: की संभावना।
1: हम सोच दो भाई हम तो बढ़िया भोजन डाले हैं सब वो चीज बने बने हैं तो हो कैसे है तो वो जो डालथन खराब जन हो तो पर्याप्त मात्रा में डाले और कम मात्रा में डाले एक बात की हम ध्यान रखे लगे।
0: और इसने तालाब के पानी के रंग की बात करन तो जैसे कतकुन बकत हरा हो जाते मटमैला हो जाते तो पानी ला संक्रमण ले बचाए खाते ना पोटेशियम परमैंगनेट जिला हमने लाल दवाई कही था ना ओखर उपयोग करना हमें लाभ पहुंचा।
1: तो ये सब बात के ध्यान रखबो तो जुलाई महीना में हम मछली पालन के जो कार्य है बहुत सुंदर हो ही। अब मुनिका गोट बात तो आगो रही अभी लेथन ये विराम।
0: हाँ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: निर्मल भैया, हमारे संगवारी मन पर ना अभी हेलो किसान वाणी की एक सूचना ही संगवारी मन ला बता देता है।
2: बिल्कुल
3: संगवारी हो, अवैया मंगलवार मैंने 7 जुलाई 2026 के प्रसारित अवैया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इधर की विषय हुई बरसात के मौसम में आवारा पशु मन का प्रबंधन। मैंने ये जो विषय है ना, ये आप मन जितना भी आप मन की समस्या है, ये जिज्ञासा है, कर समाधान खातिर हमारे स्टूडियो में जिन विशेषज्ञ उपस्थित हुई वो है डॉक्टर पद्मचंद जैन, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिला पशु चिकित्सालय बैरम बाजार रायपुर। संगवारी हो, अपन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकता हो। हमारा फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई 7 जुलाई 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक। और ये कार्यक्रम के प्रसारण की बात करें तो प्रसारण वही दिन मैंने मंगलवार के ही दिन संझा मां 7:30 में हुई। संगवारी हो, आप मन के ये विषय ले जुड़े फोन कॉल के अग्रह रही और सूचना हिचे सिरावत है।
4: सूचना चिरागे मुनिका, लेकिन एक ठन सूचना हुई संगवारी मन पर।
3: अच्छा।
4: वो है कि आज हेलो रिकॉर्डिंग हो है हेलो चौपाल के, अवकर प्रसारण के बेरा है अभी। तो संगवारी हो, बेरा हो गए हेलो चौपाल के, सुनथन आप मन सन फोन में हो गोट बात के संपादित। आज के विषय है धान की उन्नत सीधी बुवाई विधि। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी, प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तकनीकी सहयोग है मोहम्मद अशरफ और गंगा प्रसाद बंजारे के। संचालन करते मोनिका जैन और प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे।
3: संगवारी हो, फोन के माध्यम ले खेती किसानी के निदान के क्रम हेलो चौपाल में आज हमारे विषय है कि धान के उन्नत सीधी बुआई जिला हमारे DSR की थन, ये कौन विधि ले होते, का समस्या थे, ये सारी जानकारी आप मन फोन के माध्यम ले हमारे आज के विशेषज्ञ ले सकता हो। आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी जी। आप मन प्रमुख वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है हमारे क्रम में। हेलो
5: हेलो, हाँ मालिक राम सिन्हा बोला था, भोगा कला मोहला मानपुर से।
3: जी भैया, राम राम। भैया हमारे हेलो चौपाल के आज के विषय है कि धान की जिन सीधी बुआई होते ना वो विधि के विषय में जानकारी, तो एक हले जुड़े का जानकारी चाहता हूँ आप मन।
5: वही चाहिए मैडम कि कैसे टाइप में बोना चाहिए, कैसे टाइप में खाद डालना चाहिए।
3: जी जी, तो ये विषय में जानकारी आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय द्विवेदी जी देवत है।
6: अभी आपका समसामयिक जो विषय बड़ा अच्छा है, क्योंकि अभी पानी भी इस बार थोड़ा सा विलम्ब से आया है, तो आपके ये उपयुक्त रहेगा अगर धान की आप छिटकावा बुआई प्रायः शायद करते रहे होंगे कि रोपा लगाते थे आप पहले, क्या करते थे?
5: छिटकाव विधि से
6: बुआई करते थे आप। तो इसमें क्या है, देखिए अगर आपके गांव में ट्रैक्टर वगैरह कुछ उपलब्ध हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा सीड ड्रिल के माध्यम से अगर बुआई करते हैं तो इसमें बीज दर भी आपकी प्रायः हमारे किसान भाई हेक्टेयर में देखेंगे तो 80 किलो 90 किलो 100 किलो तक हेक्टेयर में बीजा डाल देते हैं। तो अभी क्या है, इसमें जो अगर सीड ड्रिल से आप बुआई करते हैं तो आपका बीज की दर लगभग आधी हो जाएगी। तो आधा बीजा खाद का, देखिए क्या है छिटकाव बुआई में खाद

0: अच्छा, डीएपी आप डालते होंगे एकड़ में, एक बोरी डालते हों या कैसे भी डालते
1: हाँ
0: हों,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसका क्या है,
1: बिल्कुल
0: उपयोग नहीं हो पाता है। फास्फोरस और पोटास आपकी जो डालते हैं ऊपर ही रह जाती है, उपयोगिता उसकी नहीं रहती है। तो आप उसको क्या करिए कि अगर गांव में ट्रैक्टर और सीड ड्रिल आपकी उपलब्ध है, और नहीं है तो कृषि विज्ञान केंद्र आपका, जैसे मोहना मालपुर के लिए राजनांदगांव हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको ये कहाँ से उपलब्ध होगा। तो बीज की मात्रा है वो आधी हो जाएगी इस विधि से, और जो कल्टीवेटर के बाद आप सीड ड्रिल उसमें लगा दें ट्रैक्टर में, उसमें खाद भी डालने की व्यवस्था रहती है, तो उससे आपका डीएपी अगर महंगी आती है तो आजकल सिंगल सुपर फास्फेट जिसको राखड़ भी बोलते हैं,
1: हाँ लाते हैं हम उसको भी,
0: उसमें दाने वाली आजकल आती है सीड ड्रिल में, उसको डालना है,
1: हाँ
0: पाउडर वाली नहीं डालना
1: नहीं
0: है।
1: दानेदार ही मंगाते हैं हम लोग।
0: हाँ, तो उसमें क्या है, आपका जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से आती है और पोटास आती है, तो उसको क्या है, हेक्टेयर के हिसाब से आप देखेंगे या एकड़ के हिसाब से देखेंगे, तो उसको जो है 160-40 हम लोग संस्तुत करते हैं एक हेक्टेयर के लिए, है ना। तो उसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, इस पूरी मात्रा नत्रजन की नहीं देना है, कुछ मात्रा देनी है लगभग 30-40% नत्रजन की, बाकी फास्फोरस पोटास को सीड ड्रिल के माध्यम से दे दीजिए। बीजा मैंने कहा कि लगभग हेक्टेयर में आपका 40 किलो 50 किलो में ही हो जाएगा, और उसके बाद आप अगर सीड को उपचारित कर देते हैं किसी से, कार्बेंडाजी वगैरह से किसी से, तो बहुत अच्छा रहेगा। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो सीड ड्रिल होती है ना, बुआई की मशीन होती है, उसको 20 सेंटीमीटर रखें, और बढ़िया जो है ज्यादा गहरा बीजा नहीं डालना है, जैसे कल्टीवेटर फांसते हैं तो नीचे हो जाता है, जब सीड ड्रिल फांसते हैं तो हाइड्रोलिक को बहुत नीचे नहीं ले जाना है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा उसको गहराई पे बीज को नहीं बोना है। तो पहले खाद जाती है, फिर बीज जाता है, 20-20 सेंटीमीटर पे लाइनें बन जाती हैं और बढ़िया बुआई हो जाती है। अगर पानी नहीं भी है आपके पास में, तो जिस तरह खुर्रा बोनी पहले नहीं बोलते थे गांव में हमारे,
1: नहीं ऐसा मतलब थोड़ा बहुत तो बोए भी है सर।
0: हाँ, छिटकवा बोए होंगे, छीट के।
1: हाँ हाँ छिटकवा, हाँ।
0: जी, तो आप उसको सीड ड्रिल के माध्यम से अगर बोते हैं इसको, क्योंकि नागर मिलता नहीं है आजकल, देखिए बैल जोड़ी गांव में मिलती नहीं है, तो आप अगर ट्रैक्टर के माध्यम से करेंगे तो अच्छे से खाद और आपका बीज बराबर मात्रा में चला जाएगा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी बढ़िया हो जाएगी और पौधों की संख्या बहुत अच्छी आएगी इसमें आपकी। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें खरपतवार बहुत आते हैं, देखा होगा आपने, नींदा बहुत आते हैं, तो नींदा के लिए बड़ी अच्छी अभी दवाई आ गई है नींदा के लिए।
1: अच्छा, कौन सी
0: तो
1: दवाई
0: इसमें
1: सर?
0: पैराजो सल्फुरान अभी जो है डालिए आप साथ ही, लेकिन नमी होना चाहिए खेत में, मतलब वर्षा उस टाइम पे हो जाए और बुआई के 3 दिन के अंदर नमी रहे, तो साथी के नाम से आता, बहुत सस्ती दवाई आती है हेक्टेयर में एकड़।
1: लेकिन 3 से 5 दिन हो गया तो बनता ही नहीं।
0: नहीं नहीं नहीं डालना चाहिए उसको, उसमें क्या है नमी रहे में 0 से 3 दिन में तो ज्यादा ठीक रहता है, चौथे दिन भी डाल सकते हैं चलेगा, लेकिन नमी रहना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए।
1: हाँ सर वही पूछना था।
0: तो उसको डाल दीजिए, और उसके बाद आप बिस्पैरीबैक सोडियम डालते होंगे लगभग 18 से 20 25 दिन पे, है ना, जिसको नॉमिनियो गोल्ड वगैरह के नाम से आता है बाजार में, उसको डाल दीजिए, तो आपका काफी खरपतवारों का नींदा का प्रबंधन हो जाएगा। और बाद में एक बार लेवर घुमा दीजिए आप 30 से 35 दिन में, तो ये आपका बढ़िया बुआई का किस तरह करनी है, कितना खाद डालना है, किस तरह खरपतवार का प्रबंधन करना, आपने अगर ये 3 चीजें कर ली तो आपका रोपा के बराबर, लगभग लगभग रोपा के बराबर उपज आएगी आपकी इसमें।
2: धन्यवाद भैया।
1: धन्यवाद दीदी।
2: हेलो हेलो चौपाल।
3: हेलो।
2: हाँ भैया, राम राम। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: अगुंदहा जिला बालोद, केशव कुमार साहू
2: जी। केशव भैया, आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है कि धान की सीधी जिन बुआई की विधि होते, एकर विषय में हमारे विशेषज्ञ जानकारी देवा थे, तो आप मन का जानना चाहता
3: हूँ? मैं तो अभी खेती खार में खेत धाना हूँ और साथ में रहर बो था तो फसल अच्छा हो, ऐसे दवाई बताऊ?
2: जी जी, तो भैया ये जो भी आपका जानकारी चाहिए हमारे विशेषज्ञ आपने बताते, आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी जी। हाँ
0: जी, अरहर के संबंध में आपने अभी जो पूछा प्रश्न की, हमें अभी बुआई करनी है या कर दिया आपने अरहर की?
3: अभी लगा रहे, बो रहे हैं सर।
0: तो आपका खेत जो है धनहा खेत में अरहर बो रहे हैं या भर्री, या आपका जहाँ पर पानी नहीं रुकता वहाँ पर बो रहे हैं?
3: हमारे तरफ तो पानी रुका हुआ है, बर वाला हरे लगा था, मतलब अभी रोपा भी लगाबो।
0: हाँ नहीं, अरहर मतलब पूछता हूँ मैं कि अरहर का आपका लगाने का, जिस खेत में लगाना करना है उसमें आपका खेत कैसा है?
3: ठीक ठाक है वे।
0: नहीं पानी भरते का बरसात में?
3: नहीं भरे।
0: नहीं तो उसमें क्या है कि आप अगर आजकल क्या है कि मशीनें आ गई हैं, रिज प्लांटर वगैरह अगर आसपास आपके कहीं उपलब्ध हो तो क्या है, देखिए अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन जुलाई अंतिम तक, अगस्त तक, सितंबर तक बारिश होगी। अगर थोड़ा सा भी खेत में पानी भरता है तो अरहर ज्यादा उपयुक्त नहीं रहती है। लेकिन आप अगर मांदा बना देते हैं, मांदा समझते हैं, मांदा बना के करेंगे और उसमें फिर अरहर बोएंगे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, है ना, और आपका फसल सड़ने से बच जाएगी और अच्छी उपज भी आपको उसके साथ मिलेगी।
2: जी धन्यवाद भैया।
3: धन्यवाद।
2: हेलो हेलो चौपाल।
4: राम राम।
2: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
4: भाठा पारा जतरंगी ले बोल रहे दीदी, हीरू राम साहू।
2: हाँ भैया, हेलो चौपाल के आज के मेरे विषय है धान की सीधी जन बुआई होते ना वो विधि के विषय में जानकारी, तो एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला।
4: अब धान पान की वो तो बड़े उन्नत किस्म के बड़े लेते दीदी।
2: हाँ तो ये जिन उन्नत किस्म की जानकारी है हमारे विशेषज्ञ आप मतलब बतावत है। आज हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर संजय द्विवेदी जी।
4: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार भैया। नमस्कार।
4: अब वही उन्नत किस्म भैया कैसे ढंग से लेना भैया
0: जी। एक तो पहले क्या है कि देखा जाए तो सीधी बुआई के लिए थोड़ा सा हमारे यहाँ बारिश कम होने की वजह से विलम्ब हुआ है, तो अभी मान के चलें कि बारिश जो आपका जो जिला है हो सकता है बारिश उसमें भी नहीं हुई हो, अभी बारिश कल परसों से शुरू हुई है तो ये 10 तारीख तक मुझे लगता है आप लोग बुआई कर पाएंगे सीधी बुआई। तो खुर्रा बोनी हो गए?
4: हाँ हो गए साहब। हेलो हाँ, बोल रहे हैं।
0: हाँ तो पानी आ गए है खेत में?
4: अभी मध्यम वर्षा है साहब, अभी ढंग से नहीं आए।
0: तो उसमें क्या करिए कि आप नींदा नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं?
4: दवाई डालते भैया बताना अच्छा सा दवाई।
0: हाँ वही बोल रहे हैं आपको, जैसे अभी ना आप खुर्रा बोनी के बाद जैसी नमी आती है 0 से 3 दिन के अंदर, जैसे नमी आने के अंकुरण के पहले, उसमें ना साथी आप लोग ना पैराजो सल्फुरान का बढ़िया उपयोग कर सकते हैं या और दूसरी दवाई जैसे इरोज गोल्ड के नाम से आती है, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए जो कि आपका 0 से 3 दिन के अंतर्गत इसको उपयोग करना है, जो कि बहुत अच्छा खरपतवारों का नियंत्रण आपको इससे मिल जाएगा। और बाद में लगभग 18 से 20 दिन के बाद अगर आपको खरपतवार दिखते हैं खेत में तो एक बार जो है नॉमिन्यू गोल्ड वगैरह या इस तरह के पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जिनको बोलते हैं इनका उपयोग कर देने से काफी हद तक खरपतवारों का नियंत्रण आप अपने खेत पे कर पाएंगे।
2: धन्यवाद भैया।
4: धन्यवाद दीदी। राम राम।
2: राम राम। हेलो हेलो चौपाल।
3: हेलो चौपाल।
2: हाँ भैया कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: मैं तुलसीराम देशमुख, गांव चंगोरी, जिला दुर्ग ले बोला था मैडम जी।
2: जी भैया, आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है कि धान की सीधी बुआई जिन होते ये विधि के विषय में हमारे विशेषज्ञ बतावत है, तो आप मल्ला एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहिए?
3: मुला जानकारी चाहिए रही थी कि सीधी बुआई में सबसे बड़े समस्या आते हैं नींदा के, तो सीधी बुआई में हम नींदा के नियंत्रण कैसे करें एक बारे में विशेषज्ञ में जानकारी चाहता हूँ।
2: जी जी, तो हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय द्विवेदी जी है, आप मल्ला बतावत है।
0: नमस्कार जी। खरपतवारों की समस्या प्रायः सीधी बुआई में ज्यादा रहती है, लेकिन जब आप इसको मशीन के माध्यम से या हल के माध्यम से पंक्ति विन्यास में जब आप बुआई करते हैं सीधी, तो पौधों की संख्या बराबर रहती है, खरपतवारों का नियंत्रण बराबर होता है। तो नियंत्रण करने के लिए देखिए जो हर्बिसाइड है, नींदा नाशक है, इनको क्या है प्रायः बुआई के 0 से 3 दिन में, जैसे आपने आज बुआई की, कल पानी हो गया और परसों नरसों तक उसमें हर हालत में जो प्री इमरजेंस अंकुरण पूर्व दवाई जिसको बोलते हैं उसका उपयोग करना चाहिए, जिसमें से अभी देखेंगे आपकी ज्यादातर जैसे सावा, मोथा या चौड़ी पत्ती के खरपतवार, इस तरह के खरपतवार ज्यादा प्रायः देखने को मिलते हैं, रेशम कांटा, तो इन सब चीजों के नियंत्रण के लिए आप देखेंगे कि जो अंकुरण पूर्व जो खरपतवार नाशी हैं उनमें से आपका साथी हो गया जो पैराजो सल्फुरान में रहता है केमिकल हर्बिसाइड, दूसरा आपका इरोज गोल्ड है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसके साथ में पटीला क्लोर भी मिक्स रहता है, तो इस तरह से आप 0 से 3 दिन में इन दोनों हर्बिसाइड में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। उसके लगभग 18 से 20 दिन बाद फिर आपको अगर खरपतवार दिखते हैं तो उसमें आप पोस्ट इमरजेंस जिसको अंकुरण पश्चात हर्बिसाइड जिसको बोलते हैं उसमें से मैंने जैसे बताया आपका दूसरे जो हर्बिसाइड है नॉमिनो गोल्ड वगैरह इनका उपयोग कर सकते हैं आप उसमें। तो इस तरह से आप अगर अंकुरण पूर्व और अंकुरण पश्चात ये 2-3 हर्बिसाइड जो मैंने बताया इनका उपयोग अगर आप करते हैं तो प्रायः काफी हद तक आप खरपतवारों का नियंत्रण कर पाते हैं, और अगर इसके बाद भी थोड़ा बहुत नियंत्रण बचता है तो आप 1-2 बार खेत में घुमा दीजिए, लोगों को लेबर को घुमा दीजिए कोई एकड़ में, तो जो और बन वगैरह छोटा मोटा उस तरह का रहता है तो उसको निकाल देंगे, तो आप पूरी तरह से आपका खेत खरपतवारों से मुक्त हो जाएगा और बहुत अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे।
5: डॉक्टर साहब ये जानना है इसे कि हम सावधानी का बरतना चाहिए, जिसे साल मानसून बड़ा बेरू पानी गिरा नहीं है वही हो गए, तो दवाई डाले कहली नमी के का ध्यान रखना।
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिपेक्ष चल रहा है वो है सिर्फ आपके दुर्ग जिले नहीं पूरे प्रदेश में जो मौसम है वो बहुत अनुकूल नहीं है खेती के लिए, क्योंकि बारिश पूरी तरीके से जून में लगभग 50-60% की कमी दर्ज की गई है हमारे प्रदेश में। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है कि किसानों के पास सिंचाई के साधन भी नहीं है, बुआई अगर कर दिया उसने अब दवाइयां डालने के लिए खेत में अगर नमी नहीं है तो दवाई आपकी काम नहीं करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
5: यही जानना था सूखे खेत में

0: पड़ता है हर्बिसाइड, दवाई पड़ती है तो थोड़ा पीला पड़ता है, लेकिन उसके बाद अगर पानी मिल जाता है तो आपकी फसल रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब जानकारी देने के लिए।
0: जी
2: हेलो, हेलो चौपाल,
3: हेलो चौपाल, राम राम,
2: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था,
3: छोटकू साहू बोल रहा हूँ ले।
2: जी भैया, आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है धान की सीधी बुवाई की विधि, तो एकले जुड़े आप लोग का जानकारी चाहिए,
3: कौन विधि से धान रोपाई करना चाहिए वो हमारा ला।
2: तो हमारे आज के विशेषज्ञ है डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, हाँ आप मतलब बतावा थे।
0: जी आपने रोपा भी कहा अभी, तो मेरे ख्याल से आप रोपाई में करना चाहेंगे कि सीधी बुवाई में धान को बोना चाहेंगे।
3: सीढ़ी तो नहीं सर, रोपाई करने,
0: रोपाई रोपाई थरा देवागे है।
3: जी सर।
0: तो इसमें क्या है, देखिए आपके पास मतलब सिंचाई का साधन होगा तभी आप रोपा विध से कर रहे हैं।
3: हाँ।
0: और मौसम जैसी ठीक हो, आपका थरा लगभग 21 दिन 22 दिन का हो, तब आप उसको रोपाई के लिए उपयुक्त माने। जब आप उस थरा को निकालें, निकालने के बाद आजकल क्या है, उसमें जितना भी बायो फर्टिलाइजर आजकल आ गया है मार्केट पे, PSB, एजोटोबैटर और इन सब चीजों का घोल आता है, उसको आप 2 ग्राम 2 ग्राम सभी का लेकर के पानी में सोल्यूशन बना लें और इनकी जड़ों को उस पर डुबो दें उसमें और फिर निकाल लें। उससे क्या होगा कि आपकी जड़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और पौधे की जब लगाएंगे आप रोपा तो अच्छी बढ़वार बहुत जल्दी हो जाएगी, जैसे कि उसमें कण से निकलने की संख्या बढ़ जाएगी और ये सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। लगभग 21 से 22 दिन का 25 दिन का के अंदर थरा आप लगाइए, ज्यादा लेट ना हो, क्योंकि आपने बहुत समय से बुआई कर दी है। आपने बुआई कब की है नर्सरी की?
3: एक हफ्ता हो गया सर, आधे दिन दे रहे हैं शुक्रवार के।
0: हाँ, एक हफ्ता आपका हो गया, एक हफ्ता मतलब आपने लगभग 25-26 तारीख को बोया होगा उसको, तो आप लगभग इसको आप 15 से लेके 20 जुलाई के बीच में सबसे उपयुक्त समय हमारे यहाँ जो रोपा पद्धति के लिए, उसमें क्या करिए आप कि खाद वगैरह की मात्रा बढ़िया संतुलित मात्रा आप डालिए, लगभग में 100-60-40 वैरायटी कौन सी है आपने जो लगाई हुई है, मतलब वो मोटा धान होगा, मोटा धान है क्योंकि आपका उद्देश्य है कि ज्यादा उत्पादन हो, तो उसके लिए आपको उसमें बराबर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा। संतुलित से आशय है नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, ऐसा नहीं कि सिर्फ DAP आप डाल दें एक बैग उसमें हो गया आपका रोपा, उसमें क्या करिए आप उसमें लगभग जो मैंने 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और लगभग 40 किलोग्राम आपका प्रति एकड़ नत्रजन डालिए और 60 किलोग्राम आप उसमें लगभग फास्फोरस डालिए और 40 किलोग्राम लगभग पोटास डालिए। मिट्टी आपकी किस तरह की है,
3: खेत कन्हार
0: ठीक है, कन्हार है तो उसमें पोटेशियम की मात्रा ठीक ठाक रहती है तो 40 किलोग्राम में पर्याप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पूरी मात्रा नत्रजन की रोपाई के समय नहीं डालना है, 40% से 50% के आसपास आपकी जैसे मिट्टी काली है तो आप 40% बढ़िया डाल दीजिए उसमें, क्योंकि आपको ज्यादा उत्पादन चाहिए। बाकी फास्फोरस पोटास पूरा मिला दीजिए रोपाई के समय, बाकी मात्रा आप बाद में जब जिसको कंसे निकलते हैं उसके पहले जब डालते हैं लगभग 30 से 35 दिन में बची हुई लगभग 25% मात्रा, उसके बाद आप जब गभोट आता है उस टाइम पे लगभग डालिए 20% के आसपास में, बाकी लगभग 10% जो बचा आपका वो पुष्पन के समय भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वैरायटी बता रहे हैं मुझे लग रहा है वो 130 दिन से पहले नहीं होगी, 130 से 135 दिन तक धान लग जाएगा उसमें। तो लंबी अवधि की धान की प्रजातियों में नत्रजन की मात्रा को 4 भाग में देने से ज्यादा फायदेमंद रहता है और ज्यादा आपकी जो नत्रजन की इफिशियंसी या दक्षता है वो ज्यादा मिलती है आपको। तो इस तरह से आप अगर उर्वरक प्रबंधन सही करते हैं, उसके बाद उसमें समय समय पर पानी देते हैं, समय समय पर नींदा का प्रबंधन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी उपज रोपाई पद्धति के माध्यम से मिल जाएगी।
3: धन्यवाद।
2: हेलो, हेलो चौपाल,
1: हेलो चौपाल,
2: हाँ भैया, राम राम, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था,
1: राम राम, मैं लखनपुर का मरघर से बोला था, दानी राम चंद्रवंशी दीदी।
2: जी भैया, भैया आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है कि धान की सीधी बुवाई जो होती है उखर विधि, तो एकले जुड़े आप मल्ला का जानकारी चाहिए।
1: धान बुके के जुमथन दीदी, जब अभी पानी गिरे है तो 1 एकड़ में कतका कन बीज लग जाए, DAP खातू मिला के बोना है कतका खातू लग जाए, यही बात पूछे बर लगा है दीदी।
2: जी भैया, आज हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, आप मल्ला ये विषय बतावा थे।
0: जी चंदमंशी जी, ये अभी पानी आप कह रहे हैं बारिश हुई है, तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद अगर बारिश नहीं होती तभी आप लगाने के लिए खेत आपका तैयार होगा सीधी बुआई के लिए। और मैं आपको संस्तुत करूंगा कि अगर आपके आसपास सीड्रिल बुआई की मशीन अगर उपलब्ध है और खेत आपका लगता है कि बुआई की जा सकती है मशीन से, तो आप उसको मशीन के माध्यम से बोएंगे तो आपका समय भी बचेगा और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी आप अच्छी मेंटेन कर पाएंगे, साथ ही इसमें जो उर्वरक और बीज इसकी मात्रा भी कम लगेगी, क्योंकि हमारे किसान भाई जो छिटकाव विधि में बोते हैं आप देखेंगे कि लगभग जो है टेयर में 100 किलो 80 किलो बीजा लग जाता है, एकड़ में 40-50 किलो बीजा लग जाता है, और अगर आप इस विधि से बोते हैं तो लगभग आप आधा बीजा लगेगा, टेयर में 40 से 50 किलो बीजा भी आप डालते हैं मशीन के।

0: माध्यम से तो पर्याप्त होता है, एकड़ में अगर हाइब्रिड का उपयोग करते हैं तो बहुत कम हो जाता है। और नॉर्मल भी आप अगर यूज करते हैं बीजा एकड़ में, तो 20 किलो 25 किलो बीजा मशीन से बहुत पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। तो ये बीजा आपको कम लगेगा आप इससे बोते हैं। खाद का पूछ रहे थे, तो मैं ये कहूंगा कि एकदम ऐसा मत करें कि डीएपी ही डाल दें आप। फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूरी संतुलित डीएपी पे नहीं जा पाती है, तो उसके साथ साथ में आप डीएपी के अलावा और भी जो दूसरे उर्वरक हैं उनका भी ले सकते हैं आप। कुछ मात्रा में आप 20-25% 30% यूरिया लीजिए, बाकी आप राखड़ देखते हैं दाने वाली, आजकल राखड़ आ गई है सिंगल सुपर फास्फेट जिसको बोलते हैं, है ना। इसी तरह पोटास है, तो फास्फोरस और पोटास, राखड़ और पोटास, इनको पूरी मात्रा दे दीजिए आप। और यूरिया की मात्रा लगभग 30-40% दीजिए आप। और साथ में बीज भी आप, सीड्रिल आजकल ऐसी आ गई है कि बीज और खाद एक साथ आप दे सकते हैं। तो इस तरह से खाद बीज आप अगर सीड्रिल के माध्यम से या लाइन में बुआई करते हैं 20 सेंटीमीटर के पंक्ति से पंक्ति विन्यास में, तो बहुत अच्छा आपका पौधों की संख्या मिलेगी, अच्छी बढ़वार होगी, उसको सही जो है हवा पानी सब मिलेगी, जिससे कि आपकी अच्छी उपज आपको मिले।
1: तो सीडिल हमारे में हवा भैया है, सीडिल है, तो डीएपी संग मिला के बोला बनारे जाए सीडिल मतलब
0: डीएपी में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि पोटास नहीं जाती है डीएपी में, तो उसके साथ में थोड़ा सा पोटास भी, मैंने जैसा बताया कि 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और एकड़ में लगभग 16 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटास जो है उसको भी शुरुआती अवस्था में डाल दीजिए। कौन सी मिट्टी है आपकी?
1: हमारी मिट्टी वो कन्हार मिट्टी है,
0: कन्हार मिट्टी, तो पोटास की मात्रा कम लगेगी, 30-40 किलो में पोटास हो जाएगा और अच्छी उपज जिससे आपको सीधी बुआई में मिल जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब, आप मन बड़ सुकर सुकर हमारे संगवारी मल्ला जानकारी देवा था। तो हमरो मन में एक प्रश्न आवत रही कि जैसे हमन धान के सीधी बुआई की विधि अपना था, तो एक हल्ले हमन ला का लाभ मिलती?
0: ये आज के समय पे या आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी परिस्थितियां बन रही है, चाहे मौसम को लेकर हो या कोई और भी फसल से संबंधित खरीफ में धान को लेकर परिस्थितियां बन रही है, वर्तमान में धान की उन्नत सीधी बुआई ये बहुत ही अच्छी तकनीक मानी जा रही है। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात ये कि अगर जैसे आपने देखा कि किसानों के प्रश्न थे कि रुपाई में आज के समय पे लेबर नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या है लेबर की। एक एकड़ में आजकल 4,000-5,000 रुपए में रुपाई के लिए हमारी लेबर मिलती है, जो कि किसानों को वो भी उस रेट पे नहीं मिल पा रही है लेबर जिस रेट पे वो चाहे, कि इस रेट से हम ज्यादा भी पैसा देते तभी आज के समय पे लेबर बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तो लेबर की बचत होती है इससे सबसे पहले, दूसरा क्या होता है कि समय की बचत होती है। समय की बचत से आशय है कि आप अगर सीधी बुआई कर देते हैं तो आपको नर्सरी नहीं लगाना पड़ा, तो नर्सरी की बचत हो गई। और इसमें क्या होता है कि बीज दर भी इसमें देखा जाए तो नर्सरी का जो खर्च है उससे कहीं ना कहीं आप कंपेयर करेंगे तो बीज दर भी आपका कम हो जाएगा। नर्सरी में बीज दर कम लगता है, लेकिन नर्सरी का खर्च पानी से लेके खाद से लेके समय आप 21-22 दिन का देते हैं, उसकी बचत होती है। तीसरा जो आज के समय पे सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। ये जो पानी आप देख रहे हैं कि नहीं बरस रहा है या असमय बारिश हो रही है या देखा होगा तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ये सब कारण है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के। जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन का मतलब ये है कि वायुमंडल में जो बाहर से गैसेस हैं आ रही हैं वो अंदर ही संचित हो जा रही हैं, बाहर नहीं जा पा रही। इसी तरह रेडिएशन का प्रॉब्लम है या टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 100 सालों में देखेंगे योरेज आप अगर 0.75 डिग्री टेम्परेचर हमारी धरती का बढ़ गया है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए या ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए, ग्लोबल जो वार्मिंग पोटेंशियल जिसको बोलते हैं उसको कम करने के लिए इस तरह की विधियां उपयुक्त होती हैं। और सबसे बड़ी समस्या अभी जो इमिशन हो रहा है वो आप मीथेन का इमिशन हो रहा है धान की फसल से, अगर आप रोपाई विधि से करते हैं तो इसमें 40-80% तक मीथेन का इमिशन कम होता है। और मीथेन हमारी जो गैस है वो वायुमंडल में जाके ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाती है, जिससे कि हमारा वायुमंडल प्रभावित होता है। और देखा होगा तापमान में बढ़ोतरी से लेके पानी की कमी से लेके या वर्षा का साइकिल कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इन गैसों से, जो कि डायरेक्ट सीडेड राइस को करने से इनमें कमी आती है। जिसमें एक शब्दावली जो होती है जिसको बोलते हैं वाटर, जो पोटेंशियल है जो आपका ग्रीन हाउस का, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से या इस तरह के मेथड का उपयोग करने से कमी आती है।
2: डॉक्टर साहब हमारे संगवारी मन की फोन कॉल आवा थे। हेलो हेलो चौपाल।
3: हाँ मोनिका दीदी नमस्कार।
2: नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: हाँ मैं मानवेंद्र साहू बोला था, गर्रा पार बांधा बाजार ले।
2: नमस्ते भैया। भैया आज हमारे हेलो चौपाल के विषय है कि धान के उन्नत सीधी बुआई के विधि का होते, तो एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहिए आप ला?
3: मोला जानकारी है कि जैसे अपन ला धान के उन्नत खेती करना है ना, तो कैसे ढंग के कर सकना उन्नत वगैरह, जैसे बीज वगैरह कुछ बढ़िया से आए, बारे में जानकारी लेना
2: जी। तो भैया ये जानकारी हमारे विशेषज्ञ आप मल्ला देवा थे। आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी जी।
0: धान की सीधी बुआई के लिए अभी उपयुक्त समय है, लेकिन फिर भी जो अभी कम अवधि की प्रजातियां हैं, जैसा आप पूछ रहे थे, जैसे इंद्रावती धान हो गया, बस्तर धान एक हो गया, MTU 1153 हो गया और MTU 1010 हो गया, इन प्रजातियों को आप लगाइए जिससे कि कम अवधि से थोड़ा सा विलंब हुआ है, क्योंकि आजकल पानी जैसा कि आया है, अब इसके बाद बुआई हम लगभग एक हफ्ते बाद ही कर पाएंगे। अभी दो चार दिन हो सकता है बुआई बहुत सारी जगहों पे ना हो पाए, क्योंकि पानी कहीं कहीं पर ज्यादा हो गया है, कल से आज तक में रेन ठीक ठाक बारिश हो गई है। तो सीधी बुआई के लिए इन प्रजातियों का, जो कम अवधि की प्रजातियां हैं, उनका उपयोग करेंगे 110 से 115 दिन की अवधि, तो जो समय है हमारा जल्दी उपज आ जाएगी हमारी, और उसके बाद हम रबी में भी उन्हारी या दूसरी फसल ले सकते हैं। और दूसरा आपका इनका जो बीज दर है सीधी बुआई में, वो भी आप अगर उन्नत सीधी बुआई विधि से करते हैं तो लगभग जो धान हमारा किसान हेक्टेयर में 80 किलो 90 किलो 100 किलो बोता है, इस विधि से अगर आप बोते हैं तो लगभग आधा आपका धान बच जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना धान डालने की, पर्याप्त मात्रा में 1 मीटर स्क्वायर में हम बोलते हैं कि 30 से 40 50 पौधे होना चाहिए, जैसे पहले 82 करते थे, अब आजकल 82 नहीं करते हैं, चलाई करते थे जिससे पौधा हमारा 1 मीटर स्क्वायर में जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी हो जाती थी। तो इस तरह से आप अगर सीधी बुआई करते हैं सीडिल से, तो पौधों की संख्या और सही मात्रा में उसको हवा पानी सब मिलता है, खाद मिलता है, जिससे कि अच्छी बढ़वार होती है और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं।
3: ठीक है सर जी, जानकारी के लिए धन्यवाद।
2: भैया धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक जानकारी हमला ये पूछना रही थी कि जैसे हमन पहली जन विधि ला अपना के धान की बुआई करें, और अभी ये नवा विधि है कि जब हमन सीधी बुआई करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है?
0: देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः किसान भाई छिटकाव विधि से पहले बुआई करते थे, उसके बाद लगभग 35 दिन में 82 विधि से यहाँ पर पानी भर के उसमें देसी हल से चला देते। तो अभी समस्या क्या रही है कि 35 दिन में जो पानी भर के चलाते थे वो एक तो पानी नहीं मिल पा रहा समय पर 35 दिन 40 दिन पे उसको, दूसरा क्या है उसको चलाने के लिए बैल जोड़ी चाहिए, और चलाने के बाद उसमें क्या होता था कि लेवर लगती थी, जो कि हल चलाने के बाद खरपतवार और धान दोनों उखड़ता था हल जब चलाएंगे। तो क्या होगा कि चलाई एक विधि होती थी कि उसके बाद उसको धान को जहां पर कम संख्या उसको वहां लगा देना और खरपतवार या नींदा जो है उसको निकाल के मेड़ पे फेंक देना। तो ये प्रक्रिया करने के लिए थोड़ा सा अब उतना उपयुक्त इसलिए नहीं है, एक तो पानी नहीं है, दूसरा लेवर नहीं है, तीसरा जो बैल जोड़ी की व्यवस्था वो भी नहीं हो रही है, और इस तरह से ये प्रक्रिया धीरे धीरे धीरे अभी पुरानी हो गई या बंद हो गई इन सब समस्याओं की वजह से, और इसी से बेहतर हम विधि लेके आ रहे हैं, इसीलिए उसको धान की उन्नत सीधी बुआई विधि कहा गया है। कि इसमें हम, जैसे मैंने इसके पहले भी चर्चा कर रहा था आपसे मैं, कि लेवर की बचत, श्रम की बचत, और इसके साथ साथ में जो जलवायु परिवर्तन के लिए उपयुक्त विधि, जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होना 40% से 60% तक, मैंने जैसे बताया कि मीथेन गैस का इमिशन इससे कम होता है, और एक एकड़ में लगभग 8 से 10 हजार रुपए पैसे की बचत, दूसरा पानी की बचत। जो पुरानी विधि थी उसमें आपको 35 दिन में पानी भरना था, भरने के बाद हल चलाना था, उसके बाद लेवर उसमें जाके, उस श्रमिक जाके उसमें धान की पुनः रोपाई जैसा चलाई करना और खरपतवारों को बाहर करना, तो ये समस्या से निजात। दूसरा आज के समय पे हमारे पास जो इतने अच्छे अच्छे खरपतवार नाशी उपलब्ध हैं नींदा को नियंत्रित करने के लिए, उनका सही उपयोग इस मेथड से प्री इमर्जेंस, जैसे हम अंकुरण पूर्व और अंकुरण पश्चात, आज के समय पे जैसे खरपतवार हैं उसी तरह से केमिकल भी बाजार में उपलब्ध हैं, आपने समस्या अपनी बताई, और उसी तरह के खरपतवार नाशी उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद एक लाभ इसका और है, वो है कि ये लगभग आप सीधी बुआई विधि से अगर बुआई करते हैं तो फसल आपकी 7 से 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। उसका फायदा ये है कि रबी की जो हमारी दूसरी फसल है उसके लिए आपको ज्यादा समय मिल जाता है। तो एक बहुत ही लाभकारी विधि है ये, जो किसान पहले करता था और जो किसान के लिए अभी हम विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक विधि हम संस्तुत कर रहे हैं धान की उन्नत सीधी बुआई, ये दोनों में ये प्रमुख रूप से अंतर है और ये ज्यादा फायदेमंद है, जो मैंने 4-5 चीजें आपको प्रमुखता से बताई इसमें।
2: डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, आप मन हमारे संगवारी मल्ला फोन के माध्यम ले बड़ सुघर सुघर जानकारी दियो, संगे संग हमरो जिन जिज्ञासा रही ओखरो आप मन बड़ सुघर तरीका ले जानकारी दियो, ये खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: आज हेलो चौपाल के विषय रही से धान की उन्नत सीधी बुआई विधि, जिला हमन DSR कीथन, और एखर ले जुड़े आप मन के फोन के माध्यम ले समस्या के निदान करत रही है आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय द्विवेदी जी। हाँ, आप मन प्रमुख वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर मा। हेलो चौपाल के रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक करे जाते, और हमारे फोन नंबर हवा, पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483, और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के स्टडी कोड है 0771। आज हेलो चौपाल ईंचे से रावत है, राम राम।
4: संगवारी वो भी सुने हलो चौपाल विषय रहीस धान की उन्नत सीधी बुआई विधि। विशेषज्ञ रहीन डॉक्टर संजय द्विवेदी प्रमुख वैज्ञानिक शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तकनीकी सहयोग रहीस मोहम्मद अशरफ और गंगा प्रसाद बंजारे के। संचालन करत रहीन मोनिका जैन और प्रस्तुत करता रहीन शशि प्रकाश पांडे।
2: और भाई अब बेरा है हमारे क्रम कृषक प्रश्न मंच के। तो पूछ लेथन आज के जिन प्रश्न है तेला। तो संगवारी हो आज हमारे प्रश्न है कि धान के सीधा बोई मा बीज ला कितना गहराई में बोना चाहिए और बीज के ले बीजा के जिन दूरी है वो कितना होना चाहिए। सही जवाब पर हमारे मेल आईडी है राय आज के प्रश्न tais@gmail.com। इसने हमन पांचवी हफ्ता आप मन ले पूछे रहे कि उन्नत किस्म के फूल के बीजा या पौधा कहाँ ले बिजा सकथन। तो एक सही जवाब है शासकीय उद्यान रोपणी और पंजीकृत संस्था ले एक हमन जिन बीज है वो ले सकथन। और सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम ले बताही निर्मल भाई।
4: तो मोनिका मेल के माध्यम ने सही जवाब भेजिए हमारे संगवारी मन है परसाटोला मगर चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिरोचनी तुषार खुमेंद्र मसिया ग्राम बठेना पाटन जिला दुरुगले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र यश प्रयान वर्मा मदनपुर कवर्धाले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू लोरमी ग्राम त्रिजड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा मरावी पुष्पराज ऋषभ मरावी कांकेर संबलपुर ले फागू राम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव उमेन्द्र कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन भूपेश दिव्यांश शिवा निषाद आपन हो तेंदु भाटा मगरलोड जिला धमतरी ले।
2: सही जवाब भेजिए जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। और अब अथे जाए के बेरा और जाए के पहली बता देवन काली के कार्यक्रम। काली संध्या बेरा चौपाल मा आज की बात मा गुड बात के विषय हुई कि भाई ये महीना के जिन उद्यानिकी काज होते वो काका होते। और फिर किसान वाणी में क्रम आज की सलाह मा जानकारी के विषय हुई स्थायी उन्नत कृषि के लिए वर्षा जल संचयन एक उपाय बताही विशेषज्ञ डॉक्टर रवीश केसरी। और फिर गीत संगीत की मधुरता तप अगर बेकरी तदेव विदा कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगवारी मल्ला मोनिका
4: और निर्मल के
2: राम राम, राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल। अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड और मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म अमर अकबर एंथोनी में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर को आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म अमर प्रेम में किशोर कुमार को आनंद बख्शी का लिखा गीत और संगीत आर डी बर्मन का।

छत्रपाठी संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म आए दिन बहार के में लता मंगेशकर को गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

छत्रपाठ संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं संतोष दिवाकर। आइए सुनते हैं संतोष दिवाकर के स्वर में ये संगीत।

सुगम संगीत में अभी आप संतोष दिवाकर को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से और अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे से होगा। स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में यानिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव और नोवाक जोकोविच का मुकाबला जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू और तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की हार के साथ कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज रात 11:30 ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 अर्जेंटीना और केप वर्डे आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: बीसी प्लेस स्टेडियम में हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 2-0 से हराया। स्विट्जरलैंड की ओर से इस मुकाबले में ब्रिल एम्बोलो और डैन नडोय ने गोल दागे। मैच की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड ने आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में ब्रिल एम्बोलो ने गोल करके स्विट्जरलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड ने अपनी बढ़त 2 कर दी। डैन नडोय ने शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। यह वर्ल्ड कप में नडोय का पहला गोल था। 2-0 से पीछे होने के बाद अल्जीरिया मैच में वापसी नहीं कर सका।
2: And they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now. The Swiss stride proudly on into the last 16 of the World Cup.
1: इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यह पहला मौका है जब स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीते हैं। अब स्विट्जरलैंड का अगला मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर एक शानदार गोल दागा। इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का नॉकआउट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 41 साल और 147 दिन की उम्र में यह मुकाबला खेला। इसके साथ ही रोनाल्डो नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी पेपे का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 39 साल और 283 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से गोंजालो रामोस ने निर्णायक गोल किया।
2: Cristiano Ronaldo, the World Cup journey continues.
1: वहीं स्पेन ने भी प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया।
3: Correa, it's a well-timed run, it's 3. Austria put to sleep. And Mikel Oyarzabal says, I'm in the picture for the golden boot at the FIFA World Cup 2026.
1: स्पेन की ओर से इस मुकाबले में मिकेल ओयारजाबल ने 2 गोल किए, जबकि पेड्रो पोरो ने अपने देश के लिए पहला गोल किया। साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद स्पेन की यह नॉकआउट मुकाबले में पहली जीत है। टीम का राउंड ऑफ 16 में सामना पुर्तगाल से 7 जुलाई को होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुक करते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में इस समय यानिक सिनर का मुकाबला जेंसन ब्रुक्सबी से और डैनियल मेदवेदेव का सामना जॉन लेनार्ड स्टफ से हो रहा है। नोवाक जोकोविच का मुकाबला आर्थर रिंडकनेक से जारी है। वहीं कल हुए मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रांस के वेलेंटीन रॉयर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सुनते हैं इस मुकाबले का हाल।
4: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटेओ बेरेटी ने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो वर्टानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल 4थे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल शाम 7 बजे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टिकी हुई है।
5: युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में शामिल किए जाने के बाद से ही उनके डेब्यू पर सभी की निगाहें हैं। घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाओं, विश्व कप और आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव को टीम में शामिल किया गया। आयरलैंड सीरीज में मिली हार के बाद वैभव को अंतिम 11 में लिए जाने पर अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड के साथ पहले मुकाबले में भी वैभव को खेलने का मौका नहीं मिला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मुकाबले में युवा स्टार को डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं। उधर बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत को विश्व कप जिताने वाले संजू सैमसन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। विश्व कप के बाद से सैमसन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी सैमसन महज 1 ही रन बना सके। आयरलैंड श्रृंखला में सैमसन कुल 5 ही रन बना सके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 मैचों में से 2 में 49 और 59 रन बनाकर अपना स्थान पुख्ता किया। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा को भी मध्य क्रम में तेज खेलना होगा। इस साल 12 T20 में तिलक सिर्फ 12 छक्के ही लगा सके। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटोन जैसे बल्लेबाज श्रृंखला में अपनी दावेदारी पेश कर इस मुकाबले को जीतना चाहें। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भी 2 फाइनलिस्ट टीम का ऐलान हो गया है। उधर इंग्लैंड ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। कैनिंगटन ओवल में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
6: इंग्लैंड ने 5वीं बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एमी जोन्स महज 2 रन बनाकर शबनम इस्माइल की गेंद पर आउट हुई। वहीं डेनी व्याट को 12 रनों के स्कोर पर मारिजाने कैप ने पवेलियन भेजा। एलिसा कैप्सी भी महज 1 रन ही बना सकी। 23 के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को कप्तान नेट साइवर ब्रंट और हीथर नाइट ने संभाला। दोनों ने मिलकर 4थे विकेट के लिए 90 गेंद में 133 रन जोड़े। नाइट ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। वहीं साइवर ब्रंट ने 75 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिसके दम पर इंग्लैंड 5 विकेट खोकर 169 रन बनाने में सफल रही। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका की ओर से शबनम इस्माइल ने और नॉन कुलुलेको मलाबा ने 2-2 विकेट निकाले। इंग्लैंड ने 5वीं बार T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड से मिले 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। टीम की कप्तान लॉरा वोलवार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। वोलवार्ट 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुई। हालांकि इसके बाद प्रोटियाज टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। एनेरी डक्सेन ने महज 3 रन बनाए। वहीं टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई मारिजाने कैप भी सेमीफाइनल में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और सिर्फ 5 रन बनाकर चार्ली डीन का शिकार बनी। सुनेलोस 11 रन ही बना सके जबकि क्लोड ट्रायोन को 12 रन के स्कोर पर सोफी एक्लेस्टोन ने क्लीन बोल्ड किया। ब्रिट्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 51 रन की दमदार पारी खेली लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। नादिन डी क्लर्क ने 14 और अयाबोंगा खाका ने 4 रन बनाए। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए जबकि चार्ली डीन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: मुकाबले के दौरान इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर को पछाड़कर सबसे ज्यादा 38 विकेट अपने नाम किए। बात निशानेबाजी पर, ISSF शॉटगन विश्व कप कल से इटली के लोनाटो में शुरू होगा। भारतीय निशानेबाज पिछले 2 विश्व कप के प्रदर्शन को भुलाकर इस वर्ष प्रतियोगिता में मजबूती से वापसी करना चाहेंगे। सुनते हैं किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर।
7: भारतीय निशानेबाजों ने लगातार राइफल और पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने इसी प्रदर्शन को निशानेबाज इस विश्व कप में भी दोहराना चाहेंगे। भारतीय निशानेबाजों के लिए ये विश्व कप और इसके बाद इसी महीने चीन के हांगझोऊ में होने वाला ISSF विश्व कप एशियाई खेलों से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के 2 बड़े मौके होंगे। भारतीय टीम को अपने विदेशी कोच ब्रिटेन के ओलंपिक डबल ट्रैप चैंपियन पीटर विल्सन के मार्गदर्शन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारत की ओर से किनान चेनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष ट्रैप स्पर्धा में उतरेंगे। घरेलू ट्रायल और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये तिकड़ी इस सत्र के दोनों विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में असफल रही। पुरुष स्कीट स्पर्धा में भी निशानेबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ट्रैप स्पर्धा में नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत तथा स्कीट में परिनाज ढालीवाल, ओलंपियन रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान इस सत्र के विश्व कप मुकाबलों में कोई सफलता हासिल नहीं कर सकी। महिला ट्रैप में आशिमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मोरक्को विश्व कप में 111 अंक के साथ 14वां स्थान रहा। नीरू अलमाटी विश्व कप के फाइनल तक पहुंची लेकिन फाइनल में 7वें स्थान पर रही। वहीं मनीषा 112 अंकों के साथ 26वें स्थान पर रही। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।

0: डीएक बोगदान डेनियल और गुकेश के समान 7 अंक है और वह संयुक्त दूसरे स्थान पर है। भारत के आर प्रज्ञान नंदा गिरी और उज्बेकिस्तान के नोदिर बेग अब्दू सत्तोरोव उनसे आधा अंक पीछे हैं, जबकि क्रोएशिया के इवान सारिक और नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट सिर्फ 2-2 अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे हैं। रूई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन में गिरी के खिलाफ मिले अवसरों का गुकेश ने भरपूर फायदा उठाया। प्रज्ञान नंदा के लिए दिन और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन उन्हें अलीरेजा के खिलाफ एक गलती भारी पड़ी और आखिर में वह हार गए। प्रज्ञान नंदा ने फॉरेस्ट के खिलाफ दिन का पहला गेम जीता था। दिन की शुरुआत में गुकेश ने बोगदान डेनियल के खिलाफ अप्रत्याशित हार के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर शानदार वापसी करते हुए फॉरेस्ट पर जीत हासिल की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैर।
1: और अब बात बैडमिंटन पर। तानिया हेमनाथ और आकर्षि कश्यप की कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स वर्ग के दूसरे दौर में हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की रिको गुंजी ने तानिया हेमनाथ को सीधे गेम में 21-11 21-11 से हराया। वहीं आकर्षि ने चौथी वरीयता प्राप्त अमरीका की बेवेन झांग को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 1 घंटे 7 मिनट तक चले मुकाबले में उन्हें 20-22 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। उधर बास्केटबॉल में अहमदाबाद फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 एशियन क्वालिफायर की मेजबानी कर रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
2: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
3: India's development assistance.
4: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है।

0: श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर

0: और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत CG सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फिल्म तीसरी मंजिल का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत था आरडी बर्मन का।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म चमत्कार में। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत अनु मलिक का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में सोनू निगम और सपना अवस्थी को, कार्तिक अवस्थी के बोल और संगीत बाली ब्रह्म भट्ट का।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप बसंत तिमोथी का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। यादें सुनने वाले सभी श्रोताओं को योग्यता का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म आजाद से। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत सी रामचंद्र का। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं ग्राम गुढ़ाराज कवर्धा से मनोज साहू, चित्ररेखा साहू, देवेंद्र और लबीना भासनी, मुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, आर्यनगर कोहका से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल और अजीत जंघेल, पोटियाकला से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, छत्रपति संभाजीनगर से हैं प्रकाश बोरगांवकर और सुषमा बोरगांवकर, संता कॉलोनी रायपुर से राज साहू, बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी और कमलकांत सारथी, यहीं से जितेंद्र सलूजा, छगन वर्मा, प्रदीप सेन और भाटापारा से श्याम रतन मुंद्रा, रजनीकांत मुंद्रा, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, रीना यदु और लक्ष्मीना यदु, लालपुर से हैं लुकेश यदु, समीर यदु। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म आजाद का ये गीत।

आइए सुनते हैं अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव, टिकरीपारा गंडई से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार देवांगन और जयश्री देवांगन, नवागढ़ कटिंग से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत शारदा और जीत वर्मा, पथरिया जिला दुर्ग से धमधा से बुद्धूराम साहू, जगौती साहू, कोल्हारपुरी दुर्ग से सूरजभान कमलाबाई साहू, लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम और संध्या कोलाम, भाटापारा से प्रेमुलाल साहू, दुष्यंत साहू, भूपेंद्र साहू और तेजल साहू ने, वहीं उतई से हैं विक्की देवांगन, उर्वशी देवांगन, जतिन और जयंत देवांगन, ग्राम सलोनी घुमका जिला राजनांदगांव से देवचरण साहू, हेमा वेदांत और वैभव साहू, पथरिया जिला दुर्ग से बलदाव साहू, पवन साहू, नंदनी पथरिया जिला दुर्ग से ही जीवन लाल साहू, शंकर लाल साहू और अजय कुमार, ग्राम भड़ौदा जलबांधा जिला राजनांदगांव से पारकदास साहू, किरण साहू, रेशमा और सोनू साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म हावड़ा ब्रिज में गीता दत्त को गीत के बोल कंवर जलालाबादी की और संगीत ओपी नैयर का।

हावड़ा ब्रिज इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। कोर्दलन से भूदत्त प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा और शिव कुमारी वर्मा। कसडोल से सम्मेलाल साहू और शिव्या देवी साहू। शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद। कुल्हाड़ीकोड पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश कश्यप और अनुराग कश्यप। पुतकी कला कवर्धा से वीणा पांडे, राधेश्याम पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे। रजिया देवरी से नेत्राम नायक, मनोज कुमार नायक, टेकराम नायक और खेमलाल नायक। भाटापारा से ईश्वरी यादव, अमृता यादव और लक्ष्मी यादव। महासमुंद खट्टी से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, चंपेश्वरी साहू और सुधीर पाठक। कमरौद से राजाराम साहू, कन्हैयालाल साहू, माधुरी और रुक्मणी साहू। करीबदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा निर्मलकर, लल्ली और गिन्नी निर्मलकर। हरदेवलाल पारा वार्ड समगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू और सन्नी यादव। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, नीरज और शुभम रावत। पेंशनबाड़ा रायपुर से वंदना यादव, सोमनाथ यादव, शीला यादव और सूर्यप्रकाश यादव। आइए सुनते हैं फिल्म बहार में शमशाद बेगम को राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल और संगीत SD बर्मन का।

बहार इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम को। आइए सुनते हैं अगला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। कछारडी से ब्रिगदास मानिकपुरी, ऋतिक दास, उर्मिला मानिकपुरी, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, मगरलोड से पुन्नूराम साहू, तेजेश्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू, माचापाड़ा से नारायण यदु, पुनिया यदु, चोवाराम वर्मा और दुलारी वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से हैं मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर और सुजला ठाकुर, अलगीदार जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं जोहित यादव, विपिन आयुष और अतुल यादव, धवलपुर से चंद्रकांति मिश्रा, अर्चना मिश्रा, ममता मिश्रा, शीतलानगर दुर्ग से अर्पा पैरी, पार्वती और राधा चंद्राकर, मगरलोड से हैं श्रीचंद यादव, भारती कशिश और चांदनी यादव, सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई दामले और राजेंद्र कुमार दामले, आप सभी हैं सरमुंदा से, शंकरनगर दुर्ग से मानिक सिंह बैस, कावेरी राहुल, विग्नेता बैस, सुभाषवाड़ भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित कुमार यादव और अमीन कुमार यादव, सुख्यारिन बाई और मानिकपुरी और साथ ही पुरानी बस्ती रायपुर से विकास द्विवेदी, सुरेश धर्मगुड़ी, श्वेता दीक्षित और रक्षा श्रीवास्तव, जोरा से बलराम साहू, राधिका साहू, सोमेश भूमेश पुष्पेश कंचन साहू, ग्राम दलदल सिवनी से मनोज कुमार पटेल, रेखा देवी, अमित अजित और जितेंद्र पटेल, नोमिया पटेल, ग्राम कोपरा राजम से लक्ष्मीनारायण पटेल, देवकी बाई, राधिका पटेल, शैल भाई पटेल और निशा पटेल। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म CID का गीत, गीता दत्त की आवाजों में, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, जान निसार अख्तर के लिखे बोल और संगीत OP नैयर का।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अगला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे और पूजा अंबादे, यहीं से प्रिया गुप्ता, अशोक गुप्ता, सिमी गुप्ता, उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता और नितिन दिवाकर, आप मन हैं, आप लोग हैं पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से। कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी और ओजल वर्मा, केजूराम मालिकर, ठाकुर राम, अश्विनी मालिकर, आप हैं धमतरी से, राजू दिलीप यादव, बराती यादव, आदित्य यादव, आप हैं बेमेतरा से, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू और गणेश मिस्त्री, ग्रामटिया जिला बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका और अंशु अंगारे, चप्रित आरंग से जामवती साहू, शिवरतन साहू, प्रदीप कुमार साहू, वेद साहू, भूमिका साहू, छाया साहू, द्रोणिका साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म पेइंग गेस्ट में किशोर कुमार और आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और संगीत है एसडी बर्मन का।

0: अभी आपने सुना पेइंग गेस्ट में किशोर कुमार और आशा भोसले को। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत था SD बर्मन का। यादों में आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त योग्यता को अनुमति। यादें से नमस्कार। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, BMS, इपोक IIN और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।